0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है। आइए अब नजर डालते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। 6 बजे से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 9 बजे का समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने का, 10 बजे से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक, 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स का, 12 बजे से आप सुनेंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम, 1 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन का, 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का, और दोपहर 3 बजे से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, 4 बजे आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम अल्फा जेन, 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सिटी लाइट्स का, शाम 6 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, और 7 बजे का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम का, जिसमें कि आप नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम है उस पर बेस्ड कार्यक्रम सुन पाएंगे, 8 बजे का समय रहेगा म्यूजिक मस्ती का, 9 बजे से आप सुन पाएंगे आपकी याद आती रही कार्यक्रम, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11 बजे आप सुनेंगे एफएम रेनबो चैनल पे रंगे महफिल। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 6 बजने को है अब समाचार होंगे।
6: पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ

माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। नासा के आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए कल से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमरीकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमरीका के ब्रांडन नकाशीमा ने इटली के लुसियाना डार्डेरी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर मैं आ चुकी हूँ आपकी अपनी दोस्त हम सफर अगले घंटे रहने वाली भावना और आप सुन रहे हैं 102.6 FM। यही सबसे अच्छी शुरुआत होती है। दिन आज 12 अगस्त बुधवार का दिन और कार्यक्रम है सुप्रभात और आज बातें होने वाली हैं बहुत सारे पॉजिटिविटी क्योंकि एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नया सवेरा उग चुका है, नई किरणें आ चुकी हैं, आप भी अपना बिस्तर छोड़ चुके होंगे और साथ ही दिन की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तो फिर इंतजार किस चीज का। चलिए गानों की शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छी सुबह की को आगाज देते हैं, शुरुआत करें फिर। चलिए ये बेहतरीन गाना आपके लिए आ रहा है और सुबह इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती।

तो नई ऊंचाइयों को छूने का दिन है और हौसलों को जगाने का दिन है। तो मेरे दोस्त, अपनी नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो चुकी है। 12 अगस्त का दिन है, बुधवार का दिन है और मिड ऑफ द वीक में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन हर सवेरा सिर्फ सूरज की रोशनी लेकर नहीं आता। कुछ सवेरे ना अपने साथ नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, नई संभावनाएं और नई किरणें भी लेकर आते हैं, और शायद आज की सुबह उन्हीं में से एक है। मानते हो कि नहीं आप? मानना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है ना शायद कल कुछ ठीक नहीं रहा हो, कल जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया हो, तो आपका मूड थोड़ा थोड़ा खराब हो। हो सकता है कोई बात आपके मन में अटकी हुई हो, हो सकता है कोई सपना पूरा नहीं हुआ हो, अभी तक उसी सपने में जी रहे हैं, लेकिन उस सपने को साकार करना चाहते हैं। तो सपने तो मेरे दोस्त ऐसे साकार नहीं होते। कल की कहानी ना आज की सुबह का फैसला नहीं करती है, आज की सुबह नई उम्मीदों के साथ आई है।

तो आज की सुबह खुद से बस एक ही बात कीजिएगा और कहिएगा कि मैं फिर कोशिश कर लेती हूँ ना, मैं फिर कोशिश करूँगा, मैं फिर मुस्कुराऊँगा और मैं अपने लिए अपनी खुशियों के रास्ते खुले रखूँगा, मैं अपने खुशियों के रास्ते खुद चुनूंगी। चलिए सुबह की इसी खूबसूरत शुरुआत के साथ दिल से मूवी का एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए लेकर आए हैं, सुनना चाहेंगे AR रहमान की आवाज में, दिल से रे याद आया, आइकॉनिक सॉन्ग है ना।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम कार्यक्रम सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। और कभी कभी जिंदगी में ना जो बदलाव होता है वो अचानक से होता है, और होता क्या है कि नौकरी बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की तस्वीर जो बदल जाती है ना, वो कभी कभी बहुत मुश्किल में डाल देती है। कभी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो बदल जाती हैं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं, और ना उस वक्त लगता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच ही यही है, कुछ भी हमेशा ना एक जैसा नहीं रहता है। हुआ है क्या कभी ऐसा आपके साथ कि सारे दिन एक जैसे बीते हो? नहीं ना। तो वक्त कुछ ऐसा ही है, कभी एक जैसा नहीं रहता। आपको लगता जरूर है कि ये वक्त मेरा कठिनाइयों से भरा हुआ है, जब खुशियां आती हैं तब तो रियलाइज कम होता है, तब तो सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं, जैसे ही जो आप चाहते हैं वो मिल नहीं रहा होता, तो आपको सब खराब लगने लग जाता है। ठीक कहा ना मैंने, ऐसे कुछ होता है ना, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है। अच्छा वक्त भी बदलता है, मुश्किल वक्त भी बदलता है, इसलिए आज अगर जिंदगी में कुछ बदल रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आती है घबराहट किसी को, ऐसा नहीं है कि घबराहट नहीं आती, डर लगता है कि जिंदगी उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से हम चाहते हैं। सबके मन में घबराहट आती है, लेकिन मेरे दोस्त, हो सकता है जो दरवाजा आज बंद हुआ है उसके पीछे कोई दूसरा दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। बदलाव हमेशा परेशानी नहीं होता, कभी कभी बदलाव ही हमें हमारी अगली ऊंचाई तक पहुंचाता है। मे बी चेंज लीड्स टू बेटर पोजिशंस। आज सुबह ना खुद से

बात जरूर कहना, जो बदलना है वो बदल जाए, लेकिन अपना हौसला नहीं बदलेगा। ये जो हौसला है ना, वो अड़ेग है, उसी को ही आपको स्ट्रांग करना है। क्योंकि ये हौसला टकमगा गया ना मेरे दोस्त, तो वो जो ताकत आपके अंदर है ना, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम, अ स्मॉल चेंज इज इनफ। तो आज 10 मिनट अपने लिए निकालिए, किताब पढ़ लीजिए जो पसंद है, टहल लीजिए। मेरे ख्याल से शायद ये तो वक्त भी ऐसा है कि वॉक कर रहे होंगे, कोई व्यायाम कर रहा होगा, कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, कोई अपने लिए। ये बेस्ट टाइम है, ये जो टाइम होता है ना 6 बजे का, ये सिर्फ अपना सेल्फ टाइम होता है। तो 10 मिनट किसी अपने से बात कर लीजिए, 10 मिनट अपने सपनों के बारे में ही सोच लीजिए। ये तो वक्त भी ऐसा ही है कि आत्ममंथन का वक्त है, बस आप हमें सुन रहे हैं और साथ साथ आप अपने दिन की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो जो सपने अधूरे रह गए ना, उसको पूरा तो करना है, उसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई बहुत बड़ा काम सामने है ना, तो पूरा पहाड़ देखकर डरने की बजाय बस पहला कदम उठाना, क्योंकि पहाड़ एक छलांग से नहीं चढ़ता मेरे दोस्त, एक एक कदम से चढ़ा जाता है। और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, आपको आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, एक दिन में जिंदगी बदली है क्या कभी? किसी ने भी, किसी को भी देख लीजिए, कोई भी लेजेंड को देख लीजिए, अ चेंज हैजंट कम इन वन डे, चेंज टेक्स टाइम। तो बस आज का दिन थोड़ा और बेहतर करेंगे, सम मोर एफर्ट्स वी आर गोइंग टू पुट। तो छोटा सा लक्ष्य रखेंगे आप, उस लक्ष्य को सोच लीजिए, ये सबसे अच्छा टाइम है सोचना जरूर। गाने सुनते जाइए मेरे साथ, यानी भावना के साथ, 102.6 FM सुप्रभात।

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ भावना और कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हुई है कि खुशियां ना हमारे हाथ में हैं। हम उन खुशियों को कैसे लेना चाहते हैं, कैसे उन्हें बटोरना चाहते हैं, कैसे उन्हें पाना चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में होता है। बस मौका हमें देना होता है और वो मौका आप ही के हाथ में होता है। क्योंकि क्या लगता है ना कि कभी कभी लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना, या फिर कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होती है, हमें लगता है कि सब कुछ अंदर से टूट गया है। ये भी लगता है कि कभी भविष्य में क्या जीवन पटरी पर लौट पाएगा। याद रखना, जीवन में ना फिर से खुशियां लौट सकती हैं, बशर्ते आप खुद को मौका देने के लिए तैयार रहें। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सुबह ना मैं पार्क में बेंच पर बैठी थी, तभी क्या हुआ, एक सीनियर सिटीजन कपल अपनी कार से उतरे। कार के अंदर धीमी धीमी पुरानी धुन बज रही थी। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। तो क्या हुआ कि जो उसमें सीनियर सिटीजन मेल थे ना, उन्होंने बड़े स्नेह से अपनी वाइफ का हाथ थामा, उन्हें कार से उतरने में मदद की और पास के पेड़ में एक छांव में दोनों धीरे धीरे हल्का हल्का मूव करने लगे, थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे। इतना खूबसूरत दृश्य था ना वो, कि मतलब मन कर रहा था कि बस तालियां बजा दूं। कहाँ मिलता है आजकल ऐसा समय देखने को। उन दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वे दोनों मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और तालियों के लिए उन्होंने मुझे शुक्रिया भी किया। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों को देखकर ये उम्मीद नजर आती है कि जीवन ना हर उम्र में खूबसूरत हो सकता है। उसके लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है कि आप यू नो डांस मूव्स कर रहे हैं और ऐसे रोमांटिक हो रहे हैं, और वो भी इस उम्र में। एज इज जस्ट अ नंबर, यही लगा मुझे। उन्होंने बता क्या हुआ, खिलखिलाते हुए मुझे कहा कि अभी अपने जीवन को दिए जाने वाले दूसरे तीसरे मौके की सुंदरता और ताकत को देखा है हमने, समझे आप। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो रिश्ता है ना, पिछले 10 सालों से है। इससे पहले हम दोनों ने अपने किसी प्रिय जीवन साथी को खो चुके हैं। हम दोनों जीवन के गहरे दुखों से गुजरे हैं, पर हमने कभी जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। वो बात मेरे दिल को ऐसी छू गई कि अपनों को खोने के बाद फिर एक मौका देना अपने को और जिंदगी को फिर सोचना कि पटरी पर लौटेगी और किसी पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे का उन्होंने हाथ थामा और फिर से जीवन जीना सीख लिया। पता है ऐसा तब होता है जब हम खुद को जीवन में मौका देने के लिए तैयार होते हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये नया सवेरा शायद नई उम्मीदें लेकर आया हो। सुनते रहिए 102.6 FM, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। गाना है मुसु मुसु, शान की आवाज में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। तो क्या होता है कि जिंदगी में ना सबसे बड़ी ताकत हालात नहीं बल्कि हमारा नजरिया हो जाता है। कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं और उस निराशा में हम हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिले और प्रेम करने की और जीवन जीते रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वो सवाल उस दिन जब मैंने उन सीनियर सिटीजन कपल को देखा तो वो सारे सवाल मेरे मन से हट गए। और हर किसी के जिंदगी में ना एक मुश्किल दौर आता है। ऐसा नहीं है कि सभी की जिंदगी बहुत केक वॉक जैसी होती है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वक्त आते हैं जहाँ वक्त कहता है कि आपकी परीक्षा लेता है और वही परीक्षा में आपको सफल होना पड़ता है। एक और कहानी आपको बड़ी खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बहुत मेहनती, बहुत हार्डवर्किंग। उसने अपने लिए एक सपना देखा था। कई साल उसने मेहनत करी उसके लिए, बहुत सारी परीक्षाएं दी, इंटरव्यू दिए, कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। एक दिन वो बहुत निराश हो गई, अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, इतनी कोशिश के बाद अब मैं टूट चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। माँ ने कहा और उसको एक एडवाइस दी, बस उसके हाथ में पानी का ग्लास दिया और कहा, आज ना तुम सिर्फ इतना करो कि कल से एक कदम आगे बढ़ो, बहुत बड़े गोल्स नहीं करने। मुझे नहीं चाहिए कि तुम वो परीक्षा पार कर लो, मुझे बस ये चाहिए कि तुम जितनी कोशिश कर रहे हो ना उससे थोड़ी कोशिश कल और करना। तो लड़की ने पूछा, माँ इससे थोड़ी ना कुछ होगा, बस एक कदम? माँ बोली, हाँ बस एक कदम। तो उसने बोला, एक कदम से क्या होगा माँ, एक कदम से मेरी परीक्षाएं इंटरव्यू नहीं क्लियर होने वाला। माँ बोली, हाँ क्योंकि जब तुम पूरी मंजिल देखती हो ना तो डर जाती हो, लेकिन जब तुम सिर्फ अगला कदम देखती हो तो चल सकती हो उस पर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगले दिन उसने फिर पढ़ाई करना शुरू किया, एक नई स्ट्रैटेजी उसने अपनाई जैसे कि माँ ने कहा था। तो उसने क्या किया कि पहले दिन सिर्फ एक घंटा, फिर दो घंटे, और फिर उसने अपनी गलतियां लिखनी शुरू कर दी कि आखिर मुझसे गलती हो कहां रही थी। फिर उसने दोबारा परीक्षा दी और इस बार वह सफल नहीं हुई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे मंजिल से ज्यादा ना अपने कदमों पर भरोसा होने लगा था। परीक्षा उसने तब भी क्लियर नहीं की, लेकिन उसमें हौसला आ गया था, हौसला आ गया था कि हाँ मैं कर सकती हूं, शायद इस बार नहीं हो पाया लेकिन अगली बार जरूर होगा। तो जब उसने पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो सफल हो गई बाद में उस परीक्षा में, तो उसने कहा कि मैंने मंजिल के बारे में सोचना कम किया और अगला कदम उठाना शुरू कर दिया था। शायद हमारी जिंदगी में यही बात हर किसी पर लागू होती है। आज सब कोई कुछ ना कुछ मुश्किलों से जूझ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम अपने आप को एक और मौका दे रहे हैं? ये बड़ी बात है। तो हमें वो मौका देने के लिए वो स्पेस क्रिएट करनी होगी, पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा, अपने गलती को स्वीकारना होगा, तभी तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा ना मेरे दोस्त। तो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं आप? और कदम उठाइए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। सुनते रहिए 102.67 रेनबो, मेरे साथ भावना के साथ। इट्स अ गुड मॉर्निंग।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: आप सुन रहे 102.6 FM रेनबो, मेरे साथ यानी भावना के साथ, और वक्त हो गया है 6:47 और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, हम बात कर रहे हैं अच्छे अच्छे ख्वाबों की जो आपको आज बुनने हैं और आपको आज उन्हीं ख्वाबों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मुश्किल दौर में ना सबसे कठिन काम उन परिस्थितियों से लड़ना होता है, उन सिचुएशन से लड़ना नहीं बल्कि अपने मन को ना संभालना होता है, क्योंकि आप उतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उन परिस्थितियों को तब उससे लड़ पाएं, तो अपने मन को संभालना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात पता है, अपनी सोच को कैसे आप बैलेंस करके रखें, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम उस तकलीफ़ में, उस दर्द में हिम्मत खो जाते हैं, हमारे शरीर में वो ताकत नहीं होती, मानसिक उतनी मजबूती नहीं होती। तो बस अपने आप को उस समय कैसे संतुलित किया जाए, बैलेंस किया जाए और स्वीकारा जाए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि उन तकलीफ़ों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, और वो ये होता है कि कभी कभी जीवन में हम किसी न किसी को, अपने को खोते हैं, और वो सबसे शैटरिंग होता है, हमें तोड़ देता है। कोई भी शब्द इस दुख को कम नहीं कर सकता, कोई भी सिंपथी इस को हील नहीं कर सकती, क्योंकि किसी को खोना से बड़ी तकलीफ नहीं होती, अपने को खोने से बड़ी। तो यही है कंथी, एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि बीते बात में अटके रहने से तो बेहतर है कि आगे की सफर की तैयारी करना। और जो हमें जीवन में, जिसने हमें खोया, जिसको हमने खोया है, उसकी कीमत शायद बाद में ज़्यादा समझ में आती है, और सीमाएं ही हमें सुंदर बनाती हैं और उसको बढ़ाती हैं। तो किसी के जाने से हमें ये याद आती है कि हमारे पास जो इंसान है ना, अभी उसको जी लेते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे दोस्त, कब ये समय ख़त्म हो जाए पता नहीं चलेगा। तो खुद को मौका देना, यानी नई उम्मीदों की कहानी को बुनना है, और यही तो इस नए दिन की शुरुआत है। तो वो जो डांस किया था ना सीनियर सिटीजन कपल ने, वही दिल से दिल तक की कहानी है। सुनते रहिए आप 102.6 FM, क्योंकि यही होती है सबसे अच्छे दिन की शुरुआत।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तो अगली बार जब मन उदास हो रहा हो, लग रहा हो कि आसपास सिर्फ कठिनाइयां हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, तो खुद पर विश्वास रखेगा, क्योंकि कई बार जिंदगी में हम असफलता से नहीं टूटते हैं, हम अपने बारे में बुनी हुई गलत धारणा से भी टूटते हैं। हमें लगता है शायद मैं कर ही नहीं सकता या सकती, और यहाँ से कहानी बदलनी होती है, और यहीं से ही आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आता है। तो अगर आज आप किसी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो खुद से ये बात कहिएगा कि खुद के खिलाफ कोई फैसला मत सुनाइए। मुश्किल वक्त आपकी पहचान नहीं है, मुश्किल वक्त आपकी बिल्कुल भी पहचान नहीं है, आप तो ऐसे हैं ही नहीं, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का एक पन्ना है, एक चैप्टर है। ये चैप्टर बदलेगा, पन्ने पलटेंगे, कोई भी पन्ना वहीं ठहरता नहीं है, पन्ना पलटता है, कहानी आके लिखी जाती है। तो आज की सुबह थोड़ा और पॉजिटिव होइएगा, जहां जाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उन छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करिएगा, इसी से ही खुशी के रास्ते खुलेंगे, और यही आपकी खुशी का वो मार्ग भी बनेगा। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो मेरे साथ यानी भावना के साथ, कार्यक्रम है सुप्रभात।

सुबह का ये एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी कभी आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा जाते हैं। तो जिंदगी ना मेरे दोस्त हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किल होते हैं, कभी लोग साथ होते हैं तो कभी अकेले ही चलना पड़ता है, कभी जीत मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी हार का सामना करना पड़ता है और ऐसे में टूटते नहीं है। इससे एक सीख जरूर मिलती है कि हालातों को समझना और उनको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज जो हाथ में रहती है वो है उम्मीद, वो है आशा, वो है होप। क्योंकि उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, उम्मीद यानी होप यानी आशा वो भरोसा देती है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। जब रात के बाद सवेरा होता है हर दिन नया होता है, तो ये भी नया सवेरा होगा। जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, बस आप मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुश रहिए, यूं ही हंसते रहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, अगला कार्यक्रम हम सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। वक्त हो चला है इस समय समाचार को सुनने का।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए कल से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमरीकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की।

जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग द्वारा हथियार दागने की यह दूसरी घटना है। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा। करण सिंह और शेरजिन शांतिमूल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जो हाथ में चाय का कप लेकर आप उसे घूरते हुए कह रहे हैं कि चाय के कप से उठते हुए धुएं में तेरी शक्ल नजर आती है, ऐसे खो जाते हैं तेरे ख्यालों में कि अक्सर मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि धुआं धुआं से रहने दीजिए और इस चाय को अंदर जाने दीजिए, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो आप इसे फिर से गर्म करेंगे, और अगर आप गर्म करेंगे तो आप तो ये जानते हैं ना कि गर्म चाय बार बार जब उसको ठंडी होकर गर्म करते हैं तो वो जहर बन जाती है, और मैं नहीं चाहती कि आप सुबह सुबह, समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिलहाल आप अपनी चाय को जो है उसका लुत्फ उठाइए, और मैं आपको बता दूं कि गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर शुरू हो चुका है। शो मुझे कहते हैं शालिनी, चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, चैनल को कहते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6, और आप क्या कहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं कहा 9868107070 पर मैसेज करके। तो फटाफट से आप हमें मैसेज भेजिए, भले हम आपके नाम के साथ उसे ना पढ़ सके लेकिन हम आपकी भावनाएं तो समझ ही सकते हैं ना, आप क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं शो के रिगार्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक के साथ, एक बेहतरीन सा ट्रैक आपके लिए चलाती हूँ, उसके बाद बहुत सारी ढेर सारी बातें करने के लिए स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल दिल हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी का दिल जो है वो राष्ट्रभक्ति में डूब रहा है, देशभक्ति देश प्रेम में डूब रहा है, क्योंकि 15 अगस्त जो है वो बिल्कुल नजदीक है और इस बार हम अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। विकसित भारत 2047 का रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है और ऐसे में भारत की प्रगति के साथ साथ विकसित भारत 2047 की आपको झलक देखने को मिलेगी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर, तो आप तैयार रहेगा। और हाँ, हर घर घर घर तिरंगा जो मुहिम चल रही है ना, उसके भी भागीदार बनिए। आप अपने घर पर भी तिरंगा आप लहराइए और बता दीजिए देश को कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। और इस बात के बाद ना एक और बहुत खास बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है कि आज ना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा युवाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा, रोजगार और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल जो है 12 अगस्त को यानी कि आज के दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो सन 2000 में हुई थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस युवा दिवस पर मुझे कुछ ख्याल आ रहा है वो ये कि क्या आपके भी कोई ऐसे दोस्त हैं जो जब प्यार जताते हों तो आपको समझ ही ना आता हो कि वो प्यार जता रहे हैं या धमकी देकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों के लिए अर्ज किया है कि ऐ दोस्त, तुम्हारे खातिर मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, पर अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ सकता हूं। बताइए, इसीलिए कहते हैं ना कोई भी चीज लिमिट में होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ जाती है तो खतरनाक साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ आज है विश्व हाथी दिवस। हाथियों के संरक्षण, उनके शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए दुनिया भर में आज ही के दिन जागरूकता ये फैलाई जाती है। तो आप तक मैंने ये जागरूकता पहुंचा दी है, अब आपका काम है आगे आपको क्या करना है। फिलहाल मुझे करना है आपके लिए गाना प्ले, तो मैं वो मैं कर देती हूँ। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप विद मी शालिनी और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ठीक है,

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

वेलकम बैक डियर्स, आप हैं आकाशवाणी दिन में 102.6 पर विद मी शालिनी। शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपकी बातें हम तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि मैं आपका नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से मैसेजेस आए हैं। बिहार से हमारे पास मैसेज आया है, लोग बता रहे हैं कि इसके अलावा दिल्ली से भी आया है और भी कई जगहों से हमारे पास मैसेजेस आए हैं। तो देश के कोने कोने से हमारे पास मैसेज आते हैं और वो लोग क्या क्या बताते हैं जरा सुनिए। कोई कहता है हमने 5 बजे ही चाय पी ली, कोई कहता है कि शो अच्छा लग रहा है, किसी ने हमें वंदे मातरम लिखकर भेजा है। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना ध्यान लगाकर हमारे शो को सुनते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं भी ध्यान लगाकर आपको सारी बातें बता देती हूं जो मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है ना कि आज जो है वो महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले दुनिया के पहले यंत्र फोनोग्राफ का आविष्कार पूरा किया था। तो आज ये खास दिन है, आज ही के दिन 1877 में यह आविष्कार पूरा किया गया था। और आज के दिन बहुत सारे इवेंट्स होने वाले, बहुत ही खास दिन है आज का, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आज जो है वो टोटल सोलर इक्लिप्स है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। और इस दिन जो है वो अद्भुत सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन जैसे देशों में दिखाई देगा। हालांकि भारत के समय के अनुसार ना ये रात के 9:45 से सुबह के 2:15 पर होगा, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो आपको अपना समय खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ग्रहण कौन देखता है, नुकसान होता है ना, है ना। और वो ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह बातें तो आपने सुनी होंगी, ऐसा काम मत करिएगा। अच्छा है जो रात को हो रहा है, वरना आप भूखे रह जाते। फिलहाल इसके अलावा मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है और वो ये कि परसीड उल्का बौछार आज की रात जो है वो होने वाली। और वो क्या है, वो ये है कि रात में आसमान से टूटते हुए तारे आपकी तरफ आएंगे, मतलब इतने करीब नहीं आएंगे, डरिए मत, लेकिन आपको दिखाई देंगे और हो सकता है कि नज़ारा आपको अपनी खुली आंखों से देखने को मिल जाए। तो एकदम टकटकी लगाकर देखते रहेगा आसमान की ओर, है ना, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट परेड भी होने वाली है आज, यानी कि सौर मंडल के कई ग्रह आसमान में एकदम सीधी कतार में लगे हुए नजर आएंगे। बताइए, ग्रहों को भी लाइन में लगना पड़ता है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिलहाल आपने क्या सोचा है, चलिए मैं गाना चला देती हूँ, मैं जानती हूँ आप उसका इंतजार कर रहे हैं।

बिल्कुल दोस्त बंधु सखा सब आप हमारे हैं, क्योंकि आप हमें इतने प्यारे हैं तभी तो हम आपको अपना दोस्त मानते हैं और आप हमें अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं। और दोस्त ही इस तरह की बातें कर सकते हैं, जिस तरह की बातें आपने हमें लिखकर भेजी हैं, तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि मैं क्या जी सोने मकड़ो की हाल चाल है, ऐसी थोड़ी कहती हूँ, दोस्तों से ही तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, है ना। तो मेरे लिए भी आपने मैसेजेस भेजे हैं और उसका बहुत शुक्रिया आपको। किसी ने तो चाय भी भेजी है साथ में, अब वो चाय कितनी मीठी है ये तो मैं टेस्ट करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा दिन बना दिया है। थोड़ी सी गले में खराश हो रही थी ना, वो चाय की शक्ल देख के ही ठीक हो गई है। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली के बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। और मैं बता रही हूं कि भले शो का नाम रिलायंस आ रहा है, लेकिन ये जो है देश के कोने कोने तक पहुंचता है हमारी ऐप के माध्यम से, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें देश के कहीं भी किसी भी कोने में सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलेगा आपको। ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूं शालिनी और चैनल का नाम तो आप जानते हैं है कि नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो ये गुस्ताखी आपकी माफ नहीं करी जाएगी, मैं बता रही हूँ आपको। फिलहाल मैं गाना चला देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आज क्या खास है आज के दिन में, और वो ये है कि आज के दिन कुछ बहुत ही खास शख्सियतों की जो है वो पुण्यतिथि है। गुलशन कुमार जी का आज के दिन जो है वो 1997 में उन्होंने इस दुनिया से हमसे विदा ली थी। वो प्रसिद्ध संगीत निर्माता रहे और उनके गाने आज भी हमारे दिलों में मीठी याद बनकर गूंजते हैं। इसके अलावा जेम्स बॉन्ड के लेखक ने भी आज ही के दिन हमसे विदा ली थी इस दुनिया से। 1964 में आज के दिन उन्होंने हमसे अलविदा कहा था। दुनिया के सबसे मशहूर काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड 007 जिसे आप कहते हैं, उनके चरित्र को रचने वाले ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग का आज ही के दिन निधन हुआ था, उन्होंने हमसे विदा ली थी। इसके साथ साथ इनकी यादों को याद करते हुए

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बस बस बस चोर बाजारी जो है वो बस नैनो की करिएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर आपने किसी और चीज़ की करी ना तो लेने की देनी पड़ सकती है। वैसे तो इसमें भी लेने देने पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल कर ही कीजिएगा। मैं क्या जी, की हाल चाल है? आकाश मॉर्निंग रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी, और कहते हैं इसे, इस चैनल को कहते हैं रेनबो 102.6, और आप इसे न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं, ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का भी आप लोग उठा रहे हैं हमारे अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और लोग हमें बता रहे हैं कि मैं अकोला महाराष्ट्र से सुन रहा हूं या सुन रही हूं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंदौर से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमने चाय की बात करी थी कि ठंडी चाय को बार बार गर्म करके पीने पर वो जहर जैसे बन जाती है, तो लोग कहते हैं कि मैं तो पी लेती हूँ। गम के जहर को हम कभी कभी जी लेते हैं, उसके साथ जी लेते हैं, और चाय ठंडी सही पर पी लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी ऐसा मत करिए, ख्याल रखिए अपना, वरना हमारा रेडियो कौन सुनेगा बताइए। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर हम रेडियो नहीं सुन पाएंगे ना, तो इसीलिए ख्याल रखिए अपना। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि आज यानी कि आज ही के दिन सन 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। आज उनकी जयंती है, इन्हें हमारा सच्चत नमन, और इनके अनमोल योगदान के लिए जो इन्होंने देश को दिया है अपनी तरफ से, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आज है हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी सारा अली खान का बर्थडे, तो उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और साथ ही साथ जितने भी और लोगों का बर्थडे है जो हमें सुन रहे हैं उनको भी हैप्पी वाला बर्थडे है जी। मैं क्या जी, खुश हो जाइए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आप। लेकिन हाँ, आपको अपना बर्थडे विश करवाने के लिए ना आधार कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है, गलत बात है ये, आप वैसे भी कह दीजिए लेकिन नाम नहीं ले पाएंगे हम यहाँ पर। लेकिन देखिए, विशेष तो मैंने पहुँचा दिया। तो सारा अली खान जो है वो, उन्हें कुछ खास फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है, जैसे कि केदारनाथ, सिम्बा और जरा हटके जरा बचके जैसी फिल्मों के लिए आप जानते हैं उन्हें। इसके अलावा भी आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें फोटोज तक भेज रहे हैं उनकी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाली थी, चिंता मत करिए, सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। आप कह रहे हैं कि शो की तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन देखिए मैं नाम तो नहीं बोल पाऊंगी। फिलहाल मैं सारा अली खान के लिए उनके जन्मदिन पर उनकी याद में उनको गुड विशेस देते हुए ये ट्रैक उन्हीं की फिल्म से चला देती हूँ आपके लिए।

0: नहीं, आँख का तो ठीक है, लेकिन थोड़ा अपनी भावनाओं को जो है संभाल कर रखिएगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत चला जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं बहुत सीधे साधे तरीके से आपको कह रही हूँ कि आपके क्या हाल चाल है। आप उठ गए हैं ना, मैं आपको उठाने ही आती हूँ यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ, शो चल रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया। उसका नाम दोबारा रिपीट करवाएंगे क्या, आप एक ही काम करती रहूंगी क्या बार बार, ऐसा नहीं हो सकता है। रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज पूरे दिन में आप क्या क्या सुनेंगे। तो 8 बजे आपके साथ होंगी भावना नायर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा पार्ट लेकर, और 9 बजे मैं आपको फिर से मिलूंगी किसमें, दिल की तरह गाने नहीं पुरानी में, ठीक है, तो तैयार रहिएगा डांस करने के लिए। और इसके अलावा 10 बजे आपके साथ होंगी ईशा गोयल वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर, और नेक्स्ट इसके बाद होंगी 11 बजे रश्मि गुप्ता बॉलीवुड ट्रेस लेकर, ही तो आपको पता ही होगा। हाँ, आप अगर रोजाना सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनते तो सुनिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। 12 बजे होंगी ईशा गोयल फिर से आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल में, और उसके बाद 1 बजे आपके साथ होंगी रश्मि गुप्ता रेनबो हेल्पलाइन लेकर। नेक्स्ट आपके लिए होंगी 2 बजे स्वाति गुप्ता आशियाना में, और इसके बाद 3 बजे होगा रेडियो डॉक्टर, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद 4 बजे स्वाति गुप्ता होंगी फिर से अल्फा जन लेकर आपके लिए कैंपस कॉलिंग, ओके। और 5 बजे आप सुन सकेंगे सिटी लाइट्स मीना जैन के साथ, भगवती होंगी आपके साथ 6 बजे शाम को, क्या क्या क्या लेकर बता रही हूँ, थोड़ा सा वेट करिए ना, मैसेज मसाला मिक्स। और फिर नेक्स्ट होगा प्रोग्राम 7 बजे वेस्टर्न म्यूजिक नॉर्थ ईस्ट ह्यूज प्रोग्राम बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 8 बजे आप सुन पाएंगे म्यूजिक मस्ती नॉन स्टॉप डांस हिट्स, और फिर आपके लिए गीता चौधरी लेकर आएंगे आपकी याद आती रही। नेक्स्ट उसके बाद आएंगे आपके साथ आशीष अब्राहम जो आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो क्लासिक्स, और उसके बाद आपके लिए होगा कार्यक्रम रंगे महफिल गीता चौधरी के साथ। इतने सारे कार्यक्रम आपका वेट कर रहे हैं, फिलहाल एक संगीत मधुर सा आपके लिए वेट कर रहा है, वो चला देती हूँ आपके लिए मैं।
1: ओ लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा

0: फिलहाल इस गाने को मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, क्योंकि पीएम जी हमारे जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

मैं कह जी अब जाने का ना टाइम हो चुका है तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भावना यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है मेरे बिल्कुल बराबर में। तो मैं कह जी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि सूर्य ग्रहण तो आज लग रहा है लेकिन उसके अलावा भी ना उसके बाद भी गर्मी कम क्यों नहीं हो रही है मेरे भाई, क्या होगा बताइए जरा। क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं? अब फील करते हैं तो करते रहिए, सूर्य ग्रहण तो लगना ही लेकिन गर्मी का कुछ नहीं होने वाला है, जब तक सर्दी नहीं आएगी ना ये बनी रहेगी। लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि भावना आ चुकी है। लेकिन आपको जाने से पहले कहना चाहूंगी कि ख्याल रखें तो गाना सुननी चाहिए। आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। स्टे ट्यून्ड।

यह आकाशवाणी का एफएम रेनबो स्टेशन। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स पुस्तक का विमोचन करेंगे। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जेंजी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और यह 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए कल से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमरीकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग द्वारा हथियार दागने की यह दूसरी घटना है। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: કાઠીવાણી આકાશવાણી
1: રોજ સુબહ સવેરે 7 થી 9 કી મુલાકાત, થોડી ગપશપ, થોડી કામ કી બાત, રેનબો કી સોગાત, હર રોજ જુડીએ હમારે સાથ. ગુડ મોર્નિંગ ડેલી NCR, ઓલવેઝ વેર એવર યુ આર, 102.6 આપકે લીએ.
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR. सुबह का ये वक्त बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है. सुबह 8:04 हो रहे हैं, यानी वो वक्त जब सबसे ज्यादा हसल बसल देखने को मिलती है. कहीं किसी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, कोई मेट्रो पर चढ़ चुका होता है, किसी ने गाड़ी की चाबी लगा ली होती है, कोई अपने टू व्हीलर पर हेलमेट लगाकर अपनी गंतव्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा होता है, और कहीं किचन में जो सुबह सुबह नाश्ते की खुशबू आ रही होती है, कोई चाय की चुस्की ले रहा होता है और बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, तो ये वक्त होता है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट डे, बिजिएस्ट टाइम ऑफ द डे. और साथ ही साथ ये वक्त हमारे साथ भी आपको बिताने का होता है, क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का 2.0 वर्जन लेकर मैं आ चुकी हूँ आपकी अपनी दोस्त भावना एक बार फिर से. और सुबह की खूबसूरत शुरुआत 12 अगस्त बुधवार का दिन बुधवार के साथ, ये मत सोचिएगा कि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस आपका चल रहा है ये मिड वीक क्राइसिस के साथ बदल ना जाए, क्योंकि मेरे दोस्त जब 2 दिन बीत चुके हैं तो 2 दिन और बीत जाएंगे, इसी के साथ वीकेंड भी जल्दी आ जाएगा. और वीकेंड पे तो क्या है, वीकेंड पे तो डबल धमाल है. एक तो वीकेंड, ऊपर से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो नई ऊर्जा है, अपने देश के लिए गर्व महसूस करने का दिन है. और साथ ही साथ बस कुछ ही दिन दूर है स्वतंत्रता दिवस, और देश भर में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ चल रहा है. सोचिए ना, एक ही रंग, एक ही भावना और एक ही पहचान, हमारा तिरंगा. दिल्ली की सड़कों से लेकर देश के छोटे छोटे कस्बों तक कहीं तिरंगा यात्रा की तैयारी है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं बच्चों की प्रस्तुतियां. वो स्कूल डेज याद है आपको, इंडिपेंडेंस डे में कैसे आपको ड्रेस पहननी होती थी, फिर आप स्वतंत्रता दिवस के लिए रेडी होते थे, और साथ ही साथ बहुत सारे जोश आप में उस टाइम होता. तो ये जोश अभी भी बरकरार रखिए, जोश कहाँ चला गया है आपका. और युवा तो अपने देश के लिए, अपने योगदान के लिए अपने अपने अंदाज में ही माने जाते हैं. तो आज की सुबह रखिए देश के नाम, क्योंकि आजादी मेरे दोस्त एक तारीख नहीं, ये तो एक एहसास है. सुनते रहिए 102.6 FM. वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR.

तो दोस्तों 15 अगस्त करीब है और पूरा देश इस समय देशभक्ति में सराबोर है और देश एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान के रंग में रंगने लगा है। घरों की छतों पर, बालकनियों में, स्कूलों और संस्थानों में तिरंगा नजर आ रहा है। लेकिन हर घर तिरंगा सिर्फ तिरंगा लगाने की मुहिम नहीं है मेरे दोस्त, ये उस राष्ट्रीय गौरव को महसूस करने का मौका है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो अगर आप भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं तो तिरंगा फहराते समय उसके सम्मान को ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूं मैं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को साफ सुथरा और बिना क्षति के रखना चाहिए। सीधा फहराने पर केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहे,

और तिरंगे को जमीन, पानी या फर्श को नहीं छूने देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपको बताते हूँ कि 2022 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, लेकिन रात में उसे उचित रोशनी में सम्मानपूर्वक प्रदर्शित करना जरूरी होता है। तो इस बार हर घर तिरंगा जरूर मनाइए, लेकिन याद रखिए, तिरंगा हमारी शान है और उसकी गरिमा हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने घर पर तिरंगा लगाइए, उसके सम्मान के नियम को जानिए और बच्चों को भी बताइए, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

कितना खूबसूरत गाना था ना, तिरंगे से जुड़ा हुआ, मन कर रहा था इसको लूप में सुनती रहूं। और 15 अगस्त ना मेरे दोस्त सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, ये उस तिरंगे के पीछे छिपे उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का भी दिन है। आज जब देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर, हर गली और हर दिल में तिरंगे के रंग दिखाई दे रहे हैं, तो आइए एक पल उन वीरों को भी याद कर लेते हैं जिनकी कुर्बानियों ने इस आज़ादी की नींव रखी। मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने भारत की आज़ादी की आवाज़ देश की सीमाओं के बाहर बुलंद की और 1907 में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया। मातंगिनी हाजरा 73 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा लेकर आगे बढ़ी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गईं। और रघुबर दयाल श्रीवास्तव, जिन्होंने जेल की यातनाएं सही लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो इस हर घर तिरंगा अभियान में जब अपने घर आप तिरंगा लगाए ना, तो उसके साथ इन गुमनाम और अनगिनत नायकों को भी याद जरूर रखिएगा, क्योंकि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं, उन सपनों, उन संघर्षों और उन बलिदानों की निशानी भी है जिनसे भारत की आजादी की कहानी लिखी गई। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर दिल में उन वीरों के लिए सम्मान।

क्या गाना है, क्या लिरिक्स हैं, एक एक शब्द आपको देशभक्ति से ओतप्रोत कर देता है। मिट्टी के बेटे, मनोज मुंतशिर द्वारा लिखा हुआ, सोनू निगम द्वारा गाया हुआ। उन सैनिकों की जज्बातों को शब्दों में पिरोया गया है जो अपनी जान देश की रक्षा में खुशी खुशी न्यौछावर कर देते हैं। सच में ये गाना सुन के कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती हैं। बॉर्डर टू का ये गाना। आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई, क्योंकि ये वक्त ट्रैफिक से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर कल की बात करें, कल के लिए दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। 13 अगस्त है कल और बेहद ही इंपॉर्टेंट ये ट्रैफिक अपडेट है। पुरानी दिल्ली, लाल किला, कश्मीरी गेट, राजघाट या सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो ध्यान से सुन लें।

ही आधी रात से 13 अगस्त यानी कि कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद पुल के बीच जो मालवाहक वाहनों की आवाजाही है उसको भी रोक दिया जाएगा। साथ ही इंटरस्टेट बसों और कई डीटीसी बसों के रूट भी बदले जा रहे हैं। तो दिल्ली वालों, कल निकलने से पहले अपना रूट जरूर चेक कर लेना और टाइम लेकर निकलना। ये मत कहना कि फिर हम लेट हो गए, क्योंकि अभी तो वीकडेज चल रहे हैं और हो सके ना तो अल्टरनेट रूट जरूर देख लेना। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जश्न के साथ सफर भी सुरक्षित और सुगम रहे। सुनते रहिए 102.6 FM। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

तो चल रही है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और भारत की आजादी से जुड़ी बातें जब होती है तो मन में अपने आप ही एक जोश भर जाता है। और दोस्त पता है क्या, भारत की आजादी की लड़ाई ना सिर्फ मैदानों, आंदोलनों या फिर जेलों में नहीं लड़ी गई, एक बड़ी लड़ाई कलम और अखबारों के जरिए भी लड़ी गई। जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी, उस दौर में समाचार पत्र लोगों तक राष्ट्रवाद, स्वराज और स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम था। उस समय अखबार निकालना आसान काम नहीं था मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप, जब्ती, जुर्माने और जेल की सजा जैसी कार्रवाई का सामना इन पत्रकारों और संपादकों को करना पड़ता था। बहुत मुश्किल थी उस समय। यह कलम से जो आजादी मिली ना हमें, उसमें बहुत सारे हमारे विभूतियों का योगदान रहा। उसमें पता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, द मराठा, महात्मा गांधी के यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप जैसे प्रकाशनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारी आंदोलन के दौर में भी जो गुप्त और प्रतिबंधित साहित्य लोगों तक पहुंचाया जाता था, आजादी की स्याही दरअसल उस दौर की वही आवाज थी जिसे अंग्रेजी हुकूमत रोकना चाहती थी, लेकिन हर प्रतिबंध के बावजूद वे आवाज और दूर तक पहुंचती गई, वो आवाज और बुलंद होती गई, क्योंकि उस दौर में कलम सिर्फ लिखती नहीं थी, लोगों को जगाती भी थी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक

0: सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

तो आप सोच रहे होंगे कि भारत का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाने वाला है उसमें इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सरप्राइज खोल दूं आपके लिए, बहुत कुछ खास है इस बार। 80वां स्वतंत्रता दिवस है तो खास तो होगा ही। इस बार वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगीत भी होने वाला है। लाल किले पर जो आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, अगर आपके बारे उसको बारे में बताऊं मैं आपको, तो लाल किले की प्राचीर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो राष्ट्रगीत बजाया जाएगा और इस दौरान सभी लोग खड़े भी होंगे। साथ ही इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और साथ ही इस बार लाल किले पर फूलों की सजावट में भी वंदे मातरम की झलक दिखेगी आपको। और जो लाल किले की प्राचीर है ना, उसके सामने जो ज्ञान पथ है पर वंदे मातरम की आकृति, यहां एनसीसी के 2500 कैडेट्स और माय भारत के स्वयंसेवक बनाएंगे। साथ ही समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं की सफलता को भी सराहा जाएगा। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2026 में जिन 19 छात्रों को मेडल जो जीतने वाले हैं उनकी उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में युवा शक्ति की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है और इनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी तरीके से ये युवा प्राचीर पर बैठेंगे, साथ ही बैकग्राउंड में लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति को दिखाएंगे, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर क्षेत्र में फूलों की सजावट विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा को दर्शाएगी। साथ ही इस मौके पर 5000 विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, क्योंकि यही हमारी शक्ति है और यही हमारा भविष्य है। इनमें नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा, पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़े हुए चुनिंदा छात्र, साथ ही जो डिफरेंट योजनाएं होती हैं उसके तहत जो स्टार्टअप्स के तहत चुने गए श्रेष्ठ युवा, माय भारत के स्वयंसेवक, नमस्ते पीएम अजय सीट के लाभार्थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विजेता, ये सभी छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। और दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। ये लोग अपने अपने राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर समारोह में मिनी भारत की झलक पेश करेंगे। तो है ना कितना खास होने वाला ये 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो इंतजार आप कर रहे हैं। बस 15 अगस्त यानी बहुत पास है अब हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसकी तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही नया जोश, नई उम्मीद इस देश के साथ जोड़ सकते हैं।

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

तो दोस्तों, देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। देशभक्ति का एक मतलब ये भी है कि हम अपने शहर, अपने आसपास और अपने लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और इसी के लिए दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध 16 अगस्त तक लागू रहेगा। इसमें ड्रोन के अलावा पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और कई तरह के छोटे हवाई उपकरण शामिल हैं। तो ये प्रतिबंध क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय समारोह के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके की गतिविधि करने का सोच रहा है ना, तो सावधान हो जाइए, नियमों का पालन करिए, क्योंकि जश्न भी पूरे गर्व से मनाएं और जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाएं। इसके साथ एक और ऐसी चीज है जो हमारे त्योहारों की खुशी को ना पल भर में हादसे में बदल सकती है। इसी के लिए दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझा 15 अगस्त को

सभी पतंगे उड़ाते हैं, मौत से उड़ाते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल जो है, लोगों से अपील की गई है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्या हुआ है कि चाइनीज मांझा नायलॉन, प्लास्टिक, मेटल कोटेड या किसी भी ऐसे सिंथेटिक मटेरियल से बने धागे का इस्तेमाल पतंग उड़ाने, बेचने या अपने पास रखने या खरीदने पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। कई बार हमने ऐसे हादसे देखे हैं। ऐसा मांझा बिजली की तारों में फंसकर करंट लगने का कारण बन जाता है, पक्षियों और जानवरों की भी जान ले लेता है। राह चलते लोगों के गले और शरीर पर कई चोटें आ सकती हैं, और साथ ही जो टू व्हीलर्स पे लोग जाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही सीरियस कंडीशन पैदा हो सकती है अगर इस तरीके के मांझे में वो फंस जाते हैं। तो इस बार आसमान में तिरंगा रंग की पतंगे उड़े, जो खुशी उड़ाएं खतरा नहीं, पतंग ऐसी उड़ाएं कि आसमान भी मुस्कराए और कोई जिंदगी खतरे में भी ना आए। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो।

तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आप मुझे आपसे अनुमति लेने का। अगला कार्यक्रम होगा दिल के तनाने गाने नए पुराने, जहां बजेगा नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक, साथ ही तड़का होने वाला है रेट्रो म्यूजिक का भी। तो इसी के साथ आज़ादी हमें विरासत में मिली है मेरे दोस्त, लेकिन इसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। भावना नय्यर हियर साइनिंग ऑफ, हैव अ वंडरफुल वेंसडे एंड अ वंडरफुल डेज कमिंग अहेड। देश के नाम एक सलाम, तिरंगे के नाम एक सलाम, और आप सभी के नाम एक बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं छोड़कर जा रही हूँ। जय हिंद। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए कल से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग द्वारा हथियार दागने की यह दूसरी घटना है। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 2050 से ज्यादा हो गई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन चांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: बिल्कुल मत संभालिए, जो जज्बात है वो आप हम तक पहुंचा दीजिए। 9868107070 नंबर। और मैया जी सोने मकड़ो, हाल चाल तो ठीक है ना? शालिनी कहते हैं मुझे, दिल के तराने गाने ने पुराने में आप सुन रहे हैं मुझे, और रेनबो 102.6 नाम है चैनल का। इसके अलावा आप हमें सुनते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी, और साथ में आप हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म को तो जानती होंगे, नहीं जानते तो मैं हूं ना पर बताने के लिए। और क्या कह रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे ना जलील करके नहीं उठाया जाता है, मैं तो अपने आप मेरी आंख खुल जाती है 4 बजे। मतलब 4 बजे आंख खुल जाती है अपने आप? ये पढ़ के ना मैं डर गई हूँ, मैं सही बता रही हूँ। वो सब ठीक है ना आपके साथ? ऐसा डराने के लिए आए क्या दुनिया में लोगों को? ऐसा मत करिए, कमजोर दिल वालों का धक्का लग जाता है। खैर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल भी ले गई और मेरा चैन भी ले गई, और हद तो तब हो गई जब मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा है? मतलब ठीक है, हद ही है वैसे तो, अगर लेना ही था तो कोई कीमती चीज लेती ना, नाम भी खराब के तो 5 रुपए के पेन के लिए ये भी कोई बात हुई? नहीं नहीं नहीं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई इस तरह की गलत बातें नहीं सिखा रही हूँ। मैं चाहे यहाँ पर ऑन एयर बता दे रही हूँ कि मैं कोई चोरी वो चकारी वाली बातें नहीं बताती हूँ, कहीं आप ही मुझे बाद में कहेंगे कि शालिनी तो इस तरह की बातें सिखा रही है ऑन एयर। नहीं नहीं बिल्कुल कतई भी नहीं। फिलहाल तिरंगे का जो सुरूर है वो सब पर छा चुका है, और तिरंगी छटा जो है वो सब तरफ देखने को मिल रही है, और उसी देशभक्ति के रंग में ना हम भी रंग चुके हैं। और ये वैसे तो 3 रंग होते हैं तिरंगे में, लेकिन यहाँ पर जो है वो 7 रंगी छटा हो चुकी है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ महसूस कर रही हूँ अपने आप को। और आप क्या कह रहे हैं?
1: मैं तो बिल्कुल तोता हो गया हूँ। तोता?
0: तोता के साथ साथ मुझे लग रहा है आप मोर हो गए, और इसके साथ साथ जो आपके बराबर में आपकी धर्मपत्नी खड़ी वो क्या कह रही?
1: तोती हो गई हूँ मैं, क्योंकि मोरनी में तो इतने रंग होते नहीं है ना, तो इसीलिए तोती बनना पड़ा है मुझे। हदियों के सारे रंग तो इन्होंने ले लिए, अब गाना चला दो मेरे लिए।
0: चला रही हूँ मैं, डांट क्यों रही है?

नहीं कहने चाहे रंगों में तो कितना भी रंग लो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जो आपने तोते की पत्नी को तोती कहा है ना, वो मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। ये कोई बात हुई, तोती कैसे कह सकते हैं उसको? लेकिन मैं तो तोती ही बोलूंगी, क्योंकि जब मास्टर जी की पत्नी मास्टराइन और शर्मा जी की पत्नी शर्माइन हो सकती है, तो तोते की पत्नी तोती काहे नहीं हो, इन बताइए जरा मुझको है? अगर कोई जवाब है इसका तो हमको भेजिए 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, मेरे यानी शालिनी के साथ, और रेनबो दिल्ली कहते हैं इसे 102.6 पर आप इसे सुन रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं आप हमें, और जिस भी तरह से आप हमें सुन पा रहे हैं ना, हम बहुत खुश हैं इसी बात से। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं आपके। कोई हमें मध्य प्रदेश से मैसेज कर रहा है, तो कोई हमें मणिपुर से कर रहा है, जहां से भी जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपके, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आपका। फिलहाल 9868107070 नंबर है, याद हो गया ना? अगला गाना चला रही हूं।

0: कभी तू तोती लगती है, कभी तू मैना लगती है, कभी तू दिन में भी मुझको न जाने क्यों रहना लगती है। हाय
1: जरा बोल के देखिए अपनी बीवी को, पत्नी को, फिर आपको बताएंगे वो कि दिन में तारे कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि इतने प्यार से जो यहाँ पर कह रहेंगे तो जो भी बोले अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, बता रही हूँ मैं आपको। बच कर रहिएगा, संभल कर रहिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी ना सिर्फ मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, क्योंकि चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर विथ मी शालिनी। आपके मैसेजेस का सिलसिला ना रुकना नहीं चाहिए, और कमाल के लोग हैं, नहीं मतलब छोटी छोटी बातों में ना लड़ने लग जाते हैं। बताइए, मेरे ठीक है प्यार से लड़ रहे हो, बात सही है, कहते हैं कि देखिए मैं तो शिक्षक हूँ लेकिन मेरी पत्नी जो है वो मास्टराइन नहीं है, वो शिक्षिका नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मास्टराइन होने के लिए ना, इस पदवी के लिए उनको शिक्षिका होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मास्टर हैं तो वो तो मास्टराइन हो ही गई ना। आपने सुना नहीं क्या मोहल्ले वालों से कभी, है बताइए, हम तो उनको मास्टराइन ही कहेंगे, क्यों जो बताइए मास्टराइन जी। अगला, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम नाम नहीं बोल सकते, यहाँ पर ये फॉर्मेट ही नहीं है शो का। फिलहाल ये बता सकती हूँ कि वेस्ट बंगाल से हमारे पास मैसेज आया है, और इसके अलावा हमारे पास आया है असम से मैसेज आया है, और दिल्ली से तो मैसेजेस लगातार बरस ही रहे, बस बारिश नहीं आ रही, बता रही हूँ मैं, मैसेजेस तो लगातार बरस रहे। 9868107070 है नंबर, ठीक है जी, नेक्स्ट इज फॉर यू।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यही गाना कोई अंग्रेज गाता तो कैसा करता। चल चाइयाँ चाइयाँ चाइयाँ चाइयाँ, चल चाइयाँ चाइयाँ चाइयाँ चाइयाँ, और फिर क्या होता, फिर उसके सामने चाय का ढेर लग जाता है कि नहीं। लेकिन माफी चाहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, और ऐसे में जो खुमार छाया है देशभक्ति का, उसके आगे ना अंग्रेज़ों की बात करना एकदम ही जो है वो गुनाह है, गुनाह। और ये गुनाह मैं नहीं कर सकती, और इसीलिए अंग्रेज़ों को लाने की नहीं बल्कि भगाने की बात हुई थी इस दिन। वापस उनको भगा दिया था और हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, तो हम भी जो है बातें करेंगे यहाँ पर प्यार मोहब्बत और इश्क की, खुशी की, आज़ादी की, है ना, क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है और ऐसे में हर घर तिरंगा लहरा रहा है। तो आपके दिलों में भी वो तिरंगे का रंग बना रहे और प्यार मोहब्बत बनी रहे सबके बीच में, इसलिए ये प्यारा सा गाना आपके लिए। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ, दिल के तराने गाने नए पुराने में।

बस भी करिए आप, क्या रुलाएं, करी मानेंगे आप? पहले ही मैं बहुत सेंटी हो गई, इतना सारा प्यार, बस बहुत हो गया आज के लिए। दो बातें याद रखना, एक कल बताऊंगी और एक परसों, और अगर ज्यादा पूछो ना तो वो भी नहीं बताऊंगी, समझ गया ना? ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, ऐसा मैं कह ही नहीं सकती, मैं तो मजाक कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप कहते हैं कि हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको बहन बोलते हैं, क्योंकि हमें आपकी आवाज सुनकर अपनी बहन की याद आ जाती है। एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ दुख भी कि हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्हें मेरी आवाज में अपनी बहन की आवाज याद आ जाती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अभी भी याद करते हैं अपनी बहन को दिल से, तो आपसे कहीं दूर नहीं गई है, ठीक है? मैं अभी इतना ही कर सकती हूँ कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए उनकी यादों को संजो कर रखिए, लेकिन मुस्कुराहट को भी बरकरार रखिए, क्योंकि वो आपके करीब ही हैं। एक गाना मैं आपके लिए चलाऊंगी, गाना पुराना होगा, ठीक है? क्योंकि दिल के तराने गाने नए पुराने चल रहे हैं यहाँ पर रेनबो 102.6 पर। आप मेरे साथ, मैं कौन, शालिनी।

वाह क्या बात है। अगर आम तौर पर देखा जाए, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि राजा को रानी से प्यार हो गया, तीर नजर दिल के पार हो गया, दिल जिगर घायल हुए, है ना, ऐसा कहा जा रहा है ना। लेकिन जो अगर आम हालात होते तो इस समय इंसान वो जो है वो हॉस्पिटल के बेड पर नजर आता, वो ये नहीं कह रहा होता, गाना नहीं गा रहा होता। पर प्यार में तो सब कुछ चलता है और प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, और इसीलिए फिर कहते हैं कि अर्ज किया है जिसे कोयल समझा था वो कौआ निकला, दोस्त के नाम पर हवा निकला। सोचते थे और कहते थे जो मिठाई न खाने को हमसे, आज उन्हीं की जेब से एक रसगुल्ला निकला। मतलब हदी हो गई है, अगर रसगुल्ला रखना ही था तो एक क्यों, चार पांच रखते, मैं भी खा लेती ना। पर फिर मुझे याद आया कि क्या जेब में रखा हुआ रसगुल्ला खाना ठीक रहेगा, मतलब हाइजीनिकली ये ठीक है क्या? पर मुझे लगा नहीं जाने देते हैं, क्या करना है, हैं? फिलहाल गाना चला देते हैं। दिल के तरहाने गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ, और चैनल का नाम बताइए जरा। नहीं पता है? कैसे नहीं पता है? मैं बता रही हूँ ना, बार बार सुनिए। चैनल का नाम है रेनबो 102.6, आकाशवाणी सुन रहे हैं आप न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी, और इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी देश के कोने कोने से हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है, उन सभी का बहुत शुक्रिया। आप हमसे ना रूठिएगा, क्योंकि हम रूठ जाएं तो तुरंत मान जाते हैं, लेकिन अगर आप रूठ गए ना तो मनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बता रही हूँ, गाने से भी काम नहीं चलता, बहुत बोलना पड़ता है। फिलहाल मैं गाना चला रही हूँ।

और जिस तरह से ये बोल रहे हैं ना, उस तरह से मुझे हमदम तो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे तो ये सुनाई दे रहा कि कम कम बोलियो रे, दम दम निकले रे, है कि नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आकाशवाणी 102.6 सुन रहे हैं आप मेरे अनी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है दिल की तराने, गाने नए पुराने। और आप जब बहुत देर से अपनी अर्धांगिनी जी से बहस कर रहे हैं कि जिंदी ये पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ऐसा क्यों बताओ जरा मुझे, तो वो कह रहे कि सोना चपचाप खा लो, तुमने कभी देखा है कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नजर आया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझसे, बता रही हूँ मैंने तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और फिर आपने जो पलटी मारी है, फिर आपने पत्नी जी को खुश करने के लिए दूध का बर्तन उठाया, निकाला, गैस पर रख दिया है, और जब 10 मिनट तक वो नहीं उबला ना, तो आपको पता चला कि वो दूध तो था ही नहीं, वो तो इडली का घोल था। फिर तो आपका वड़ा सांभर जो भी बनाओ वो तो ईश्वरी मालिक है। फिलहाल मैं चलती हूँ यहाँ से, क्योंकि जाने का वक्त हो गया है। मैं बिल्कुल भी आग में घी डालने का काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, सच बोलना मेरी आदत है, मैं इससे बाज नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ, और ज्यादा ना बोलना पड़े ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो ख्याल रखें, तो गाना सुनी जाए। आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग, तो मैं बोल चुकी हूँ ना, अब मुझे दिल के तराने, गाने नए पुराने आपको सुनाने, तो मैंने सुना दिए, बातें करनी थी वो भी कर ली, अब मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, शालिनी सेज टाटा।

सुबह के 9:59 और ठीक 18 सेकंड हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप मुख्य समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का रेनबो चैनल है 102.6। अब पेश है मुख्य समाचार।

0: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
4: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी

0: You know, this track is also known as Anthony's Song, after the main character mentioned in the opening verse. Still ahead, more tracks with one more evergreen Hindi favorite. So stay tuned. Meet you again after this very short break.
1: Namaskar, main Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta bol rahi hu. Delhi sarkar ne Delhi Lakshmi Yojana ko manzoori de di hai. Is yojana ke तहत patra mahilaon ko हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: Welcome back to the Matchless Music Hour on Akashvani Rainbow 102.6 MHz and the Timeless Melodies Continue with your host Isha Goyal Mathur. Here's a quick Delhi update. Bharatiya Vyapar Mahotsav 2026 is coming to Bharat Mandapan from 12th August to 15th of August. A four-day showcase of India's homegrown products and services, celebrating Vocal for Local and Atmanirbhar Bharat. This exhibition is free for visitors, but registration is required, so do remember to register on their website bharatiyavyaparmahotsav.com. Moving on to the next track, few songs have an opening quite as instantly recognizable as this one. Nancy Sinatra lends her unmistakable voice to one of the great James Bond themes. Here's You Only Live Twice by Nancy Sinatra.

0: Well, it feels that since the festival season is round the corner, the magical monsoon festival of Tej is here. The rain, the swings, the clouds, and the melodies that seem to perfectly belong to the season itself. So going to play next track for you, which is Saavan Ke Jhule Pade by Lata Mangeshkar from the film Jurmana.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: Well, that was a small break again. And now for you, this is Nancy Sinatra, You Only Live Twice.
3: Na tez barish se dikkat, na traffic ka jhanjat, na mo bharat train se aaramdayak.

0: Time for a quick break. We'll be back with you shortly.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। लेट्स गेट बैक टू द म्यूजिक मेमोरीज एंड वी आर जस्ट 7-8 मिनट्स अवे फ्रॉम द शो। So moving on to the next song, it's about finding that one special person. The Seekers will never find another you.

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी यह देश की पहचान को मजबूत कर रही है। हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसरो के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर साराभाई की वैज्ञानिक सोच ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव रखने में मदद की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा कि आज के युवाओं के सपने कल के भारत की नींव हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों ने भारत की ग्रांट सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन, शांति मोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। और प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम है आपका पसंदीदा बॉलीवुड रील्स, जिसमें लेकर आते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरें, ढेर सारे प्यारे प्यारे नए पुराने तरानों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे सावन के जुड़े हुए जो गीत संगीत होते हैं ना, वो हमारे जहन में अपने आप ही आ जाते हैं और मन करता है कि हाँ, प्रोग्राम की जो शुरुआत है ना, वो उसी के साथ की जाए। तो आज बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि, और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें। साथ में होगा एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल हमेशा की तरह, जिसको सुनकर, जिसको जिसका सही जवाब बताकर आप बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज। तो बस रही हमारे साथ कुछ यूं ही। और वैसे भी दोस्तों, इस वक्त इंडिपेंडेंस डे का हफ्ता चल रहा है और जाहिर सी बात है ना, अपने मन में, तन में, अंदर तक कहीं ना कहीं हमारी जो क्या ये कहें कि हमारी जो अंदर की पूरी भावना है ना, वो इस वक्त पेट्रियोटिक हो चुकी है। और इस समय यदि हम चाहें कि कोई आपको एक ऐसा गीत सुनाए जो आपको अपने देश से जोड़ दे, अपने देश की मिट्टी से जोड़ दे और याद दिला दे कि भाई हमारा देश जो है ना, अपने आप में इतना अनूठा है कि एकता में एकता का एक अनूठा, एक अपने आप में इकलौता उदाहरण है। तो चलते सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स भी और साथ में बॉलीवुड की चटपटी

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: एक बार फिर से बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जैसे कि हमने बताया कि देश हमारा रंगीला है, लेकिन साथ साथ जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, वो भी रंगीली है। और यहाँ अब ऐसा हो गया है कि केवल आपको जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, उन्हीं के साथ फिल्में देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमारी जो पैन इंडिया फिल्म्स हैं ना, वो भी यहाँ पर काफ़ी पसंद की जाती है। और ऐसी ही एक पैन इंडिया जो फिल्म है, उसका इंतज़ार हो रहा है अब लोगों को काफ़ी शिद्दत से। फिल्म कौन सी है? ये है टॉक्सिक। जी हाँ, यश की टॉक्सिक का इंतजार है जबरदस्त तरीके से। और खास बात ये है कि इस फिल्म में नयनतारा ने एक खास रोल निभाया है। और खास बात ये भी है कि नयनतारा ने इस फिल्म के लिए बहुत सारे अपने जो नियम है ना, वो तोड़े हैं। वो जनरली ये चाहती हैं कि जब भी वो कोई फिल्म करें तो उसमें बहुत सारे स्टार्स ना हो, कहते उसके साथ ना कुछ मजा सा नहीं आता, बहुत थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो इसलिए वो कोशिश करती है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें बहुत सारे कलाकार हों तो वो उसे ना करें। लेकिन जब इसकी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। साथ साथ इसमें खास बात यह भी है कि जब भी फिल्म का कोई प्रमोशन इवेंट होता है ना, तो वो उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, कहती है मैं इन चीजों में ना उतनी अच्छी नहीं हूं और इसी वजह से मैं इससे दूर रहती हूं। लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो यश ने उन्हें फोन किया और इसी वजह से नयनतारा इस फिल्म के प्रमोशन लॉन्च पर आई, ट्रेलर लॉन्च पर आई। तो देखिए ना, जब इतनी खासी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस नयनतारा फिल्म के प्रमोशन के लिए आ सकती हैं, अपनी जिंदगी के बनाए हुए कुछ नियम तोड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली उस फिल्म में कुछ खास होगा। तो चलिए, उस फिल्म का हम इंतजार करेंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको इंतजार नहीं करा रहे, इसी फिल्म का एक खास ट्रैक, एक जबरदस्त ट्रैक जिसने वाकई में इस वक्त इंडस्ट्री में तबाही मचाई हुई है, सुना रहे हैं आपको हमारे वन एंड ओनली प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

जी हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रैक है जिसको अभी अभी आपने सुना ना, वो भी डेफिनेटली हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे खास खबर। 14 अगस्त यानी कि अब से सीधे 2 दिन के बाद दो जबरदस्त मतलब मोस्ट अवेटिंग फिल्म हम कह सकते हैं कि वो रिलीज होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की। हिंदी सिनेमा की वो दो फिल्में जिसमें इमरान हाशमी का इंतजार है लोगों को और साथ में है सनी देओल का इंतजार, और ये दोनों ही मूवीज रिलीज हो रही हैं 14 अगस्त को। और जैसे कि आजकल सिनेमा जगत में एडवांस बुकिंग का चलन स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का भी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। लेकिन खबर ये मिली है कि इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसकी बुकिंग जो है बंटवारा 1947 से ज्यादा हो गई है। और शायद यही वजह है कि थोड़ा सा सनी देओल और राजकुमार संतोषी जो है ना थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं कि क्या आवारापन 2 जो है वो बंटवारा 1947 से ज्यादा लाइमलाइट ले जाएगी, ऐसा है क्या? चलिए, ऐसा यदि है भी तो मुझे नहीं लगता कि सनी देओल को किसी तरह का खतरा है, क्योंकि जब इस तरह की फिल्में आती हैं ना तो डेफिनेटली लोगों को काफी इंतजार उनका रहता है और इसी वजह से उन्हें पसंद भी किया जाता है और साथ साथ लोगों को के दिलों में उनको देखने की ख्वाहिश भी ज्यादा होती है। फिलहाल मुझे

ख्वाहिश है आपको ये ट्रैक सुनाने की, तो चलिए ट्रैक सुनते हैं और वापस आते हैं बॉलीवुड रील्स में एक खास सवाल के साथ, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारी बॉलीवुड सरताज।

0: तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में आप सभी का स्वागत। आपके साथ हूँ कौन मैं है? जी हाँ, आपकी अपनी रॉकिंग रेशमी। दोस्तों, बहुत सी मतलब हमें एक्ट्रेसेस इतनी पसंद आती हैं कि हम चाहते हुए भी ना, मतलब ना चाहते हुए भी समझ लीजिए कि उन्हें हम पसंद करने लगते हैं। और ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं सारा अली खान। सब जानते हैं कि अमृता सिंह और सैफ अली खान की सुपुत्री हैं और फिल्मों में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। एक के बाद एक कई फिल्में दीं, कुछ अच्छी गईं, कुछ उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री में उन्हें अच्छा खासा पसंद किया जाता है। तो आज उन्हीं से जुड़ा एक सवाल किस लिए पूछ रही हूँ इसका जवाब दूंगी मैं आपको बाद में, लेकिन सवाल उनसे जुड़ा इसलिए है, उसका जवाब बाद में दूंगी, लेकिन सवाल क्या है ये आप सुन लीजिए। 9868107070 पर आपको उस सवाल का सही जवाब लिखकर भेजना है, अपने नाम, अपने फ़ोन नंबर और अपने शहर के नाम के साथ हमारे पास। तो जल्दी से सवाल सुन लीजिए, क्या है आज के बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था? जी हाँ, आपको ये बताना है सारा अली खान की डेब्यू फिल्म कौन सी थी। आप जल्दी से लिखकर उसे भेज दीजिए हमारे पास, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ 9868107070 पर।

0: बॉलीवुड ट्रेल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज आप सुन रहे हैं क्या, बहुत सारी नई नई खबरें। और मैंने आपसे पूछा है बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल, और वो ये है कि सारा अली खान ने किस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको बताना है उस फिल्म का नाम, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए उसे हमारे पास। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और इस पर अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ जल्दी से लिखकर भेज दीजिए इसका सही सही आंसर।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जी हाँ, और फिलहाल एफएम रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, लेकर आई हूँ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेलर्स। और अब एक ऐसी खबर जो आपको अंदर तक हिला देगी, वो ये कि जल्द ही रिलीज होने वाली थी एक फिल्म 11 सितंबर को, फिल्म का नाम था उड़ता तीर। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अवेटेड फिल्म का इंतजार वाकई में सभी को था, मुझे भी था। और डेफिनेटली जो आयुष्मान खुराना के चाहने वाले हैं ना, उनके फैंस हैं, उनको भी इस फिल्म का अच्छी तरह से और काफ़ी शिद्दत से इंतजार था। लेकिन दोस्तों, करण जौहर की इस प्रोडक्शन वाली फिल्म की ना रिलीज डेट अब पोस्टपोन हो गई है। अब आप वो कहेंगे ऐसा क्यों भाई, इस फिल्म में ऐसा क्या था? भाई फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था, फिल्म तो उम्मीद से भी बेहतर हो सकती है। जाहिर सी बात है, करण जौहर प्रोडक्शन की है और साथ में आयुष्मान खुराना का नाम उस फिल्म के साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी। लेकिन खास बात यह है कि 11 सितंबर को यह फिल्म रिलीज होनी थी किसके साथ? अक्षय कुमार की हैवान के साथ। और ऑब्वियस ही बात है, जब अक्षय कुमार अपनी कोई फिल्म लेकर आए, और जैसे कि बॉलीवुड में आजकल ट्रेंड चल गया है, यदि कोई दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली होती है ना एक ही दिन, तो कोई ना कोई फिल्म प्रोडक्शन जो होता है या जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो उसे पोस्टपोन कर देते हैं या प्रीपोन कर देते हैं। तो इस बार ये जो ट्रेंड है, ये आयुष्मान खुराना की फिल्म उड़ता तीर के साथ फॉलो किया गया है। 11 सितंबर को अब ये फिल्म रिलीज ना होकर 9 अक्टूबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर में दिखाई देगी। जी हाँ, आयुष्मान की हाई ऑक्टेन फैमिली एंटरटेनर और स्पाई कॉमेडी फिल्म रहेगी, जिसमें इनके साथ होंगी सारा अली खान। लेकिन हाँ, 11 सितंबर को प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी हुई अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म हैवान रिलीज होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, अब इन दोनों फिल्मों का, हैवान और उड़ता तीर का, क्लैश बिल्कुल नहीं होगा और हमें आराम से फिल्में देखने को मिलेंगी ये दोनों। फिलहाल मैं आपको वो गाना सुना रही हूँ जिसका म्यूजिक आप ऑलरेडी 2 बार सुन चुके हैं, और मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दे दूँ कि हाँ वाकई में भैया ये गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक पुराने सॉन्ग का रिमिक्स है, बहुत उस समय भी काफ़ी चला था ये गाना, और बाहर आने तक फिल्म का ट्रैक था, लेकिन इस बार ये पति पत्नी और वो दो में आपको सुनाई दिया। चलिए सुनते हैं इस गाने को, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और वापस आते हैं एक बार फिर से हमारे और आपके अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: जी हाँ, और अब बात है कार्तिक आर्यन की। भाई कार्तिक आर्यन ने कबीर खान की फिल्म चंदू चैंपियंस में अपने करियर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी थी, ऐसा माना जाता है। और फिल्म में उन्होंने पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरली कांत पेटकर का किरदार निभाया था। और अब खबर ये है कि कार्तिक आर्यन और कबीर खान ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है और दोनों एक बार फिर से एक और स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए रीयूनाइट हुए हैं। ये जो फिल्म है किक बॉक्सर तजामुल इस्लाम की जिंदगी पर बेस्ड होगी और कहा यह जा रहा है कि इस बायोपिक में कार्तिक आर्यन किक बॉक्सर तजामुल इस्लाम की के कोच का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। और कबीर खान ने इस फिल्म का शेड्यूल भी स्टार्ट कर दिया है। तो भाई अब देखना ये है कि क्या वाकई में इस बायोपिक में कार्तिक आर्यन नजर आएंगे, और नजर आएंगे तो क्या इस बार भी उन्हें उस फिल्म के लिए अवार्ड मिलेगा। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा इसकी आगे की खबरों का, लेकिन आपके लिए एक और प्यारा सा गीत लेकर आई हूं बॉलीवुड ट्रेल्स में। तब तक आपने यदि अभी तक मेरा सवाल नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम आपको लिखना लिखकर भेजना है 9868107070 पर।

आज बॉलीवुड रील्स में हम मना रहे हैं बर्थडे एक ऐसी अभिनेत्री का जिनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि अमृता सिंह और सैफ अली खान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे खासे एस्टेब्लिश कलाकार हैं और साथ साथ इस अभिनेत्री ने भी अपने आप का एक नाम बना लिया है इंडस्ट्री में और उनके नाम के साथ डेफिनेटली उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। जी हम बात कर रही हूँ सारा अली खान की और यही वजह थी दोस्तों कि आज मैंने उनसे जुड़ा आपसे सवाल पूछा। तो वही बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, उनकी डेब्यू फिल्म का नाम आपको बताना है लेकिन साथ साथ आज उन्हें ढेर सारी विशेस भी देनी है क्योंकि आज सारा अली खान मना रही हैं अपना बर्थडे। 2018 में उन्होंने फिल्म केदारनाथ के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और उसके बाद रणवीर सिंह के

सिम्बा में भी काम किया और एक के बाद एक कई फिल्में दी और रिसेंटली पति पत्नी और वो दो में वो नजर आई आयुष्मान खुराना के साथ में, और उनके साथ में थी शर्वरी वाघ भी, और काफी पसंद किया गया उसने उन्हें इस फिल्म के द्वारा भी। लेकिन साथ साथ दोस्तों आज एक और अभिनेत्री हैं जिनका बर्थडे हम मना रहे हैं, वो है साइशा, जिन्होंने अजय देवगन की फिल्म शिवाय के साथ फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो आज इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को हमारे एफएम रेनबो की तरफ से ढेर सारी कामनाएं, वो ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराती रहें और हमें ढेर सारी अच्छी अच्छी फिल्में देती रहें। और अब जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बहुत आसान सा सवाल था, सारा अली खान की डेब्यू फिल्म का नाम क्या था, आपको वो बताना है, तो बहुत सारे लिसनर्स के बिल्कुल सही मैसेजेस आए हैं। विनीत कुमार ने बदायूं उत्तर प्रदेश से लिखा है, सलीम मलिक ने मेरठ से बताया है, पंकज ने अमरावती से, राजकुमार के संतानी ने अकोला महाराष्ट्र से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा ये है प्रवीण चौहान खगनौर खरगोन मध्य प्रदेश से, इसका रोहित श्रीवास्तव है दिल्ली से, इसके अलावा सुनीता शर्मा शालीबान बाग से, और ये है निकिता, कहाँ से इन्होंने लिखा है, इन्होंने पुणे से सही जवाब लिखकर भेजा। और हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक और हैं सुरोजीत ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा ईशा ने धर्मशाला से लिखा है, और ये कौन है सुखलाल बाला लिख रहे हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। और वो सभी लिसनर्स जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है उनका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ओर से। और आप सभी के लिए इसी फिल्म का ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो 102.6 पर। और इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत, 1 बजे आपसे फिर मुलाकात करूंगी, लेकर आऊंगी रेनबो हेल्पलाइन एक खास विषय के साथ।

0: We'll take a short break. Stay with us. There's plenty more music and conversation coming your way on the program Play It Cool on Akashwani Rainbow 102.6 MHz.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
8: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स टू द प्रोग्राम प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी ऑल एक्सपीरियंस बट इन आवर ओन वेरी डिफरेंट वेज, ग्रोइंग इनटू आवरसेल्व्स। हैज समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट। What's one quality you have developed over the years that you are most proud of? Maybe you have become more confident, more patient, better at setting boundaries, or simply learning to say no when you need to. There is Arpit Jain. Hello, Mr. Arpit Jain, who sent me a message. Growing up in a busy household taught me how to stay calm when things get chaotic. Yes, Arpit, we have to adjust ourselves as per the situations around us. Moving on to the next song, a song that reminds us that the most valuable things in life often have no price tag at all. Here's Priceless by Maroon 5 and Lisa.

0: waiting for you to type in your messages and WhatsApp them to 9868107070. I repeat, 9868107070. So, as you send those messages, we will take a short break and be right back with more music and more moments on Play It Cool.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक डियर लिसनर्स टू द प्रोग्राम प्लेड कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज विद योर होस्ट ईशा गोयल माथुर। हियर्स अ लिटिल थॉट फॉर द आफ्टरनून। वी स्पेंड सो मच टाइम कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, बट फ्लावर्स नेवर डू। अ सनफ्लावर डज नॉट विश इट वर अ रोज, and a rose never wishes it were a lily. Each simply blooms in its own way, in its own time, own season, and perhaps that is something we can learn too. There's no right time or right way to become who we are. So just embrace yourself, accept yourself, your virtues and your vulnerabilities and everything that comes in between. Here's a song that takes us through just that kind of journey, Coldplay with Viva La Vida.

0: Before moving on to the next song, we are taking a short break. Stay tuned.
1: Mangal bhavan mangal hari prabhu
2: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas ji ke saath Shri Ram Charitmanas ki bhav ras sangeet yatra sampurna Shri Ram Charitmanas somvar se shukravar subah 7 baje aur dopahar 12:30 baje DD National aur Waves OTT par.
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है.
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं.
5: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी.
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद. सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में.
5: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में. आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में.
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध.
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में.
7: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है. तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
8: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे. मुझे HIV है.
7: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं.
9: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है. हम सब से मिलने से नहीं.
10: इग्नोर नहीं, याद करो.
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
12: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
0: एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द प्रोग्राम प्लेड कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज. टुडेज कॉन्वर्सेशन विद बिटवीन अस हैज बीन अबाउट बिकमिंग आवरसेल्व्स. हियर्स अ सॉन्ग दैट ब्रिंग्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी टू दिस प्लेलिस्ट.

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। गृहमंत्री आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी यह देश की पहचान को मजबूत कर रही है। हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा कि आज के युवाओं के सपने कल के भारत की नींव है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। पंजाब स्थित कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना आज बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज रेल यात्री डिब्बों की पहली खेप रवाना कर रहा है। इसमें 3 वातानुकूलित शयनयान, 3 वातानुकूलित कुर्सीयान, 11 गैर वातानुकूलित कुर्सीयान और 2 पावर कार शामिल हैं। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांति मोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर अब प्रस्तुत है प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। दोस्तों, क्या आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं? क्या आपको बैठकर उठने में परेशानी होती है, खासकर जब आप काफी समय तक बैठे रहने के बाद उठते हैं? क्या आप लड़खड़ा जाते हैं? क्या इस तरह की कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं? तो आज का रेनबो हेल्पलाइन है खास तौर पे आपके लिए। आज का विषय है द डेस्क वर्कर्स बैक सेडेंटरी बिहेवियर एंड ग्लूटियल एमनीशिया। अब ग्लूटियल एमनीशिया क्या होता है, ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा आज का प्रोग्राम। आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर आशु अग्रवाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच।
1: तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशु अग्रवाल और ग्लूटियल एमनीशिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1084। साथ ही यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल रखना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, आप इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं

आज हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशु अग्रवाल, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और आज हम बात करेंगे ग्लूटियल एमनीशिया के बारे में। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप स्टूडियो में हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1084।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आरजे रश्मि और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आशु अग्रवाल जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आज का हमारा विषय है द डेस्क वर्कर्स बैक सेडेंटरी बिहेवियर एंड ग्लूटियल एमनीशिया। क्या आपको लगता है कि आपकी जो ऑफिस चेयर है वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, लेकिन साथ साथ क्या वो आपकी हेल्थ को फायदा दे रही है? आज इसी बारे में बात करेंगे हम हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, ग्लूटियल एमनीशिया। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ग्लूटियल क्या होता है और हमारे जो लिसनर्स इस समय हमें सुन रहे हैं वो इस बात को आराम से समझ सके, आसान भाषा में समझ सके, तो प्लीज बताइए।
1: ग्लूटियल एक मसल का नाम है जो कि बैक में होती है, जो लोअर बैक में और पीछे थाई में जो सांतल होती है उसके बीच का हिस्सा होता है
0: जी।
1: वो बहुत ही बल्कि और स्ट्रांग मसल होती है, उसे ग्लूटियल मसल कहते हैं।
0: ओके।
1: और एमनीजिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। तो कई बार लंबे समय तक बैठने में, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे एक ही पोजिशन में बैठे बैठे और महीनों बैठे बैठे, तो ग्लूटियल मसल्स जो है वो एंगेज नहीं होती, एक्टिवेटेड नहीं होती। तो ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजना बंद कर देता है मसल को।
0: okay.
1: और जब हमें जरूरत होती है उस एक्टिविटी को करने के लिए, ग्लूटियल मसल को एक्टिवेट करने के लिए
0: जी.
1: तो मसल, क्योंकि ब्रेन भूल जाता है सिग्नल भेजना, इसको एमनीजिया कहते हैं। तो इसलिए ग्लूटियल मसल मेमोरी लॉस या ग्लूटियल एमनीजिया
0: Okay.
1: या इसे डेड बर्ड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है।
0: ओके तो सर ने हमें बताया जो ग्लूटियल एमनीशिया है उसे डेड बर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी कि ये वो हिस्सा होता है जो कमर के नीचे और नितंब के बीच का जो हिस्सा होता है उस जगह पर। यदि आपको भी लगता है कि आप घंटों एक ही पोजीशन में एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं और आप भी किसी तरह का कमर दर्द या किसी भी तरह का दर्द आप महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आज का जो प्रोग्राम है वो आप ही के लिए है। सर, जैसे आपने बताया कि ग्लूटियल एमनीशिया, इसे डेड बर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, तो क्या किस तरह के लोगों को ये सिंड्रोम की शिकायत हो सकती है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए।
1: ये डेस्क जॉब वर्कर्स को होता है जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, चाहे घर पे बैठ के कर रहे हो या ऑफिस में बैठ के कर रहे हो। लंबे समय का मतलब है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे और हफ्तों महीनों काम कर रहे हैं। तो उसमें जो मसल्स होती हैं वो एंगेज नहीं होती हैं, ग्लूटियल मसल्स। तो ब्रेन वो सिग्नल देना बंद कर देता है, भूल जाता है। जब भी वो खड़े होते हैं या चलते हैं तो एकदम से वो स्टंबल करते हैं, फॉल करने का खतरा होता है।
0: ओके, लड़खड़ाते
1: हैं, तो उनको सपोर्ट लेना पड़ता है। तो वो फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट साइन होता है फॉर डेड बर्ड सिंड्रोम या ग्लूटियल एमनीजिया का। या अगर सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, उन्हें सपोर्ट लेना पड़ता है, या उन्हें भागना है तो दिक्कत होती है, या उन्हें स्क्वाट्स करना है, एक्सरसाइज करनी है तो उन्हें दिक्कत, उन्हें वीकनेस लगती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजना बंद कर देता है
0: जी।
1: वो भूल जाता है ब्रेन कि ग्लूटियल मसल्स भी हैं, क्योंकि वो एक्टिवेटेड ही नहीं होती है, वो एंगेज ही नहीं होती है लंबे समय तक बैठ रहे हैं, तो इसलिए उनको सिम्टम्स होते हैं।
0: तो इसका मुख्य कारण केवल यही है या कोई हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल की केवल जो, जैसे आपने बताया कि जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आई थिंक उसमें जो आईटी ऑफिशियल्स हो गए या हमारे स्टूडेंट्स हो गए जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए है या इसमें पोस्चर की भी कोई भूमिका है?
1: नहीं, जो लंबे समय तक बैठे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल वर्कर्स हैं, जो फोन पे काम करते रहते हैं, एक समय एक जगह पे बैठे,
0: बीपीओस वगैरह में,
1: बीपीओस वगैरह में, तो उनको भी ये हो सकता है। और अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी जो ग्लूटियल मसल्स को उसको एंगेज नहीं करते हैं
0: जी,
1: तो उनको ये सिम्टम्स होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि ये ग्लूटियल एमनीशिया एक तरह की भूलने की बीमारी है जिसमें हमारी मसल्स ही भूल जाती हैं कि उन्हें एक्टिव भी रहना है या उन्हें काम कैसे करना है।
1: हमारा ब्रेन भूल जाता
0: है, हमारा ब्रेन भूल जाता है
1: उसको काम कैसे करना
0: जी,
1: है
0: जी, जी.
1: वो सिग्नल देने भूलना बंद कर देता है कि सिग्नल हमें भेजने में इस मसल्स को काम करने के लिए
0: जी.
1: क्योंकि 10-10 12-12 घंटे वो सिग्नल भेज ही नहीं रहा।
0: हाँ.
1: और जब वो भेजने की जरूरत होती है तो भूल चुका होता है,
0: भूल चुका
1: कैसे हम भेजे, तो इसीलिए पेशेंट्स को, पर्सन्स को दिक्कत होती है।
0: तो माय डियर लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोई उम्र का तकाजा नहीं है या लंबे समय तक बैठे रहने की वजह नहीं है। लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से जो आपकी मसल्स भूल गई हैं, आपका ब्रेन भूल गया है कि आपके इस मसल को काम करना है, तो हो सकता है कि आप भी ग्लूटियल एमनीशिया से पीड़ित हों। तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा प्रोग्राम है आज का रेनबो हेल्पलाइन इसी विषय पर। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशु अग्रवाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1080 2342-1084। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: विषय है द डेस्क वर्कर्स बैक सेडेंटरी बिहेवियर एंड ग्लूटियल एमनीशिया. तो हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है. हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, आपका सवाल पूछिए और आपका नाम बताइए.
1: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ. 48 वर्ष मेरी उम्र है
0: जी.
1: तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर सर दोनों को गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी, आपका सवाल पूछिए.
1: हाँ जी, मेरा बड़ा अहम और सीरियस सवाल है. और सवाल मेरा ये है कि वैसे तो खैर मुझे 2005-06 से ही मतलब ये बैक में हिप्स जॉइंट्स में प्रॉब्लम है
0: जी.
1: और नेक में तो कुछ अनुमान है कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है मुझे. अब मेरे को हो ये रहा है कि बैठे बैठे मैं अगर कोई वर्क करूं तो कमर में और गर्दन में मेरे को पेन बढ़ना शुरू हो जाता है. और मैं जो भी काम करता हूं तो उस वक्त मुझे दिमाग में ये नहीं रहता कि मैंने क्या कर लिया, क्या करना बाकी है, क्या कर चुका हूं. सब रिपीट मिस वाला हाल है. क्या मैंने पढ़ा, क्या लिखा, स्पेलिंग तो मुझे याद रहेगी, बाकी मैटर भूल जाता हूँ. क्या पढ़ा मैंने, स्पेलिंग भी कई बार भूल जाता हूँ.
0: जी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप होल्ड रखिए, आप तो सुनिए हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं.
1: हाँ, इसका उपाय बताएं प्लीज.
2: सर ये आपका तो ग्लूटियल एमनीजिया के बजाय वाकई में एमनीजिया वाली चीज लग रही है कि जो आप भूल जाते हैं. तो ये भूलने की बीमारी तो आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ेगी, जो आप जो काम करते करते जो काम करना भूल जाते हैं. बाकी गर्दन में दर्द और हिप में दर्द बताया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्लूटियल एमनीजिया से रिलेटेड नहीं है ये. तो इसमें आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बेसिकली एक्सरसाइज है अर्ली स्टेजेस में, अगर लेट स्टेज है बहुत सीवियर है देन इट रिक्वायर्ड सर्जरी, ऑपरेशन की जरूरत होती है. और जो गर्दन में और कंधे में जो आपने दर्द बताया था उसकी एक्सरसाइज करिए, हो सकता है थोड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो एक्सरसाइज करेंगे, पोस्चर का ध्यान रखेंगे, थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो सेटल हो जाना चाहिए.
0: तो आई थिंक हमारे लिस्नर जो हैं राजेंद्र जी, अपने सवाल का उनको सही जवाब मिल गया होगा. डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ग्लूटियल मसल्स की, कि जब ग्लूटियल मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही तो ये परेशानी होती है. तो एक आम आदमी इस बात को कैसे समझे कि उसे इस तरह की प्रॉब्लम है, शुरुआती संकेत क्या होते हैं इस बीमारी के?
2: शुरुआत में उन्हीं लोगों को होता है जो कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं.
0: जी.
2: लंबे समय तक बैठे हैं आप एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे बैठ के आप काम कर रहे हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे. और जब आपको एकदम से खड़ा होना पड़े तो आपको स्टम्बल कर जाते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अलार्मिंग साइन कि आपका हिप स्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है वो ग्लूटियस को एंगेज करना भूल जाता है, सिग्नल भेजना भूल जाता है. तो उससे ग्लूटियल एक्टिवेट नहीं होती, एंगेज नहीं होती, आप स्टम्बल कर जाते हो, आप फ्री फॉल की तरफ जाने लगते हो, आपको सपोर्ट लेना पड़ता है या आपको जल्दी से भागना पड़े या आपको सीढ़ियां चढ़ना पड़े. तो आपको ये पहले साइंस है और ये वेरी, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स, कॉमन डिजीज. तो अगर डायग्नोज अर्ली हो जाता है तो हम इसका देखभाल कर सकते हैं, उसे उस पे फोकस करें अगर एक्सरसाइजेस पे तो हम ठीक रह सकते हैं और आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ सकती उससे रिलेटेड.
0: जी, तो ये तो बात हुई ग्लूटियल एमनीशिया की. यदि आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है और आप लंबे समय तक ऑफिस चेयर से चिपके रहते हैं और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ आपकी कमर में दर्द है या आपको उठने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आज का प्रोग्राम हमारा रेनबो हेल्पलाइन डॉक्टर आशु अग्रवाल के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानी के समाधान के लिए है. तो यदि आप भी इस तरह की किसी परेशानी, किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0112342108. और यदि आप अभी अपने ऑफिस में और कॉल नहीं कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है. सर, एक मैसेज मुझ तक आया है, लिखने वाली हैं मिताशी, दिल्ली से लिख रही हैं. उनका क्वेश्चन है कि मुझे लंबे समय तक बैठे रहने से, मतलब इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे रहने का प्रॉब्लम है, जो काइफोसिस है. ये बोलना चाहते काइफोसिस जो चीज है लंबे समय तक इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे रहने से होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या यही है या वो इससे ग्लूटियल एमनीशिया से रिलेटेड है?
2: नहीं, ये ग्लूटियल एमनीशिया से रिलेटेड नहीं है. लंबे समय तक आपने खुद ही बोला कि बैड पोस्चर के कारण, तो बैड पोस्चर के कारण धीरे धीरे मसल्स वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, और बहुत लंबा समय रहे तो बोन्स भी उसी हिसाब से अडेप्ट और डिफॉर्म्ड हो जाती हैं. तो वो एक्सरे रेडियोलॉजिकल एविडेंस से देखा जाता है कि काइफोसिस कितना है, कितने एंगल है. अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है देन इट रिक्वायर्स स्प्लिंटेज, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस.
0: जी.
2: तो और एक्सरसाइज करेंगे तो अगर अर्ली स्टेज है तो सेटल हो जाता है.

0: 2342-1080 और 2342-1080, माफ कीजिएगा 84। खास तौर पे जो लोग दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं उन्हें 011 लगाना बेहद जरूरी है, तभी उनकी कॉल हम तक पहुंचेगी। यहाँ पर साथ साथ एक रिक्वेस्ट और है हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमें लगातार उनमें से कुछ लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, कॉल के साथ साथ हमें वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, साथ साथ जो हमने नंबर्स आपको दिए हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल आप करेंगे। और हमारे नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, 2342-1080 और 2342-1084। दिल्ली से बाहर से यदि आप कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आशु अग्रवाल और हम बात कर रहे हैं ग्लूटियल एमनीशिया की। सर ने सर जिस तरह से आपने बताया कि जो कमर से नीचे का और नितंब के बीच का जो हिस्सा है वहां पर जो पेन है, जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से होता है, उसे हम ग्लूटियल एमनीशिया कहते हैं। और उसकी वजह से अक्सर लोग जैसे ही खड़े होते हैं लंबे समय के बाद तो वो लड़खड़ाकर उठते हैं या उन्हें एकदम से सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें सहारा लेना पड़ता है। तो सर, जो कमर दर्द, हिप दर्द या घुटने का दर्द, किसी भी तरह का जो दर्द है वो सिर्फ ग्लूटियल मसल की वीकनेस से ही जुड़ा हो सकता है या कोई और रीज़न भी हो सकता है इसका?
7: नहीं, इसके कई और वजह भी हो सकते हैं। प्राइमरीली अगर लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं और आईटी प्रोफेशनल है तो प्राइमरीली हमें ग्लूटियल एमनीजिया से रिलेट करते हैं कि उसकी वजह से हो सकता है
0: जी।
7: तो हम अगर उसकी तरफ फोकस करें, उसको ट्रीट करें, उसके एक्टिवेट करें मसल्स को और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो फिर उसी की वजह से है। अगर नहीं ठीक होती है तो हो सकता है कि हिप की या स्लिप डिस्क की ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग बीमारी हो तो वो हो सकती है।
0: अच्छा, जो लोग लंबे समय तक जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उन्हें लग रहा है कि हाँ हमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो क्या आगे फ्यूचर में उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है?
7: हाँ, कैटेगोरिकली हो सकती है उसमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, क्योंकि जब लंबे समय तक बैठते हैं तो हमारी ग्लूट्स एंगेज नहीं होती है और बैठते वक्त हमें और मसल्स ओवरवर्क करती हैं लोअर बैक की, और हमें लोअर बैक पे जो इस डिस्क का प्रेशर है, लोअर बैक का प्रेशर है, वो सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है जिससे कि डिस्क प्रोट्यूजन का या प्रोलैप्स का खतरा होता है। तो और डिस्क प्रोलैप्स होगा तो नीचे पैरों में झुनझुनी, सुनपना और नीचे तक दर्द आना शुरू हो जाता है लेग्स में।
0: okay.
7: और बैक में भी डिस्कम्फर्ट रहता है, उससे हमारी इफेक्ट जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है कि हमारा काम करने का, हम 10-12 घंटे काम भी कर रहे हैं मगर नैगिंग पेन, लोअर बैक में पेन, नमनेस वो होता रहता है, तो हमारा आउटपुट कम हो गया, हमें तकलीफ रहती है और कई बार इतना बढ़ जाता है हमें छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है उसकी तकलीफ के कारण।
0: जी, हमारे पास एक सवाल आया है, लिखने वाले हैं मोहम्मद इम्तियाज जवाहर, कैंप कीर्ति नगर, नई दिल्ली से। कहते हैं मेरी एज 49 साल की है और मेरा काम एम्ब्रॉयडरी मशीन यानी कि सिलाई करने का है, तो मैं लगभग 9 घंटे स्टूल पर बैठकर मशीन चलाता हूँ। वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 40-50 मिनट में मैं 4-5 मिनट का रेस्ट भी ले लेता हूँ, तो क्या मुझे अपने आप को सही रखने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, प्लीज बताइए।
7: इम्तियाज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि 4-5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं हर एक घंटे के बाद, दिस इज वेरी गुड।

0: रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा ग्लूट्स की तरफ आप फोकस करें कि उसको स्क्वीज करें बैठे बैठे, थोड़ा खड़े हो जाएं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, तो उससे आपका और बेहतर हो जाएगा ये चीज।
1: एक और मैसेज आया है, इनका नाम है सक्षम, और वो कहते हैं कि हाउ टू अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कि मेरा डेस्क जॉब है और मुझे घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए।
0: सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना तो मतलब यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेडेंटरी का शब्द तो अर्थ क्या होता है कि नो मूवमेंट एंड लॉन्ग सिटिंग। तो आप अगर मूवमेंट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, योगा करोगे और लंबे समय तक बैठने का जॉब है, तो हर घंटे पे थोड़ा सा उठ जाओ। कोई एक सिस्टम बना लो कि आप हर घंटे पे उठ के फोन कॉल सुननी है या थोड़ा बाहर घूम के आना है और आप आके बैठ जाओ, और सवेरे और शाम या जब भी टाइम मिले थोड़ी सी योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज करो, कुछ खेलने कूदने का कुछ कार्यक्रम ऐड कर लो अपने करिकुलम में, तो दैट विल गो लाइफ लॉन्ग, तो उससे आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी।
1: दिल्ली से मुख्तार का मैसेज भी आया है, कहते हैं घुटने से कटकट की आवाज आती है, तो क्या इसके लिए कोई इलाज डॉक्टर साहब बता सकते हैं?
0: ये ग्लूटियल एमनीजिया से पर से रिलेटेड नहीं है। घुटने में कटकट की आवाज कई कारणों से आ जाती है, मेन आम कारण होता है मसल वीकनेस। तो अगर आप मसल फोकस एक्सरसाइज करने की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद ये घुटने की टकटक ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर फर्दर अगर नहीं ठीक होती 15-20 दिन एक महीने एक्सरसाइज के बावजूद, तो फिर एक्सरे करा के कम से कम देखना होगा घुटने के अंदर कुछ और वजह तो नहीं है।
1: दिल्ली से संध्या लिख रही है, व्हेन डू वी कॉल अ पर्सन इज सेडेंटरी?
0: वो मैंने अभी आपको बताया कि मोशन या मूवमेंट लेस एंड सिटिंग मोर। जब हम बहुत देर तक बैठे बैठे 8-10 घंटे एक ही पोजिशन में बैठे बैठे काम कर रहे हैं और मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको सेडेंटरी जॉब कहते हैं।
1: जी, तो आई थिंक संध्या जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और यदि इससे जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है तो आप एक बार फिर से हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। ये सभी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के जरिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ साथ हमें कॉल भी कर सकते हैं 0112342108 पर।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
9: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं ग्लूटियल एमनीशिया से। सर, एक सवाल आया है, ये जानना चाहती हैं, ग्लूटियल एमनीशिया है या नर्व पेन, ये कैसे पता चलेगा?
8: नर्व पेन के अलग सिम्टम्स होते हैं टिंगलिंग, नर्व के सिम्टम्स होते हैं टिंगलिंग, झुनझुनी होता है, सुनपना होता है
7: जी।
8: और नर्व एक तरीके से रेडिएट करता है नीचे, अगर शैटिक नर्व है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैक से शुरू होता है और नीचे थाई तक जाता है और कभी कभी टोज में भी जाता है। झुनझुनी, सुनपना, जलन, बर्निंग, चीटिया सी काटना, उसको नर्व पेन होता है। एंड मसल पेन इज एंटायरली डिफरेंट। मसल पेन और वीकनेस हम जो कह रहे हैं कि हमें खड़े होने में लड़खड़ाहट है, स्टेबिलिटी में स्टम्बल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, संभल नहीं पाते, दैट इज ग्लूटियल एमनीशिया।
7: ओके, निधि का मैसेज आया है प्रयागराज से, कहती है मेरी 10 से 5 की जॉब है। कुछ समय तक पहले मुझे तक लगता था कि ज्यादा देर तक खराब पोस्चर में बैठने के कारण ग्लूटियल मसल्स में दर्द होने लगता था, लेकिन अब ऐसा कम होता है और वहां पर थोड़ा फैट भी जमा हो गया है और मेरी एज 30 साल है। ये पूछना क्या चाहती हैं ये मैं नहीं समझ पाई।
8: वही फैट जमा हो गया, दैट मींस कि मसल आपकी ज्यादा काम नहीं कर रही है, फैट डिपोजिशन तभी होता है। तो यू हैव टू डू एक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर योर ग्लूट्स। ग्लूट्स की एक्टिव एक्सरसाइजेस होते हैं ग्लूट्स स्क्वीजेस, कि आप सीधा लेट जाइए, हिप को, आप नी को बेंड

0: करिए, जो फुट है आपका फ्लैट रहेगा बेड पे या फ्लोर पे, और फिर हिप को ऊपर उठाइए टुवर्ड सीलिंग वाइल स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स। इस ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ उठाना है और फोकस करना है ग्लूट्स को। तो ये अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूट्स मसल स्क्वीज होंगे, स्ट्रेंथन होंगे और जो फैट डिपोजिशन है वो भी खत्म हो जाएगा।
1: ओके. एक मैसेज आया है, जितेंद्र लिख रहे हैं कश्मीर से, कहते हैं मेरी 50 साल उम्र है और मैं कई घंटों तक चेयर पे बैठ के, लंबे वर्किंग आवर्स हैं मेरे और मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, खासतौर पे जब मैं खड़ा होता हूँ, बट द पेन सबसाइड्स आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए जब वो चलते हैं तो पेन जो है वो कम हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
0: यही आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर घंटे पे आप थोड़ा उठ जाइए, घूम लीजिए और बैठे बैठे भी आप ग्लूट्स स्क्वीज करते रहिए
1: जी.
0: और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए और चेयर पे आप अपना पोस्चर सही रखिए, पीछे बैक सपोर्ट अच्छा होना चाहिए वो उस पर बैठ करिए और रेगुलर वॉक करिए, तो आई थिंक उससे सेटल हो जाना चाहिए
1: तो सर,
0: आपका।
1: मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वॉकिंग एक अच्छा बेनिफिशियल बेनिफिट मिल सकता है
0: हाँ,
1: वॉकिंग से.
0: वॉकिंग एक बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि हमारी बॉडी ही मूवमेंट के लिए बनी है, हमने उसे बैठ बैठ के खराब कर रहे हैं कि 10-10, 12-12 घंटे बैठ जाते हैं और वॉक नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है।
1: जी
0: हम मेंटली थक जाते हैं, फिजिकली हम बिल्कुल थकते नहीं हैं, या फिजिकली भी मेंटली थक जाते हैं तो फिजिकली भी थक जाते हैं।
1: जी. तो सर, जैसे आपने अभी कुछ एक्सरसाइज बताई तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा सही तरीके से यदि आप उन्हें इलेबोरेट करके बताएंगे कि कौन कौन सी वो आसान सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें वो अपने वर्क प्लेस पर या घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान चाहता है कि मुझे जो भी होना मैं वहीं की वहीं कर सकूं, जो उसके स्पेशली जल्दी ना उठना पड़े या घर पहुंचने के बाद ना मुझे बाहर ना जाना पड़े,
0: टाइम का भी अभाव
1: टाइम का
0: रहता
1: भी
0: है
1: अभाव रहता
0: उसके
1: है.
0: साथ।
1: जी
0: तो
1: जी
0: काम करते करते भी आप चेयर पे बैठे बैठे ग्लूट्स स्क्वीज करते रहे, स्क्वीज करना है ग्लूट्स को हर घंटे में 10 मिनट कर लीजिए। आप बैठ काम भी करते होता रहेगा, आपका काम का भी नुकसान नहीं होगा और ग्लूट्स भी आपकी स्ट्रेंथन रहेगी।
1: ओके.
0: एक जो बैक सपोर्ट है, आप चेयर पे बिल्कुल सीधे बैठिए, हिप और नी आपका एक लेवल पे होना चाहिए, जो पंजे हैं वो आपके फ्लोर पे होने चाहिए और शोल्डर और हिप एक लाइन में होना चाहिए
1: जी
0: और आपका कंप्यूटर जो है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। तो योर पोस्चर शुड बी गुड, योर
1: ओके
0: बैक शुड बी स्ट्रेट और
1: जी.
0: थोड़ा सा कुशन लगा सकते हैं पीछे, बैक के पीछे, जो कि कर्व आपका मेंटेन रहे थोड़ा सा। अगर कर्व मेंटेन रहेगा तो भी स्पाइन पे लोड ज्यादा पड़ता है, देन इट मे कॉज पेन इन द लोअर बैक। और फिर आप जब बैठे हैं 1 घंटे में, आप एक सिस्टम बना लें कि थोड़ा बहुत खड़े हो जाएं, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा वॉक कर लें, उससे भी ये काफी हद तक कंट्रोल रहेगा।
1: तो सर, क्या इसके लिए किसी तरह की कोई खास चेयर्स भी आती हैं या कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे इस समस्या को दूर कर सकते हैं?
0: आजकल एर्गोनॉमिक चेयर का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। पहले होता था कोई भी चेयर है आप उस पर फिट हो गए, अब आपके फिटनेस के, बॉडी के हिसाब से चेयर बनती है, दैट इज एडजस्टेबल फॉर हाइट ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया आपका बैक सपोर्ट रहता है उसमें अच्छा, पीछे चपक के बैठिए कुर्सी पे, आपका हिप और नी लेवल मेंटेन एक ही लेवल पे रहता है और जो फुट है वो फ्लैट सरफेस पे रहता है फ्लोर पे, तो और बैक बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, स्ट्रेट रहेगी विद कर्वेचर विद द सपोर्ट, और शोल्डर्स भी आपके एक ही लेवल पर रहेंगे। तो एर्गोनॉमिक चेयर का कंसेप्ट बहुत नया, रीसेंट और बहुत अच्छा है, इससे आपकी बैक में प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज नहीं होगी।
1: जी. सर, हमारे पास कुछ एक सवाल और है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको करवा कर हम ये आइडिया ले सकते हैं कि हमें ग्लूटियल एमनीशिया है?
0: तो हम तो एक तो यही टेस्ट कर सकते हैं ग्लूट्स, जैसे हमने मैंने जैसे बताया ग्लूट्स स्क्वीज करने का, अगर हम लेट के कमर के बल लेट के और उसको हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, हिप को फ्लेक्स करके और नी को फ्लेक्स करके, तो हम
1: जी
0: अगर नहीं उठा पा रहे हैं या हैमस्ट्रिंग्स पे लोड पड़ रहा है, इसका मतलब ग्लूट्स वीक है। या
1: ओके
0: दूसरा, अगर जैसे हम बैठे हुए हैं लंबे समय तक और एकदम से खड़े हुए हमें स्टम्बल कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्लूट्स वीक है हमारे, तो
1: जी
0: हमें उसके तरफ फोकस करना पड़ेगा, उसको एंगेज करना पड़ेगा, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और तभी हम इससे निजात पा सकते हैं।
1: ओके. इसके अलावा एक सवाल और आया है, प्रत्यूष लिख रहे हैं, 30 साल के हैं, द्वारका नई दिल्ली से मैसेज है, कहते हैं आई हैव पार्शल ACL ACL टीयर इन माई नी, उनके घुटने में है, उनके MRI रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो मैं जब भी मैं आराम से चल लेता हूँ लेकिन मुझे डर है कि यदि मैं खेलूंगा या कोई एक्सरसाइज करूंगा तो वो टूट सकती है, तो क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए?
0: पार्शियल ACL टीयर अगर सिम्टोमैटिक है, अगर आपको लगता है चलने में आपके इनस्टेबिलिटी है, लचक आ रही है, या आपको खेलते हुए लगता है कि आप गिर ना जाओ, देन और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के इफ ही फाइंड्स की इनस्टेबल है तो फिर सर्जरी का इंडिकेशन है, अदरवाइज पार्शियल एसीएल टियर कैन बी लेफ्ट अनट्रीटेड, उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, फोकस ऑन लेग एक्सटेंशन एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो उससे काफी हद तक सेटल रहता है, जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर इनस्टेबिलिटी है, आपको चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में, भागने दौड़ने में आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, केवल ये डर के मारे कि मेरा लिगामेंट टूट जाएगा, मैं दौड़ू नहीं, भागू नहीं, खेलू नहीं, तो ये गलत है। तो
1: जी
0: आपको सारे काम करने चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे सिम्टोमेटिक है, मुझे इनस्टेबिलिटी है, देन डेफिनेटली यू गो ऑन फॉर सर्जरी।
1: चलते चलते एक मैसेज और लेते हैं। अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं, 54 इयर्स के हैं, कहते ब्लड शुगर मुझे बहुत सालों से, लगभग 37 साल से, लेकिन साथ साथ बोन्स में स्टिफनेस है, तो प्लीज उसको बचाने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए कुछ बता दीजिए।
0: सर, डायबिटीज में इस बोन्स में स्टिफनेस नहीं होता, बेसिकली जॉइंट में स्टिफनेस होता है डायबिटीज, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को भी थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूट करती है एंड मसल को भी वीक करती है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, इसे न्यूरोपैथी और मसल पैथी, मायोपैथी भी कहते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक जरूर करनी चाहिए उसको ठीक करने के लिए, और थोड़ा हाई प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी भी साथ में लेना चाहिए।
1: एक सवाल ओडिशा से आया था मृत्युंजय का, और इन्होंने बहुत ही अच्छे सवाल इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा है कि मुझे बचपन से एक हैबिट थी कि मैं अपने नेक और हैंड्स को स्ट्रेच करता रहता था और फ्रीक्वेंटली करता था, और लेकिन अब जब मैं डेस्क पर बैठता हूँ, बहुत लंबे समय तक मैं स्टडीज करने के लिए बैठता हूं, और साथ में मैं ओवरवेट भी हूं, तो क्या मेरा जो इज माय वेट कॉजिंग दिस लॉस ऑफ कंट्रोल, और कुड इट बी ए मोटर टिक?
0: नहीं, विच व्हाट लॉस ऑफ कंट्रोल?
1: बस इन्होंने यही लिखा है कि वेट की वजह से क्या मैं लॉस ऑफ कंट्रोल छोड़ रहा हूं, मतलब कंट्रोल मेरा छूट रहा है। आई थिंक इन्होंने पूछना चाहे कि जो नेक और हैंड को ये पहले स्ट्रेच करते थे, अब शायद स्ट्रेच नहीं कर पा रहे।
0: तो नेक और हैंड को स्ट्रेच कर ले, उससे कंट्रोल से नहीं समझ में आ रहा, वो क्या पूछना चाहते हैं?
1: मृत्युंजय जी, आपकी बात जो है क्लियर नहीं है, यदि आप हमें दोबारा मैसेज कर सके तो, अभी हमारे पास कुछ समय बचा है, आपका सवाल मैं जरूर लूंगी, तो आप जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए 9868107070 पर। सर, हम वापस अपने विषय पर आते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे लंबे समय तक, तो एक प्रॉपर आप ये बता सकते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी से भी इसको ठीक किया जा सकता है?
0: हाँ, फिजियोथेरेपी से भी, फिजियोथेरेपिस्ट है उसी मसल्स को एक्टिवेट करता है, उसे टारगेट फिजियोथेरेपी कहते हैं, ग्लूट्स को फोकस करके सारी एक्सरसाइजेस सिखाता है, कराता है, और फिर आपको एडवाइस करता है कि आप घर पे भी एक्सरसाइज वही रेगुलर करते रहें, घर पे, ऑफिस में, काम करते वक्त भी करते रहें। और कई बार अगर पेन और वीकनेस ज्यादा है तो स्टिमुलेशन, मसल स्टिमुलेशन, नर्व स्टिमुलेशन भी करना होता है शुरुआती दौर में, उसके बाद वो स्ट्रेंथन हो जाता है, तो फिर देन ही कैन कंटिन्यू विद हिज ओन।
1: जी, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है, ग्लूटियल एमनीशिया की जो सिंड्रोम है, जो परेशानी है, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है या नहीं?
0: 100% क्यूरेबल है, यह अपने हमने अपने आप ही इजाद करी हुई है, और हम अपने आप ही इसे ठीक कर सकते हैं अगर जल्दी समय पे हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और रूट कॉज को उसको ट्रीट कर लिया।
1: जी, तो आप सबसे पहले सेल्फ टेस्ट कीजिए, ये ध्यान रखिए कि यदि आपके ग्लूट्स में कोई भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ग्लूटियल एमनीशिया से रिलेटेड हो। साथ साथ वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, तो मैं चाहूंगी कि अपने ग्लूट्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए, खास तौर पे जो डेस्क पर बैठने वाले जो आईटी प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो सीएज हों, जैसा कि एक हमारे पास मैसेज भी आया था, सिलाई का काम करने वाले जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उनका काम है इस तरह, उनके लिए आप चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: एक तो उन्हें खाने पीने का खास ख्याल रखना है, हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम एंड वाइटामिन डी रिच डाइट लें।
1: जी।
0: एक बैठते वक्त चेयर का और सही पोस्चर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही पोस्चर में बैठे, टेढ़े मेढ़े होके स्लाउच करके ना बैठे, चेयर अच्छी हो, सपोर्ट अच्छा हो, और फिर बीच बीच में बैठे बैठे भी एक्सरसाइज, ग्लूट्स स्क्वीज वाली एक्सरसाइज करते रहें, और बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे में एक सिस्टम बना लें कि खड़े हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, थोड़ा मूव अराउंड कर लें, बैठ जाएं, और फिर सवेरे शाम अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा वॉक और एक्सरसाइज, और कोई भी अपने करिकुलम में कोई खेलने कूदने की कोई एक्टिविटी इनकलकेट कर लें, नहीं तो सिंपल वॉक या साइकिल भी कर लेंगे, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर योर मसल्स।
1: जी, तो आई थिंक जो हमारे लिसनर्स, खास तौर पे जो प्रोफेशनल्स जिन्हें लंबे समय तक बैठना है, वो ये नहीं कह सकते कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था। देखिए, हमने इस पूरे प्रोग्राम में आपको खास तौर पे बताया कि आपके ग्लूट्स

0: प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है और आपका ब्रेन उन्हें सिग्नल देने से रोक सकता है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को एक्टिव बनाएं। बीच बीच में कुछ समय के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप ज़रूर उठें, चाहे फ़ोन सुनने के लिए या किसी और पर्पज से, और थोड़ा सा टहलें और अपने ग्लूट्स को एक्टिव बनाने की भरपूर कोशिश करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर आशु अग्रवाल, जिन्होंने हमें ग्लूटियल एमनीशिया से जुड़ी जानकारी दी और ख़ास तौर पर यदि आपके कमर में, हिप में या घुटने में दर्द इस वजह से है उसके बारे में जुड़ी हुई जानकारी दी और आपको अच्छे अच्छे सजेशन दिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो ये तो थे डॉक्टर आशु अग्रवाल और मैं रश्मि आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही जल्द मुलाकात होगी आपकी एक बार फिर से। फिलहाल आपको इस प्यारे से गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, हमारे डॉक्टर साहब की पसंद का गीत है, सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस जुड़े रहिए FM Rainbow 102.6 पर।

सुहाना सफर एक ये भी है जो आपका चलता है हमारे इस रेडियो चैनल यानी कि रेनबो के साथ। फिलहाल इस सफर में एक विराम लेते हैं, समय हो गया है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। विपक्ष से संसद की कार्यवाही चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को आत्मकथा पढ़ने और रील्स और सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने की सलाह दी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र का एक बड़े बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने, बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिरंगा यात्रा के दौरान आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखिर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी यह देश की पहचान को मजबूत कर रहा है। हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा कि आज के युवाओं के सपने कल के भारत की नींव है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। पंजाब स्थित कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना आज बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज रेल यात्री डिब्बों की पहली खेप रवाना कर रहा है। इसमें 3 वातानुकूलित शयनयान, 3 वातानुकूलित कुर्सीयान, 11 गैर वातानुकूलित कुर्सीयान और 2 पावरकार शामिल हैं। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और आज के आशियाना में बहुत ही खास मेहमान से मैं करवा रही हूं आपकी मुलाकात। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं कि आज एक बहुत ही खास दिन है और खास तौर पर मेरा बहुत ही पसंदीदा दिन है। किताबें मुझे बेहद पसंद हैं और आज जो दिवस है उसे कहते हैं वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे जी। और आज एक बहुत ही खास लाइब्रेरियन, इनको मैं कहना चाहूंगी, इनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं। आप हैं श्री धन सिंह बैंसला, आप LDC हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में और आपने लाइब्रेरी से जुड़ा एक बहुत ही खास मिशन है जो आपकी जिंदगी का उद्देश्य है और उसी विषय में बातचीत करने के लिए हमने इन्हें आज यहां बुलाया है। श्री धन सिंह बैंसला जो हमारे आज के मेहमान हैं, आइए जानते हैं कि उनके जीवन में आज के दिवस की क्या खास, इसका क्या खास महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बैंसला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हार्दिक आभार
1: जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे है और लाइब्रेरी जो है उससे आप बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को, FM रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और जो ये लाइब्रेरी है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से ज्ञान प्रसारित होता है, उत्पन्न होता है और ज्ञान का प्रचार होता है, वो स्थान, इसलिए एक खास स्थान है
1: जी। तो ये जो बहुत ही खास जगह होती है लाइब्रेरी, जहां पे किताबें, और मैं तो कहती हूँ कि लाइब्रेरियन जो होते हैं ना, वो एक तरह से एक, जिस

0: को हम कहते हैं कस्टोडियन होते हैं उस ज्ञान के, उस विजडम के जो कि हमारी किताबों में छुपी हुई है। मुझे तो किसी खजाने से कम नहीं लगती है कोई भी लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी, आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइब्रेरी स्थापित करने का एक दौर है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या मिशन है, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हमें बताइए।
1: हमारे मिशन का नाम है ग्राम पाठशाला।
0: अच्छा
1: नाम भले ही पाठशाला हो पर जो
0: जी
1: मिशन का जो कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से लाइब्रेरियों का निर्माण कराना है।
0: जी
1: और इस मिशन को जब हम आगे बढ़ा करके वहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि भारत के हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, एक निःशुल्क लाइब्रेरी,
0: जी
1: जहाँ गांवों के उन बच्चों के लिए जिनके पास संसाधनों का अभाव है वो अपनी पढ़ाई कर सकें इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और परस्पर एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करके कर सकें। ऐसा स्थान अगर गांवों में भी वो अनिवार्य है। अब दुनिया जहां पहुंच रही है तो वहां गांव किसी भी ज्ञान की दौड़ में पीछे न रहें, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और हमें लगता है कि एक दिन वो होगा, वो सपना हम सब की आंखों में है। हम भारत के लगभग 12-13 स्टेटों में काम कर रहे हैं और एक दिन वो होगा जब भारत के हर गांव में लाइब्रेरी होगी, और वो दिन हमारी आंखों में सपनों की तरह समाया है।
0: क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन मिशन है जो आपने चुना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तकरीबन कितने समय से आप इससे जुड़े हुए हैं?
1: लगभग पिछले 6 साल से हम इससे जुड़े हैं।
0: जी, और इन 6 सालों में इसकी शुरुआत, पहले मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपके सफर के बारे में जानूं, इसकी शुरुआत जो है एग्जैक्टली कैसे हुई? कि कोई आइडिया था, कोई डिस्कशन हुआ, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन थी, या ये पूरी तरह से आपका अपना आइडिया था?
1: ऐसा किसी व्यक्ति विशेष का कोई आइडिया नहीं था, ऐसा करने का कोई प्लान नहीं था।
0: जी
1: पर जब जब कुछ श्रेष्ठ कार्य होना होता है तो प्रभु ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। वो कोरोना का काल था। गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील में गांव है गनौली।
0: जी
1: उस गनौली गांव के बच्चे जो शहर में पढ़ने आया करते थे, शहर की पेड लाइब्रेरीज में आते थे, क्योंकि कोरोना के दौरान लॉकडाउन हो गया था,
0: जी
1: सभी आवागमन बंद था, तो गांव के लोगों को लगा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो जो बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे थे वो एक दिन इकट्ठे हुए बैठे, उनको लगा कि क्यों ना ऐसा हो कि गांव में ही लाइब्रेरी का निर्माण करा दिया जाए।
0: जी
1: तो गांव की एक पुरानी चौपाल जो बिल्कुल बेकार की स्थिति में पड़ी थी, बिल्डिंग ठीक थी
0: जी
1: लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो गांव के जिम्मेदार लोगों से जब इस बारे में बात की तो एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी के रूप में उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया।
0: क्या
1: जैसे
0: बात,
1: वो लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित किया, बच्चे वहाँ बैठे और बच्चे बड़े मजबूत आधार बनाने के लिए बड़े संघर्ष के साथ एक पूरा समय देते हुए उन्होंने एक मजबूत शुरुआत वहाँ से की। और जैसे ही वो शुरुआत हुई स्वाति जी, बहुत कमाल हो गया।
0: जी
1: उस गांव के बच्चे जितने थे उस हिसाब से उन्होंने उस लाइब्रेरी का निर्माण किया, लेकिन वहां बच्चे उससे ज्यादा थे जितने गांव में बच्चे थे। अब
0: अच्छा
1: लोग नीचे बैठ करके वो फर्श पर बैठ के पढ़ने लगे तो पता चला लोगों को ये इतने बच्चे कहाँ से रहे हैं, पता चला कि दूसरे गांवों से आ रहे हैं।
0: क्या बात,
1: तो जब दूसरे गांवों से आए तो गांव के लोग बहुत सहृदय होते हैं, बड़े एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। समय के साथ हालांकि परिवर्तन हो रहा है पर बहुत जगह अभी गांवों में गांव बचे हैं, और उसी को बचाने के उद्देश्य से वो लोग गए हम पड़ोस के गांव में जाएं। गांव के उन दूसरे गांव के बच्चों को भी उतना ही अधिकार है, वो भी अपने ज्ञान को समृद्ध करें।
0: बिल्कुल
1: और उस गांव में गए और गांव के लोगों ने जाकर दूसरे गांव से रिक्वेस्ट की कि आप भी अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाइए।
0: क्या
1: और
0: बात
1: यहां से
0: जी,
1: मिशन आरंभ हो गया। पहले मिशन आरंभ हुआ 100 लाइब्रेरी,
0: जी
1: लेकिन 100 लाइब्रेरी जितनी जल्दी बनी उससे ऐसा तय हो गया कि क्योंकि हम सब भारतीय हैं,
0: जी
1: भारत हमारी मातृभूमि जिसकी हवाओं में हमने सांस लिया है, जिसके अन्नजल से विकास हुआ है, वहां कोई भी गांव अछूता ना रहे। और इसलिए ये सोच लिया कि हमारा लक्ष्य अब 6,64,369 लाइब्रेरी,
0: जी हर
1: अर्थात भारत के
0: जी
1: हर गांव
0: हर
1: में
0: गांव में
1: लाइब्रेरी हो। और यहां से हमारा वो मिशन आरंभ हो गया, गांव दर गांव चले गए, लोग जाते रहे। उसी पर क्रम में हमारा भी गांव आया। हम पहले भी सोचते थे गांव में एक लाइब्रेरी हो, लेकिन जैसे ही ग्राम पाठशाला के हमारे भाई लाल बहार जी हैं और बहुत सारे साथी हैं जो बड़ी कर्मठता से लगे हुए हैं, जब उनसे हमने संपर्क किया उन्होंने कहा बड़ा आसान सा काम है, जो हमें बहुत कठिन दिख रहा था
0: जी
1: वो बहुत आसानी से हो गया। हर गांव में एक सज्जन शक्ति होती है
0: जी
1: और जिसको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छा काम गांव में हो वो तैयार बैठे रहते हैं, बस आरंभ करने की जरूरत होती है।
0: वाकई

0: वो सही कहा है किसी ने कि लोग साथ आते गए और कारवां
1: जी
0: बनता गया. और ऐसे ही शुरुआत होती है, सिर्फ एक पहला कदम उठाने की देर होती है, इस कारवां को बनते देर नहीं लगती है. लेकिन ये पहला कदम को उठाए कौन, लेकिन यहाँ पर ये पहला कदम ना केवल उठा है बल्कि ये कारवां भी बना है. बात कर रहे हैं हम श्री धन सिंह बैंसला जी से, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, और इनसे हम आज खास बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे. और आज के दिन इस विषय पे बात करना कि किस तरह से हर गांव में एक लाइब्रेरी स्थापित हो रही है, वो भी जन सहयोग से, ये सब चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो. और ये प्रोग्राम अभी आगे चलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट कहानी नहीं है, ये असलियत है. और असलियत हमेशा जो है ना कहानियों से ज्यादा रोमांचक और मजेदार होती है. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?

0: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
8: आकाशवाणी रेनबो
9: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ, और हमारे साथ आज वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हैं श्री धन सिंह बैंसला जी। बहुत ही नेक मिशन जो इन्होंने चुना है वो है हर गांव में एक लाइब्रेरी को स्थापित करने का। इस मिशन से जुड़े हुए हैं और इसी के विषय में हम इनसे ले रहे हैं जानकारी, इस बहुत ही खास इनिशिएटिव के बारे में। बैंसला जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मुझे आपसे बात करते हुए।
10: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
9: जी, किताबें और लाइब्रेरी मेरी बड़ी ना फेवरेट चीजें हैं जिंदगी में, और दिल्ली में कम से कम जितनी लाइब्रेरीज हैं मैं वहां पे, मेरी कोशिश रही है कि मैं वहां जरूर जाऊं, और मैं गई हूं। किताबें बड़े खजाने की तरह होती हैं, और मुझे लगता है कि ज्ञान के अलावा भी जो है ना उसके एक लाइब्रेरी जैसी जगह के बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन क्या ये लाभ आपको वहां भी, जहां ग्रामीण अंचलों में आपने इन लाइब्रेरियों को स्थापित किया है, वहां पे भी आपको देखने को मिले हैं?
10: जहां देखने को मिले हैं वहां तो मिल ही रहे हैं, जहां नहीं है
9: जी
10: वहां के लिए प्रयास है
9: जी।
10: स्वाति जी, आप यहाँ दिल्ली में विभिन्न जगहों पर लाइब्रेरी के लिए जा सकते हैं, लेकिन गांवों के वो अभावग्रस्त बच्चे जिनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो उसी के लिए ग्राम पाठशाला मिशन लाइब्रेरी, भारत के हर गांव में लाइब्रेरी, इसी लक्ष्य हम काम कर रहे हैं। जब वहां पहुंचेंगे गांवों के उन बच्चों के पास जिनके पास अभाव है
9: जी,
10: जिनके पास अगर वो शहर में आए तो समय 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा समय जो एक्सटेंड नहीं होता वो सबके पास बराबर ही होता है।
9: बिल्कुल,
10: वो जो संसाधन जो उनके पास कम है तो उनके लिए निःशुल्क लाइब्रेरी हो और गाँव के लोग अपने ही संसाधनों से वो करें, इसके लिए कर रहे हैं, और वो आनंददायक ढंग से हो रहा है और रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। जिन गांवों में लोग 2-2, 4-4 नौकरियां कई कई सालों में लगती थी, अब 1-1 वर्ष में 15-15, 20-20, किसी गांव में तो 40-40 नौकरियां 1-1 वर्ष में मिली हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उससे लोग उत्साहित भी हो रहे हैं। एक मैं छोटा ऐसा एक प्रसंग बताना चाहूंगा।
9: जी जी बिल्कुल।
10: एक गाँव में जो मंदिर जो है वो दान के पैसे से चलते हैं, मंदिर ने उस गाँव की लाइब्रेरी के लिए दान दिया है।
9: क्या बात जी,
10: ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक और छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है
9: जी, बताएं।
10: एक बेटी जो अपने गांव की लाइब्रेरी में जाती थी, एक दिन जब उसकी शादी की चर्चा हो रही थी तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए हम क्या क्या वो दे, वो कहती है पिताजी मैं दहेज की बहुत इच्छुक नहीं हूं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो उस गांव के लिए, जिस गांव जो मेरा ससुराल होगा जो गांव, उस गांव के चौपाल पे लाइब्रेरी बनाना बड़ा आसान होता है, किसी भी गांव की चौपालों पे ही लाइब्रेरी ज्यादातर बन रही है। बोले मेरे ससुराल वाले गांव के लाइब्रेरी के लिए कुछ धन दीजिए और वहां एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए।
9: क्या बात,
10: तो दहेज में लाइब्रेरी मांगना बड़ा आनंददायक लगता है। तो ये अब ये जन आंदोलन बन चुका है
9: जी। बिल्कुल, ग्राम पाठशाला ये वो मिशन है जिसमें हर गांव में एक लाइब्रेरी को स्थापित करने का सपना देखा है श्री धन सिंह बैंसला जी ने, और जन सहयोग से इसमें बहुत हद तक सफलता भी पा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, आप सुन ही रहे हैं कि इस चीज को आगे ले जाने के लिए कितना इच्छुक होते हैं हमारे जो यूथ है, हमारे इंडिया का वो यूथ जो ग्रामीण अंचलों में रहता है और वो जो ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखता है और पहचानता है कि ज्ञान के कितने लाभ हैं, वो किस तरह से इसको एक परंपरा के तौर पर भी आप कहें तो आगे लेकर जाना चाह रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बैंसला जी कि आपकी बात सुनकर, आपने बोला कि एक कदम उठाए तो बहुत से लोग साथ आ जाते, तो बहुत से और भी लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इस तरह की लाइब्रेरीज जो है वो शुरू की।

0: जाए, तो वो लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं?
1: बहुत आसान सा है, एक बार प्रयास करें, सफलता
0: जी
1: मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। मैंने थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, हर गांव में एक सज्जन शक्ति होती है
0: जी
1: और उनकी संख्या सदैव ज्यादा होती है, बस कोई स्टेप उठाए। अब उस गांव की लाइब्रेरी के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करिए, वो गांव की खाली पड़ी कोई चौपाल आदि है उसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि यहाँ लाइब्रेरी बनाने की अनुमति दें। लोग शहर से अनुमति देते हैं, उसमें छोटी मोटी कमी है तो उसका निराकरण कीजिए, उन कमियों को दूर कीजिए, वहाँ एक वाईफाई लगाइए, हो सकता है तो एसी लगाइए, वाईफाई लगाइए, एसी लगाइए, और हम बड़े अच्छे से केबिन जैसे आज हाईटेक लाइब्रेरीज हैं वहाँ पुस्तकें भी हों और वो डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, दोनों चीज़। बच्चों को जिस तरह का ज्ञान चाहिए, मैं देख रहा हूँ हमारे गाँव में ऐसे लोग जिनकी उम्र 60-70 हैं, वो लोग लाइब्रेरी में आके बैठ रहे हैं।
0: क्या बात जी।
1: और वो बहुत गाँवों ने तो ऐसा किया है कि वहाँ के गांव के लोगों के सहयोग से अपने गांव के इतिहास को कलमबद्ध करके और वहाँ लाइब्रेरी में रखा है
0: जी।
1: बच्चों को अपने गांव के इतिहास, अपने गांव की संस्कृति को, हम प्राचीन काल से अब तक इस गांव का कैसे विकास, उसको जान रहे हैं। धार्मिक वातावरण बन रहा है, और धर्म का मतलब धार्यतीति धर्म, जो धारण करने योग्य गुण है उन्हीं को धर्म कहते हैं, जो राष्ट्र का, समाज का, हमारे आसपास के वातावरण का शुद्धिकरण कर सके। और शुद्धिकरण का मतलब हम एक दूसरे को प्रेम करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और वातावरण आनंदित हो, और ऐसा लाइब्रेरी भी कर रही। एक और बड़ा उदाहरण देखने को
0: जी,
1: मिला
0: जी, जी।
1: हम पहले सोचते थे आरंभ में कि जैसे हम लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उनके ज्ञान का स्तर ऊंचा होगा, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन जो कुछ नहीं सोचा था वो भी मिला।
0: अच्छा।
1: जो बच्चे गांव के नुक्कड़ पर खड़े होते थे, एक दूसरे से कटाक्ष करते थे, कई बार झगड़े हो जाते थे, कई वो नशे करते थे, अब वही लड़के लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ते हैं।
0: क्या?
1: अब वो गांव में नशा कम हो रहा है
0: जी,
1: गांव में झगड़े कम हो रहे हैं, ऐसा सोचा ही नहीं था
0: जी।
1: और बहुत गांवों में से इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ये परिवर्तन हो रहा है। और आपके जैसे चैनल, FM चैनलों से अगर जब ये जाएगा, तो वो जो लोग सुन रहे हैं, मेरा हर से किसी व्यक्ति से यह अनुरोध है, मेरा आभार पूर्वक मैं ये कहता हूँ उसे, अपने गांव में, अपने गांव के बच्चों के लिए अपने प्रयासों से एक ऐसी लाइब्रेरी का अगर वो निर्माण करते हैं, तो ये उस गांव के बच्चों पर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत गुणकारी कदम होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ।
0: जी, ज्ञान का जो मंदिर होता है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वो केवल ज्ञान नहीं देता, वो उसके साथ साथ बहुत से अनुभव भी देता है, जैसा कि बैंसला जी हमें बता रहे हैं। मैं आपको एक बार याद दिला दूं, वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे पे आज हम बहुत ही विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं, श्री धन सिंह बैंसला जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से इनसे हम बात कर रहे हैं। और मैं बैंसला जी आपसे जानना चाहती हूँ, मिशन की शुरुआत आपने कहा कि कुछ साल पहले हुई थी, तो अब इस मिशन में आपने कितने कहना चाहिए कि ये कहाँ तक पहुँचा है, कितना सफर तय हुआ अब तक?
1: उत्तर भारत के लगभग सभी स्टेट्स में हम पहुंच चुके हैं
0: जी,
1: उधर महाराष्ट्र तक पहुंचे हैं, और बाकी उत्तर भारत सारा, उधर पश्चिमी बंगाल वगैरह का सारे एरिया में, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा तो है
0: जी।
1: उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर अगर मैं बिजनौर जिले की बात कहूं, तो वहां लगभग हर गांव में लाइब्रेरी का निर्माण या तो हो चुका है या प्रक्रिया में
0: जी,
1: और बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जी।
1: अभी हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत थोड़ी जगह पर पहुंच पाते हैं, व्यक्ति बहुत थोड़ी जगह पहुंच पा रहा है, पर मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है, और उस बढ़ाने वाले हर व्यक्ति के लिए, अब कोई जो हम से नहीं मिले, हम उनसे नहीं मिले, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे नहीं मिले, उन्होंने किसी ने फेसबुक पे देखा, कोई बार पिछली बार भी आपके इस पे बात हुई थी इस बारे में रेनबो पे, तो उसका भी परिणाम आ रहा है
0: जी।
1: और वो लोग स्वतः ही संज्ञान ले रहे हैं और वो बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे। हमारा आकलन है कि लगभग 4,000 से 5,000 लाइब्रेरियां ग्राम पाठशाला के इनिशिएटिव से बन चुकी हैं
0: जी।
1: लेकिन हमें तो लग रहा है, कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं ये और ज्यादा भी होगा, क्योंकि कई बार सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस गांव ने लाइब्रेरी बना ली और वो कहते हैं कि भाई हमारी लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में आप आइए, कई बार हमारे एक दो आदमी चले जाते हैं, कई बार नहीं जा पाते, कई बार पता नहीं चल पाता है, पर लोग मान रहे हैं कि कार्य उचित है और ये होना चाहिए।
0: मुझे लगता है कि आपसे सलाह लेने भी बहुत लोग आते होंगे कि किस तरह से अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए।
1: हमसे नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हैं
0: जी,
1: मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव वाले लोग हैं, और जिन्होंने बहुत ज्यादा गांवों में कार्य किया है, हम भी कार्य कर रहे हैं, उन सबसे सलाह लेने आते हैं। एक तरह से इसलिए कार्य विकेंद्रीकृत हो रहा है
0: जी,
1: कोई एक केंद्र नहीं है, अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, और वो केंद्र बने हुए नहीं है, वो स्वतः, या क्यों, हमारा संगठन ऐसा नहीं है जिसके पास कोई, हमारा संगठन का कोई खाता नहीं है, हम किसी से कोई पैसा लेते नहीं, किसी को कोई पैसा देते नहीं, हमारा काम सिर्फ लोगों को प्रेरित करना है जन सहयोग से, अपने ही
0: जी
1: पैसों से, अपने ही इनिशिएटिव से वो लोग कर रहे हैं
0: जी, अपने ही इनिशिएटिव से ये काम जो है वो आगे बढ़ रहा है, लगातार एक जन आंदोलन की तरह से बढ़ रहा है। और क्यों नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सभी को होती है, और इसको हम जितना ज़्यादा अपने आने वाली पीढ़ियों को दें उतना ही उनके लिए बेहतर होता है, बेहतर आने वाली ज़िंदगी के लिए, बेहतर आने वाले समाज के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यही काम करता है ये मिशन, नाम है इसका ग्राम पाठशाला, यानी कि हर गाँव में एक लाइब्रेरी, और उसमें जो योगदान है जब वहां के रहने वालों का स्वयं का होता है तो यकीनन उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास समय कम बचा है, बैसला जी अगर आप चलते चलते कुछ हमारे श्रोताओं को कहना चाहें तो।
1: मैं एफएम रेनबो के श्रोताओं से मेरी ये सलाह है, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा अपने छोटे भाइयों से ये मेरा आदेश है
0: जी,
1: अगर आप ऐसा कर सके, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बेटों जैसे जो लोग हैं, कि आप इस मिशन को एक नए भारत के निर्माण के लिए आप सब लोग जुटें, और वो क्योंकि ये निश्चित है कि भारत का, नए भारत का उदय ज्ञानोदय के साथ होगा, और नया भारत विश्व पर परचम लहराएगा, तो जब भारत ज्ञानवान होगा आप सब लोग ऐसा करें, सबसे मेरा अनुरोध है
0: जी।
1: और स्वाति जी, आपके जैसे श्रेष्ठ लोगों का जब सहयोग प्राप्त होता है एफएम रेनबो जैसे चैनलों से, जब चीज़ें प्रसारित होती है, तो फिर मंजिल मिल ही जाएगी, 6,64,369 लाइब्रेरी
0: यकीनन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में जरूर जो है कामयाब होंगे। आज वर्ल्ड लाइब्रेरियन डे पे हमने बात की श्री धन सिंह पैसला जी से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। समय नहीं बचा है कि मैं इनसे आगे इस मिशन के बारे में और जानकारी ले पाऊं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पैसला जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद, आपके सभी श्रोताओं का मेरा हार्दिक नमस्ते, और सब खुश रहें, सब आनंद से रहें, देश आगे बढ़ता रहे, आप सब आगे तरक्की करते, सादर नमस्ते।
0: इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और थोड़ी देर में एक विशेष प्रस्तुति आप सभी के लिए होगी। फिलहाल आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
1: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
1: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
1: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
1: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।

0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: What? जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्कॉन्डर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने BA पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि ICS के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
6: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
4: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
6: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
4: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
6: और अपने सुभाष बाबू?
4: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
7: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
6: क्या हुआ सुभाष बाबू?
7: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
2: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
8: कौन? शिशिर?
9: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
8: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
9: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
8: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
9: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
8: ठीक है।
9: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
8: तो फिर ठीक है, आओ चले।
9: चलिए।
2: सोलह जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।

0: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
1: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
2: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
1: लाओ लाओ।
2: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
0: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
2: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज साहब।
3: लो भाई, यहाँ तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो। ये अखबार कहाँ गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा। अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
4: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
5: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी।

0: मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है, उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्यौछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूं आपका, मैं यानी नाज, आपके पसंदीदा शो नाम है जिस

0: रेडियो डॉक्टर, जहां डिस्कस होता है आपकी सेहत से जुड़ा हर जरूरी मैटर। दोस्तों, कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इसके लिए क्या करें क्या ना करें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। कैसे सुधारें अपना बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और लाएं सुधार अपने डाइट प्लान में भी, हमें तफसील से बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर टी दिवाकर राव। आज है हमारे साथ, जो कि CGHS में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार मैडम।
0: तो आयुर्वेद में छिपे सेहत के मंत्रा को हम समझें डॉक्टर दिवाकर सर से, उससे पहले अपने लिसनर्स को याद दिला दें कि प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं हर दोपहर 3 बजे आपके फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो आपकी सेहत और आयुर्वेद से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए हमें। फोन नंबर्स आप डायल कीजिएगा 011-234-21080 या फिर 234-21082। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज आपको इसके लिए करना है 9868170707 पर। तो सर, शुरुआत उसी बेसिक सवाल से करेंगे जो आज शायद हर किसी के मन में है, एक हेल्दी बॉडी के लिए लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें, कितना बड़ा रोल है उसका और खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी है।
1: सबसे पहले तो सबका नमस्कार। इस शो में जब भी मैं आता हूँ ये पहला सवाल ही होता है। हेल्थ को आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही है जो रोग है उसको दूर करना, और जो हेल्दी है ऑलरेडी या हेल्दी के आसपास है उनको हेल्दी रखना, टू मेंटेन द हेल्दीनेस जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया है कम से कम 3000 साल पहले
0: जी।
1: उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आहार और विहार। आहार का मतलब है आपका फूड हैबिट्स या द वैरायटी ऑफ फूड विच यू टेक, एंड विहार का मतलब आपका रहन सहन, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, आपका दिनचर्या क्या है, ये सब विहार में आता है। ये दोनों बेसिक इम्पॉर्टेंट पिलर्स है आपको हेल्दी रहने के लिए। फॉर एग्जांपल आप खाना ही आप देख लीजिए, साल में हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं, ऋतु हर 2 महीने में एक बार आता है, हमारे यहाँ 6 ऋतु है तो 12 महीने में ये 6 ऋतु मतलब 2 महीने में एक बार आता है। तो ये ऋतु चेंज होने के एक समय होता है, जैसे पहला ऋतु है, जैसे इससे पहले ग्रीष्म ऋतु था विच इज समर, अब जो है वर्षा ऋतु है विच इज रेनी सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु का जो आखिरी 7 दिन, वर्षा ऋतु का पहला जो 7 दिन, ये 14 दिन हो गए। ये जनरली क्या करता है, बीमारियां पैदा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ऋतु जो है ढल रहा है, धीरे धीरे दूसरा ऋतु आ रहा है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, इसमें सबसे ज्यादा गंदा क्या होगा आपका, पानी।
0: पानी,
1: तो पानी से रिलेटेड जितने भी सावधानी बरतना चाहिए वो सबको ध्यान रखना चाहिए। और जनरली रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में आपका डाइजेस्टिव पावर होता है ना, जिसको अग्नि बोला गया है आयुर्वेद में
0: जी,
1: वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव पावर ही 50% हो गया, पहले 100 था, वर्षा ऋतु में वो 50 हो गया, मगर आपने खाना जो है वही 100% खा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब आप ले लीजिए 4 रोटी आप खा रहे हैं, जो आपको ग्रीष्म ऋतु में, जैसे समर में तो वो हजम हो रहा है, जैसे आपका रेनी सीजन आएगा वो आधा हो जाएगा। आप 4-5 रोटी खाएंगे तो उसका बाकी 2 रोटी पचेगा कब।
0: तो सर, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप बता सकते हैं जो आसानी से याद रखा जा सके कि किस मौसम में कितनी डाइट सही है और किस मौसम में कम कर देना चाहिए उसे।
1: इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया 2 चीज बताया, तो वेरी सिंपल है, एक होता है आदान काल, एक होता है आपको उसको क्या बोलते हैं जो बल पैदा होता है एक काल में, जैसे आदान काल है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, इसमें क्या है, देखिए आप बाहर जाएंगे तो स्वेट निकलेगा ड्यू टू गर्मी, तो आपके जितने भी जो सॉल्ट्स है बॉडी के वो बाहर निकल रहा है, आप जल्दी थक जाएंगे
0: जी।
1: तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, सॉल्ट इनटेक,

0: और पानी और बहुत सारी चीज़ आपको करना है। जैसे आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपको भूख कम हो जाएगा। जितना
1: बिल्कुल.
0: आप पानी पियेंगे तो भूख कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें बैलेंस रखना पड़ेगा।
1: जी, वाटर इनटेक का
0: हाँ,
1: ख्याल
0: वाटर
1: रखें.
0: इनटेक का बैलेंस रखना
1: जी
0: पड़ेगा।
1: बिल्कुल, इस पर बात आगे भी करेंगे. फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए.
2: जी
1: जी
2: नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
0: नमस्कार जी।
2: अमित शाह जी नाम मेरा, ग्राम नंगोला आप यूपी से बात कर रहा हूँ.
1: जी
2: सर, मेरा सवाल ये है कि जो खाना रखा हुआ होता है और जो ताजा होता है, उसका सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने अमित जी।
2: धन्यवाद
0: देखिए,
2: सर.
0: ये जो ऋतु है जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, इसमें खाना जितना फ्रेश हो खाना आप खा सकते हो वो खाना बेहतर होता है, क्योंकि इस ऋतु में मॉइस्चर बहुत होता है, तो उसमें फंगस लगने का, कुछ और इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। इसलिए खाना हमेशा इस ऋतु में खासकर फ्रेश लेना ही सही है।
1: जी, एक और सवाल हमारे पास आया है सर. कर्नाटक से आया है ये सवाल. सागर जी ने पूछा है कि 26 साल इनकी उम्र है, सुबह उठने के बाद बहुत थकान महसूस करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करूं?
0: 26 साल की उम्र में अगर थकान है तो बाकी पैरामीटर्स उनका देखना पड़ेगा। लाइक हो सकता है इनको विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी होगी, उसकी जांच करानी पड़ेगी।
1: जी, और इसके साथ ही सर, जोड़ों की सूजन को खत्म करने के लिए आयुर्वेद में क्या तरीका है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश से अमित कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं.
0: वर्मा जी ने शायद उम्र नहीं
1: नहीं,
0: बताया,
1: उम्र नहीं लिखी है.
0: मैं ये सोच के चल रहा हूँ ये मिडिल एज के होंगे।
1: जी
0: तो जनरली मिडिल एज में जो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो दो तरीके के होता है। वन इज ऑस्टियो आर्थराइटिस विच इज एज रिलेटेड, और दूसरा है वो थोड़ा अलग है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो हम ये मान के चलेंगे इनको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस के लिए महायोगराज गुग्गुल या योगराज गुग्गुल, दो गोली दो बार सवेरे शाम ले, ये प्रिलिमिनरी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे जनरली ठीक होता है, अगर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाए।
1: जी सर, एक सवाल और आया है इसी से रिलेटेड. 37 साल इनकी उम्र है. सरिता विहार से अनमोल जी लिख रहे हैं कि डेली 50 किलोमीटर साइकिल में चलाता हूं, क्या आयुर्वेद इसे सही मानेगा?
0: ये बल के ऊपर डिपेंड करता है। सब आयुर्वेद ने ये कहा है कि हर इंडिविजुअल अलग है।
1: अच्छा.
0: कोई 2 कदम चलने से थक जाता है, उसको 10 कदम नहीं चलना चाहिए, जितना वो चल सकता है उतना चले, आपके बल के हिसाब से सारा काम करे। तो उनको अगर 50 किलोमीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, वो चला सकते
1: अच्छा सर, तो अगर किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं तो
0: हैं।
1: आप साइकिल चलाते रहिए. और फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनने का, उसके बाद लौटेंगे और फिर बात करेंगे सर से.

0: तो सर थकान की हम बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस भी उसी से आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि थकावट शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है हमारे पास। बलजिंदर सिंह पूछ रहे हैं, उम्र इनकी 31 साल है, 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया इन्हें वर्क फ्रॉम होम करते हुए, घर से बाहर कम निकल पाते हैं क्योंकि काम के बाद काफी हद तक थक जाते हैं, तो अकड़न भी महसूस करते हैं शरीर में। तो पूछना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे इन्हें अच्छा महसूस हो।
1: हमारे जो लिम्ब्स है ना, अपर लिम्ब्स जैसे हाथ हैं, जैसे पैर को लोअर लिम्ब्स बोलते हैं, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स को अगर काम नहीं देंगे तो उसमें अकड़न या स्टिफनेस आ जाता है, विच इज़ वेरी कॉमन नेचुरल। और ये काफ़ी साल से, बल्कि वो घर पे है क्योंकि काम उनका ऐसा है, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी भी होगी। तो विटामिन डी की कमी होती है तो साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है विटामिन B12 की कमी होगी और भी बहुत सारी कमियां होंगे। तो एक बार इन चीज़ को टेस्ट कराना पड़ेगा और सवेरे उठ के कम बाहर निकले, 1 घंटा घूमे, फिर आए, फिर अपना काम कर ले, इतना टाइम तो मिलता होगा इनको
0: जी। और सर एक और सवाल है, उम्र है 40 साल, मोहम्मद इम्तियाज साहब का ये सवाल है कि ना तो बीपी की प्रॉब्लम है इन्हें और ना ही शुगर की, लेकिन कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो क्या करें।
1: इनको बीपी शुगर नहीं है तो थकान नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। इनका वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस होगा या कोई और कारण होगा, उसके लिए रूटीन ब्लड टेस्ट इनको कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा क्या है
0: जी। सर जैसा कि डिजिटल दौर है आज का, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही नए नए कल्चर्स भी हम फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के देखा गया है कि अक्सर सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की भी अगर हम बात करें तो लोग बिना किसी सलाह के लेने लगते हैं, ये किस हद तक सही है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए।
1: आप अगर अपने खाने में वो चीज़ नहीं यूज़ कर रहे जो यूज़ करना चाहिए, जो पालक से मैं शुरू करता हूँ, जैसे पालक है, बहुत लोग नहीं खाते आजकल, पहले हम लोग खाते थे, वैसे ही जो है ड्रम स्टिक्स है, ड्रम स्टिक्स भी लोग नहीं खाते हैं, और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो खाना लोगों ने बंद कर दिया, तो इसलिए जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ऊपर से आप रोज फोन देखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आप कितने करेंगे, हर रोज एक आता है नई चीज। और उस सप्लीमेंट्स का क्या रिसर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये किसी को नहीं पता है, वो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए वो तैयार करते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा
0: जी।

0: प्रवीण सिंगल जी हमारे साथ फोन कॉल पर इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरठ से. जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए. हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया. सर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. एसिडिटी और ब्लोटिंग की हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल. तो रसोई की तरफ अगर हम रुक करें तो वहां ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें आसानी से मिल सकती हैं वहां से और जिनसे हम अपनी तकलीफ दूर भी कर सकते हैं?
1: आजकल के दौर में एसिडिटी का वैसे बहुत सारे कारण हैं. मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कारण है दो ही है. वन इज स्ट्रेस, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल. और दूसरा जो है टाइमली नहीं खाना. आपका टाइम जो है मेंटेन नहीं हो पाता है. ये दोनों रीजन से एसिडिटी बढ़ाने के लिए. तो एसिडिटी कम करने के लिए आपका घर ही एक फार्मेसी है, उसमें सब कुछ है. सबसे बढ़िया जो है मैं मानता हूँ कि जैसे ये मौसम है, आप मट्ठा, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जो छाछ होता है उसमें और थोड़ा पानी मिला के आप लेते रहिए. आप अजवाइन उसमें छोंक लगा के भी ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है. इवन कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं
0: जी.
1: तो ये सबसे बढ़िया एक औषधि है, उसको औषधि की तरह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा.
0: करमपुरा दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. जी स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना.
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
0: जी
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है.
0: जी
2: तो पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून जी.
2: जी जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है डॉक्टर सर कि जिसको जॉइंट प्रॉब्लम है उसको योगराज गोगल खाने चाहिए. अब मेरे को ये प्रॉब्लम 2004-5 से है. तो मैंने इसके लिए ना डॉक्टर ऑर्थो आता है एक, वो ऑयल लगाया और उसकी कैप्सूल भी आते करीब 5,500 की दवा थी सर ये महीने भर. तो मुझे तो इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ा सर. तो अभी मेरी ये प्रॉब्लम जो की तो बनी हुई है. आज 1-2 के बीच में रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम मैंने सुना कि गुलाइटिस एप्लिशिया कोई बीमारी होती है. तो इन दोनों में मैं असमंजस से पड़ गया हूँ कि मेरे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गुलाइटिस एप्लिशिया की बीमारी है, पता नहीं क्या है. तो इसके लिए मुझे मतलब क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि पिछले 6 महीने से मेरे लीवर के आसपास जो है ना गर्मी जलन गैस की हो रही है. तो अगर मैं एक फुल्का खाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने 4 फुल्के खा लिए. तो पिछले एक हफ्ते से मैंने आयुर्वेदा का एक मतलब लिक्विड आता है जिसे हम ये लीवर सिरप कहते हैं, उसका सेवन कर रहा हूं. तो उससे मुझे कुछ फर्क तो है. तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूं कि मेरे को ये लीवर अल्सर है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है. तीसरा सवाल, मुझे स्किन एलर्जी है, श्वसन एलर्जी है. इसका कुछ घरेलू उपाय बताओ, अगर आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे?
0: जी राजेंद्र जी, सवाल का जवाब अब ले लीजिए.
1: इनके बेसिकली 3 सवाल है. एक आर्थराइटिस रिलेटेड है और दूसरा लिवर रिलेटेड है और तीसरा स्किन रिलेटेड है.
0: जी.
1: हो सकता है ये सारे इंटर रिलेटेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दवाई लिया है वो आर्थराइटिस के लिए लिया, तो उसके वजह से क्या पता लीवर की समस्या शुरू ना हो गया हो, उनकी वजह से स्किन की समस्या भी. क्योंकि आजकल जो दवाई आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है. तो इनका बढ़िया ये है कि आसपास जो है जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जैसे चरक आयुर्वेद संस्थान है, वहाँ ये जा सकते हैं. इनकी एक्चुअली थरो जो है चेकअप होना चाहिए और बाकी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी है. ये सब होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या बीमारी है और इलाज कैसे करना चाहिए.
0: जी बिल्कुल सर. डाइट को लेकर आजकल हर कोई कॉन्शियस है, बहुत ध्यान से सोच समझकर ही कोशिश सभी की रहती है कि खाएं. तो सर बीटरूट को लेकर एक सवाल आया है, चुकंदर को लेकर. उम्र बताई है 75 साल. मनीषा जी का ये सवाल है रांची से कि शुगर की अगर प्रॉब्लम है तो बीटरूट को किस तरह से देखना चाहिए, क्या उसका सेवन किया जाना चाहिए?
1: बीटरूट का सेवन मैडम कर सकती है, बीटरूट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है.
0: जी
1: बीटरूट उनके लिए अच्छा ही है.
0: अच्छा, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं.
1: एक्चुअली शुगर का एक्चुअली एक और टॉपिक हमें एक बार दोबारा रखना पड़ेगा. बहुत सारे मिथ्स है शुगर के बारे में, तो इस कम अंतराल में तो बोलना मुश्किल है, मगर

0: प्रोग्राम हम रखेंगे आगे, केवल शुगर के लिए बात करेंगे
1: जी। और सर पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की भी हम बात करेंगे, गलत है ये सभी जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें क्या सुझाता है कि इनसे बचते हुए हम नेचुरल इम्यूनिटी को कैसे हम अपनी बूस्ट कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जो मिल रहा है वो सही है या गलत है, इसका फैसला कैसे हो?
0: देखिए जो पैकेज्ड फूड्स है उसमें नेचुरली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ डालते हैं जिससे आपको पेट की समस्या शुरू होगी, कुछ भी समस्या हो सकता है। तो आयुर्वेद में उस ज़माने में तो इसके बारे में नहीं बताया, मगर आयुर्वेद में जो बताया है वो ये है कि जो भी सीज़न के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए, जैसे मैंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया, फ्रेश फूड आप ले वो सबसे बढ़िया है, और आपके आसपास जो अवेलेबल फूड है जो वेजिटेबल्स है वो खाए वो अच्छा है। और तीसरी बात पानी का ध्यान रखें, पानी को बिल्कुल गर्म करके और ठंडा करके आप लीजिए, ये सर, बेसिक चीजें हैं
1: जी। प्रोटीन और विटामिन B12 ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं और देखा जा रहा है कि लोगों में बहुत गिर रहा है इनका स्तर, तो इसके लिए बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज बता दीजिए, ये सवाल भी हमारे पास आया है, बलजिंदर सिंह जी ने पूछा है दिल्ली से।
0: देखिए वेजिटेरियन है तो ज़्यादा अल्टरनेटिव्स उनके पास नहीं हो गए, तो पनीर डेयरी प्रोडक्ट्स वो लोग ले सकते हैं। जिसके पास नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन है वो नॉन वेजिटेरियन अपना सकते हैं, जैसे बहुत सारे वैरायटीज है आजकल अवेलेबल है, आप खरीद के ले सकते हैं
1: जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं जी। हेलो
2: मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर, अपना नाम बताएं।
2: मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी मुजाहिद जी, आप बताएं, पूछिए अपना सवाल।
2: डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून जी।
2: डॉक्टर साहब मेरे जो गोलवेटर में स्टोर है 70 mm
0: किडनी में स्टोर।
2: जी गोलवेटर में
1: गॉल ब्लैडर
2: 70 mm का है, तो क्या आयुर्वेदिक में इसका कुछ है ट्रीटमेंट, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि बेटे का वो है CGHS कार्ड बना हुआ मेरा, तो अगर इससे अगर सर्जरी कराए तो इसका क्या सिस्टम है?
0: इनके बेसिकली दो सवाल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक बीमारी का। देखिए गॉल ब्लैडर का सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके लिए कोई दवाई देसी दवाई ट्राई ना करें, क्योंकि आपका जो उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, 70 mm विच इज ए ह्यूज वन, तो वो ना ट्राई करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो आपकी बाकी लिवर भी खराब कर देंगे। तो दूसरी बात यह है CGHS कार्ड है तो आप किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर में जाके अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाइए, वो अपने आप आपको सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए
1: जी। सर आयुर्वेद के नजरिए से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना कितना फायदेमंद है और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए, मतलब क्या हम खा सकते हैं और क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए?
0: ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक शायद आपको पता है कि नहीं, एक जापनीज एक साइंटिस्ट ने काम किया है।
1: अच्छा।
0: उनको नोबेल प्राइज मिला है।
1: वाव।
0: तो हर चीज के लिए रेस्ट चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: हमारे जो गट है एक तरह का इंजन है, मशीन चलती है, तो मशीन को भी रेस्ट चाहिए, उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिवर है, किडनी है, बहुत सारे अलग सिस्टम से उसको रेस्ट चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं, आप शुरू करिए एक वक्त से, जैसे नाइट आपने नहीं खाया, संडे का रात को मत खाइए, अगर आपको अच्छा लगता है फिर नेक्स्ट दो चार हफ्ते के बाद आप दोपहर का भी खाना छोड़ सकते हैं, मगर पूरा दिन छोड़ना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एसिडिटी होगी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप एक एक वक्त छोड़ के आप ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है
1: जी। सर बातचीत का जो सिलसिला है उसे इसी तरह से जारी रखेंगे, फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ नाज और आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जहां बात हो रही है आपकी सेहत की और सेहत से जुड़ी परेशानियों की भी। आयुर्वेदिक खान पान और जीवन शैली पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव सर, जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और CGHS में CMO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। तो सर, बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हेलो, मैं
1: जी, आपका नाम बताइए प्लीज।
2: जी, मेरा नाम सर।
1: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप अगर नेटवर्क में आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी।
2: आ रही है बाबा?
1: हाँ जी, हाँ जी, बताएं।
2: जी, मेरा प्रश्न है कि रात को ना मेरी मम्मी जी के पैर की नसें अचानक से खड़ी हो गई थी।
1: ओके,
2: ऐसा क्यों होगा?
1: पैरों की नसों में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, रात में अचानक से अकड़ गई हैं शायद, ऐसा कुछ कहें।
3: मैडम की उम्र तो नहीं बताई होगी, वैसे इसमें जनरली जो है ये

0: थकावट होती है लोगों को, तो मसल्स के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो कम हो जाते हैं, तो अचानक जो है पिंडली पकड़ना बोलते हैं ये लोग। उसके लिए जो है कोई भी घर पे अगर मसाज वाला तेल है उसको लगाए, और थोड़ा सा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी लेते रहे, वो उससे छुटकारा मिलेगा उसे।
1: जी, इसके साथ ही सर एक और सवाल आया है गुजरात से। ज्योति पूछ रही हैं कि 72 kg, 72 किलो इनका वजन है, शुगर बंद कर दी है, फ्राइड फूड भी नहीं लेती हैं, डेली 20 सूर्य नमस्कार भी करती हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है?
0: 20 सूर्य नमस्कार करना ही बहुत बड़ी बात
1: जी बिल्कुल।
0: है और वेट कम नहीं हो रहा है, और शुगर

0: ही एनिमिक हैं, और एज अ वेजिटेरियन कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए?
1: ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, डेट्स वगैरह अच्छा है, इवन ड्रमस्टिक्स मैंने कहा वो अच्छा है, पालक भी अच्छा है, ये ले सकते हैं, इसी से बहुत हद तक सही हो जाए, ड्रमस्टिक्स जरूर ले।
0: जी, बढ़ता वजन सर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है जिससे लोग आजकल परेशान हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए सबको, तो क्रैश डाइट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, मतलब कैलोरीज इंटेक बहुत तेजी से कम कर देते हैं, तो आयुर्वेद इसे सही मानेगा या गलत?
1: बिल्कुल नहीं मानेगा। पहली बात तो यह है कि सीधा सीधा मैं नकारता हूँ। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं, उससे चलती है, क्रैश कोर्स से नहीं चलती है, क्योंकि आपको हर दिन कुछ अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कुछ अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो जो डेली वर्क करने के लिए चाहिए, और कुछ स्टोरेज के लिए फैट भी चाहिए, ये तीनों जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी एक को बंद कर दिया या बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया, तो बॉडी का जो है ना नेगेटिव रिएक्शन शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना ही बंद कर दिया, तो सबसे पहले स्टमक में ही आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी शुरू होगी, उसके साथ साथ आप भूख ना लगने का एक कारण भी आप ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो उससे और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ये विशेष साइकिल होगा। तो इसको जितना हो सके अवॉइड करें। जो रूटीन है वो हमारा रूटीन सही है। रूटीन क्या है? टाइमली खाना और नियमित रूप से, और जितना जरूरी है आपको उतना ही खाना।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, सवाल पूछिए।
2: कस्बा किठौर, जिला मेरठ से। जी
0: जी,
2: तो हमारे जो हैं घर से, उनके गुर्दों में पथरी आई है, दोनों गुर्दों में, 8-8 mm।
0: जी
2: सर, उसके बारे में पूछना था जी, आयुर्वेदिक में क्या है इसके बारे में कुछ?
1: नहीं देखिए, 0-5 mm एंड 5-10 mm, ये 10-15 mm तो वो सर्जिकल हो जाएगा। 0-5 एंड 5-10, 0 मतलब 1-5 आप मान लीजिए, तो इसमें ये लोग ट्राई कर सकते हैं दवाई, और मगर एक ही चीज़ है, वो कहाँ पर है वो डिपेंड करता है कि किडनी की किस जगह पर है किडनी में। अगर मान लीजिए वो नीचे है किडनी के, तो वो फ्लश आउट नहीं होगा, अगर ऊपर है वो तो गिरने का चांस है, चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं।
0: जी सर, इसी के साथ मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रैश डाइट की, आपने बताया कि कैलोरीज इनटेक को एकदम से कम नहीं करना चाहिए, तो सर ये कैसे मालूम हो कि कितनी कैलोरीज किस वजन वाले के लिए सही है? अगर वजन कम करना है तो उसमें कितनी कटौती जायज है?
1: देखिए, जो एवरेज इंडिविजुअल है उसको 1500 से 2000 किलो कैलोरी तो मिनिमम चाहिए। जो आपकी रूटीन एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, तो उनको थोड़ा 500 और ज़्यादा, मतलब 2500 तक जाता है। तो मान लीजिए किसी को 1500 और 2000 के बीच में है उनका इनटेक, अगर वो कम करना चाहता है तो वो 1200 तक या 1500 तक ला सकते हैं, वो 500 तक नहीं ला सकता। फॉर एग्जाम्पल, 2 रोटी सब्जी दोपहर में और 2 रोटी सब्जी शाम को, वो आपको 10 से 1000-1200 आपको अमाउंट होगा। आप ब्रेकफास्ट आप 200-300 और जोड़ लीजिए, तो वो बन रहा है 1500, वो आपके रूटीन एक्टिविटी में ही वो निकल जाएगा। अब उसको भी आप कम करेंगे, आपको थकावट होगी।
0: जी, और उसको फिर लॉन्ग टर्म ले जाना भी
1: मुश्किल होगा।
0: जी सर, इसी के साथ डिनर स्किप करने का भी बहुत कल्चर है आजकल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: डिनर एक्चुअली स्किप मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, डिनर आप अर्ली करिए, मतलब जनरली लोग 10 बजे 11 बजे खाने की आदत है दिल्ली में, आपने देखा होगा, क्योंकि लोग पहुँचते ही जो 9:30 to 6 वाले हैं 8 बजे पहुँचते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर कुछ टीवी देखते हैं, फिर 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो ना खाए, उससे अच्छा है जब भी आप घर पहुँचेंगे तो आप लाइट खाना लीजिए, चाहे एक रोटी लीजिए, लाइट फूड इज ऑलवेज एडवाइजेबल।
0: जी, और सर बिजी शेड्यूल की हम अभी बात कर रहे थे, एक कॉलर ने भी हमसे पूछा था कि उसमें क्या होता है जब शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है, तो हम खाना बनाने के लिए और उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आयुर्वेद हमें क्या उपाय देता है? ऐसी कौन सी डाइट्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कम समय में एक अच्छी डाइट को तैयार भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं?
1: सवेरे आप महाराजा की तरह खाइए, आयुर्वेद यही कहता है, सवेरे जितना हो सके आप ज़्यादा लीजिए, दोपहर में उससे भी कम, और रात को बिल्कुल कम लीजिए, तो

0: सवेरे आप अगर रोटी भी लेते हैं, दो लेते हैं, तो उसकी जगह चार लीजिए। और घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घी लगा सकते हैं सवेरे, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं, दोपहर में आपका खाना बन नहीं पा रहा है, तो आप उससे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल ना खाएं,
1: जी
0: नियमित रूप से 2 बार 3 बार आप खाना ही पड़ेगा
1: जी
0: आपको।
1: तो रेडी टू ईट वाले ऑप्शंस पर ना जाएं,
0: हाँ,
1: ताज़े
0: ताजे।
1: और सैलेड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर।
1: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं
2: मैं दिल्ली पालन से बात कर रहा हूँ।
1: जी? अपना नाम बताइए
2: किशन लाल।
1: जी, अपना सवाल पूछिए सर।
2: मेरा सवाल ये है कि मुझे रात को 3 4 5 बार इंजेक्शन के लिए उठना पड़ता है,
1: जी
2: नींद खुल जाती है, मूड ड्राई हो जाता है,
1: सर, उम्र
2: इसलिए
1: उम्र कितनी होगी आपकी?
2: मैं 70 जी। तो
1: अच्छा जी सर।
2: सुबह और रात को उठना पड़ता है,
1: जी
2: और एक ये सांस लेटने के बाद सांस मतलब चलता, खांसी बहुत आने लगती है,
1: हाँ
2: ये तो काम आएगी। और खाना मैं रात को शाम के टाइम 1 गिलास सूप लेता हूँ, चुकंदर टमाटर गाजर का, और खिचड़ी खाता हूँ रात में, और एक रोटी।
1: सर, क्या शुगर की प्रॉब्लम है आपको?
2: शुगर की खाली पेट तो मेरा 107 होता है, और खाने के बाद 180 हो जाता है।
1: जी
0: उनको शुगर की समस्या कह रहे हैं वैसे है, और रात को उठते 3 4 बार ये कह रहे हैं। हो सकता है इनको प्रोस्टेट का भी समस्या हो, क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट बढ़ता है। तो प्रोस्टेट क्या करता है, वो पेशाब को जो है ना पूरा एवैक्यूएट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा जरा रह जाता है, फिर वो इरिटेट करता है, फिर दोबारा उठ के फिर जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए या तो उसका वेट कराना पड़ेगा, वेट कितना है वो देखना पड़ेगा,
1: जी
0: उसके हिसाब से इलाज शुरू होगी।
1: जी एक और सवाल आया है हमारे पास, नीदरलैंड से आया है रविंद्र पाठक, आशा पाठक जी का। बता रहे हैं कि डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम है, एज है 61 और वेट है 49। तो क्या ये वेट ठीक है या नहीं? इसके लिए शायद इन्हें हाइट भी बतानी चाहिए थी, बट सर क्या सजेस्ट करेंगे?
0: जैसे वैसे लग रहा है कि अंडर वेट ही होंगे, अंडर वेट है तो ये थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शुगर भी है और एक बताया क्या
1: थायराइड
0: बता,
1: थायराइड
0: थायराइड भी है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है वो पहले पता लगाना जरूरी है। हो सकता है हाइपर हो इनको, तब वेट कम होता है उसमें भी, अगर शुगर के कुछ कंडीशंस में भी वेट कम होता है तो इसकी जाँच होनी चाहिए।
1: जी सर, एक और सवाल है रणबीर कुमार जी जमशेदपुर से पूछ रहे हैं कि इनके भाई के लिए ये पूछना चाह रहे हैं। 33 साल उम्र है और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया है कि यूरिनरी ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर में एक पाउच एक्स्ट्रा बन गया है, तो यूरिन डिस्चार्ज में भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ राय देता है
0: ये मुझे लगता है सर्जिकल की तरफ
1: इशू
0: जा
1: है?
0: रहा है, तो इनको सर्जरी में ही दिखाना ठीक रहेगा।
1: जी ड्रमस्टिक्स ना मिलें तो सहजन की पत्तियां क्या इफेक्टिव होंगी? ये
0: बहुत
1: सवाल
0: अच्छा
1: दिया है
0: सवाल किया है,
1: जी।
0: बिल्कुल ये साउथ में खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं,
1: जी
0: पत्ते पत्ते खा सकते हैं ड्रमस्टिक की सहजन।
1: जी तो सर, सहजन की तरह और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर लेने भर से ही फायदा पा सकते हैं?
0: चौलाई बहुत लोग नहीं खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज़ है, यहाँ मैंने कम देखा है, साउथ में खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज़ है, पालक बढ़िया चीज़ है, जो भी सीजनल आपको मिल रहा है वो सब खा सकते हैं आप।
1: जी बिल्कुल। सर आगे बढ़ें और उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सर, कोई पसंदीदा गाना हो आपका, जरूर हम सुनेंगे उसे।
0: हाँ बहुत सारे गाने हैं, मगर मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो शैलेंद्र जी ने लिखा है, जिसको हम
1: जी
0: कविराज भी बोलते हैं, ये शायद अनाड़ी मूवी का है, सब कुछ सीखा हमने ना
1: वाह,
0: सीखी होशियारी,
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है,
0: हाँ
1: तो चलिए
0: शंकर जयकिशन जी के वो म्यूजिक है इसमें।
1: जी।

0: दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशन लाल इनका नाम है। और जी हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। आनंद सिंह जी पूछ रहे हैं, 30 साल इनकी उम्र है और 76 किलो इनका वजन है, पूरा दिन सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं। श्रावस्ती यूपी से इन्होंने ये सवाल भेजा है।
1: 30 साल उम्र है।
0: 76, सेवेंटी
1: अच्छा,
0: सिक्स वजन है
1: हाइट लिखना चाहिए था, कोई
0: जी।
1: बात नहीं। हाइट थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है मुझे, 76 में भी लिखा नहीं है। तो इनको जनरली क्या है, रूटीन टेस्ट में ये पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उन्होंने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है तो कहना मुश्किल है।
0: जी सर, आहार की हम बात कर रहे थे, तो विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इसकी परिभाषा आयुर्वेद में किस तरह से दी गई है, और जाने अनजाने में हम ऐसे कौन से फूड आइटम्स को एक साथ खा लेते हैं जो हमें नुकसान देते हैं?
1: एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा कि शायद पूरे जितने भी जो वर्ल्ड के मेडिकल सिस्टम्स है उसमें शायद आयुर्वेद में ही सबसे एक्सटेंसिवली मैं कह सकता हूँ विरुद्ध आहार के बारे में बताया था। उन्होंने उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या बीमारियाँ हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी बताया। फॉर एग्जाम्पल, मछली के साथ दूध जो लोग नहीं खाते हैं, अंडे के साथ भिंडी लोग खाते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो जनरली नहीं खाते
0: नहीं
1: हैं।
0: खाना चाहिए।
1: हाँ, नहीं खाते भी है और खाना भी नहीं चाहिए। और गरम और ठंडे चीज़ लाइक गुलाब जामुन और आइसक्रीम लोग खाते हैं आजकल। जो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, एक्सट्रीम्स को आप कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ज़्यादातर स्किन डिसीजेस होंगे और कुछ अलग लिवर किडनी और भी बहुत सारी बीमारियां होने का संभावना है।
0: जी सर, किस तरह की बीमारियां या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर विरुद्ध आहार हमारी डाइट में है?
1: सबसे पहले तो डाइजेशन में ही असर पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होते नहीं है जनरली। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन से ही 100 बीमारियां पैदा होते हैं। आपका एसिडिटी शुरू हो जाएगा, फिर ब्लोटिंग होगा, उसके बाद आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। वो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका लिवर के कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो ये सब विशेष साइकिल बनेगा।
0: जी, सतीश कुमार जी ने एक सवाल भेजा है। उम्र है 64 साल और वजन है 91 किलो। रोहिणी दिल्ली से भेजा है सवाल कि

0: कमर में दर्द महसूस करते हैं, एमआरआई करवा रखा है और डिस्क बल्ज बताया है, नस भी दबी हुई है, क्या सजेस्ट करेंगे सर?
1: ये इसमें जनरली क्या है, जब ओवरवेट होता है तो एक्चुअली एब्डोमेन बल्ज होता है। जैसे एब्डोमेन बाहर की तरफ पुल करेगा, आपका जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो नॉर्मल कर्वेचर है वो डिविएट हो जाएगा। जैसे डिविएट होगा, दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जैसे कान होता है हमारा, उसका जो टेक्सचर आपने देखा मुलायम होता है, वैसे एक कार्टिलेज होता है, उसको डिस्क बोलते हैं। वो उस एरिया से, क्योंकि कर्वेचर बदल गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके वजह से सूजन होगा, फिर उसके बाद आपका नस में भी वो प्रॉब्लम शुरू होगी। तो उसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं, कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स हैं, वो कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इधर सरिता विहार में, उधर खेड़ा डाबर में एक चरक हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहाँ जाके करा सकते
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: हैं।
0: जी, अपना नाम बताइए और
2: बीपी
0: कहाँ
2: हुआ
0: से।
2: था, मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ, मुझे पूछना है कि वर्षा ऋतु चल रही है, तो
0: जी
2: वर्षा ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, मतलब क्या ना खाना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
0: जी
1: अच्छा अच्छा सवाल है। वर्षा ऋतु में सबसे पहला जो है फ्रेश फूड और जो गर्म खाना है वो खाना चाहिए, और दूसरी बात यह है स्टेल फूड, जो रखा गया खाना या रात को फ्रिज में जो रखते हैं हम लोग, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत देर से बाहर रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा, फ्लैक्स सीड्स कौन सी ऋतु में खाने चाहिए? ये सपना जी का सवाल है सर।
1: फ्लैक्स सीड्स को हम लोग तीसी बोलते हैं, अतसी है उसका नाम, तीसी भी बोलते हैं, उसका लड्डू भी बनते हैं, विंटर्स में सबसे बढ़िया है, और इस समय अवॉइड करें और समर्स में थोड़ा अवॉइड करें।
0: जी, और सर इसी के साथ वेट मैनेजमेंट पर हम लौट कर आते हैं एक बार। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो सजेशंस मिलते हैं लोगों को वो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने के मिलते हैं, जैसे दाल चावल, दाल माफ़ कीजिएगा, दाल और सब्जियां तो लेनी है उसमें, लेकिन कार्ब्स छोड़ने हैं, रोटी चावल को छोड़ देना है पूरी तरह से। कई तरह की डाइट्स इस वक्त कल्चर में हैं, तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है?
1: इस बारे में आयुर्वेद ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा संतुलित आहार ही कहा है,
0: जी
1: जिसमें आपका फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन की मात्रा भी हो। प्रोटीन आपको बेसिकली जो वेजिटेरियन हो तो दाल में मिलते ही हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है बहुत सारे, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक खाना है।
0: जी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, दोबारा कोशिश करेंगे। और सर अगला सवाल जुड़ा है वाटर इनटेक से। हमने बात की कि कितना ज़रूरी है वाटर इनटेक, लेकिन कितना, कब और किस तरह से उसको हमें लेना चाहिए?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एक मेरे यहाँ पड़ोसी है, वो सवेरे उठते हैं 2 लीटर पानी पहले पीते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कमजोरी है, उस मैंने जो बोला उसी में उसका आंसर है। 2 लीटर आप पानी पियेंगे, उसके साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो बाहर निकल गए। तो उसका मतलब यह है कि आप पानी पीजिए विथ रेगुलर इंटरवल्स, जैसे आपने 1 ग्लास इज 250 ml होता है उसमें, 200 से 250, आपने एक बार पिया, फिर 2 घंटे के बाद लीजिए, फिर उसके 2 घंटे के बाद लीजिए, और जब जरूरी है तब उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा लीजिए, जब जरूरी नहीं है उसको कम कर दीजिए। जैसे विंटर्स में कम जरूरत पड़ती है, समर्स में और ये बारिश में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो 2 से 2.5 लीटर आप पी सकते हैं, मगर इकट्ठा नहीं, एक साथ नहीं पीजिए, उसको इंटरवल्स में लीजिए।
0: सर स्किन से रिलेटेड एक सवाल आया है। इनकी वाइफ हैं राज रानी जी, इनका नाम है, एज 68 साल बता रहे हैं। रोहिणी से सवाल है कि नोज पर एक निशान हुआ था और हार्पिस कोई बीमारी इन्हें डायग्नोस हुई है, तो इसका कोई इलाज है?
1: हर्पिस एक वायरल डिसीज है जिसमें आपको नोज में, उन्होंने बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक हो, जनरली एक पैटर्न होता है जो नीचे नस होता है वो फॉलो करता है, वो सीवियर पेन होता है उस समय, अब तो पेन नहीं रहा होगा, अब तो पेन नहीं रहा होगा, उनको ये कह सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स है जो लगाने से उसमें अगर कोई डिस्कलरेशन हुआ है वो हट सकता है, मगर जो हर्पिस है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आया होगा और निकल भी गया होगा।
0: ओके सर, बालों की देखभाल कैसे करें, आयुर्वेद इसके लिए क्या सुझाव देता है? शिव जी का सवाल है ये मेरठ से।
1: बालों के लिए सबसे पहला जो है खाने में ही तेल बहुत सारे हैं जो नेचुरल तेल होते हैं। सर पे लगाने से, तेल लगाने से अगर बाल उगते तो सबके पास बाल होना चाहिए था। तो आप जितने भी डाइट है वो सप्लीमेंट्रीज आपके खाने में ही है। फॉर एग्जांपल आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वो आप खा सकते हैं। बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स है वो लीजिए, घी लीजिए, दूध आप ले सकते हैं, अश्वगंधा एक चूर्ण है आयुर्वेद का वो ले सकते हैं। ये सब करने से बाल की जो हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगा, तेल लगाने से नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आयुर्वेद की बताई कुछ जड़ी बूटियां भी अब आपसे जानना चाहेंगे जिनके रोजमर्रा सेवन से हम कई मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं, या अगर वेट मैनेजमेंट की भी बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, तो एक कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए।
1: इस ऋतु के लिए मैं बताऊंगा जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन आती है हरड, हरड का चूर्ण आता है जिसको हरित की बोलते हैं, वो चुटकी भर आप एक बार लीजिए दिन में, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इस ऋतु में 2 महीने के जो भी है अभी अगस्त में ख़त्म ही हो जाएगा, वो बढ़िया चीज़ है। बाकी अश्वगंधा एक रूट है बेसिकली, वो आप दूध से आप ले सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो त्रिफला चूर्ण 1 से 3 ग्राम ले सकते हैं। एक शंखपुष्प भी है जिनको नींद की प्रॉब्लम है, वो शंखपुष्प भी एज ए सिरप आती है वो ले सकते हैं। ब्राह्मी है वो भी ले सकते हैं। ये सारे रेगुलरली इजीली अवेलेबल मेडिसिन से हर जगह मिल जाएंगे।
0: जी बिल्कुल, चाय कॉफ़ी की आदत से भी सर ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो आयुर्वेद इसका क्या रिप्लेसमेंट बताता है हमें?
1: आयुर्वेद चाय और कॉफ़ी के बारे में जिक्र तो मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। बाकी जो डिकॉक्शंस के रूप में बहुत सारे दवाई या दवाई जैसे दिखने वाले दवाई चीज़ें बताएं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी गर्मी का वो एक षडंग पानी करके, ये आपको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। षडंग पानी एक पाउडर है, इसमें आप 1 चम्मच उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उबाल के वो लीजिए, वो आपको रिफ्रेशिंग बिल्कुल लगेगा। ये हर जगह मिल जाएगा इस मौसम के लिए। बाकी विंटर्स के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, वो मेडिसिन के रूप में ही लेना चाहिए, उसको रूटीनली ना लें।
0: सरोज मल्होत्रा जी साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर सर मेरी एज 70 है, 70 साल है, शुगर फास्टिंग में रहती है 130, क्या ये ज्यादा है, कितनी होनी चाहिए और कितना परहेज करना चाहिए इन्हें इस स्थिति में?
1: इसके साथ साथ अगर वो पोस्ट प्रांडियल पीपीबी अगर मैडम लिखती तो थोड़ा समझने में अच्छा रहता। 130 बहुत ज्यादा नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने जो भी एक्सरसाइज कर रहा है या खाने में जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो लेते रहिए, और थोड़ा चलने की कोशिश करें अगर हो सके तो।
0: जी सर, खास तौर पर अगर शुगर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चीनी का ऑप्शन क्या लें, कुछ लोग गुड़ को प्रेफर करने लगते हैं, धागे वाली मिश्री को प्रेफर करने लगते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और सर शुगर का जो ये है पॉइंट्स हैं, जो शुगर का मेजरमेंट है, वो कहाँ तक नॉर्मल है और किससे ऊपर घबराने की ज़रूरत है?
1: जनरली क्या है, शुगर में हम लोग 2 चीज़ देखते हैं नॉर्मली, वो एक है जो खाने से पहले खाली पेट जिसको बोलते हैं, और खाना खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल जिसको बोलते हैं, एक होता है फास्टिंग खाने से पहले और पोस्ट प्रांडियल। ये फास्टिंग जो है 100 के आसपास, 110 मैक्सिमम इसके आसपास होना चाहिए, और जो पोस्ट प्रांडियल है वो 140 के करीब होना चाहिए। मगर ये सही पैरामीटर नहीं है, इसमें HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो आपको वैल्यू बताएगा 3 महीने का एवरेज, साथ साथ उसको भी कराना ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक दिन का आपका जो शुगर वैल्यू है वो बताता है, बाकी जो HbA1c है वो आपको पूरे 3 महीने का क्या एवरेज है वो बताता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है HbA1c, आपको एवरेज देखना है कि वो कितना है। जनरली वो 5.5 के आसपास है तो ठीक है, उससे ऊपर 6 से अगर ऊपर जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
0: तो फिर शुगरी आइटम पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है?
1: शुगरी आइटम पूरी तरह कभी बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा। कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए शुगर चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा ना ले। जो बहुत सारे

0: चीज़ों में शुगर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़ का भी,
1: हुँ.
0: अब ऐसा नहीं कि गुड़ आपने ज़्यादा खा लिया तो शुगर सही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जो उसको एक लिमिट तक ही लेना चाहिए, और शुगर बिल्कुल बंद करना भी बहुत आपको नुकसान पहुंचाएगा।
1: जी बिल्कुल, बस रिफाइंड फॉर्म में ना हो।
0: हाँ, रिफाइंड
1: उसका ध्यान रखें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है सभी लिसनर्स को भी आपकी इस जानकारी से फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की रेडियो डॉक्टर की कड़ी को हमें यहीं पर समेटना होगा और आपसे कहना होगा अलविदा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेहत के लिए लापरवाह मत बनिए, ज़रूरी जानकारी को अपने साथ रखिए और खुश होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह किया। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। सरकार ने उस भ्रामक आयकर नोटिस का खंडन किया है जिसमें प्राप्तकर्ताओं से देय कर राशि के हिस्से में के रूप में 6,000 रूपये का भुगतान करने को कहा गया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विशालकाय हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर

आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखिर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
8: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
9: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ SR यानी संतोष राव।

0: जी हाँ, आज के जमाने में जब युवा कोई निर्णय लेता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे या उनके घर वालों का व्यवहार कैसा होगा। जी हाँ, एक तरफ अपनी ही धुन में आगे बढ़ता हुआ युवा तो दूसरी ओर परंपराओं और रूढ़िवादी सोच का मान रखते हुए बुजुर्ग आपस में इस कदर उलझ कर रह जाते हैं, जहाँ रिश्तों की कड़ी धीरे धीरे टूटने लगती है। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में आइए बात करते हैं इसी विषय पर लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, आज के परिवेश में जिस तरह से बुजुर्ग और युवाओं की सोच आपस में टकरा रही है, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा, जब आप ऐसा देखती हैं या पढ़ती हैं तो क्या रिएक्शन रहता है आपका?
1: मैं तो हक्की बक्की रह गई। कुछ समय पहले मैंने एक ही समाचार पत्र में दो समाचार पढ़े। एक था कि एक किशोर अवस्था की लड़की, कुछ 16-17 साल की रही होगी, उसका अपने पड़ोस के लड़के के साथ लव अफेयर हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और जैसे ही उसके पिता को पता लगा वो उनको ले गए, अपनी बेटी को ले गए और उसको पानी में डुबा दिया
0: जी।
1: और ये बताया कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। दूसरी समाचार जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि एक लड़की, वो भी किशोर अवस्था की, वो सोशल मीडिया पे जाकर उसने इंस्टा अकाउंट पर किसी लड़के से दोस्ती करी और बिना अपने माता पिता को बताए चुपके से बहाना करके वो मिलने चली गई। उस आदमी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, उसको बहुत दिनों तक एक बंद कमरे में रखा, उसके साथ हिंसा करी
0: जी।
1: तो ये दोनों न्यूज़, ये दोनों समाचार ने मेरे को इसलिए आकर्षित किया क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दिशा फाउंडेशन का हमेशा यही प्रयास रहता है कि लड़कियों, महिलाओं, बच्चों, युवा परिवारों से बातचीत करें। इसमें मुझे ये भी दिखा कि कितना जनरेशन गैप है, दोनों पीढ़ियों में कितना अंतर है।
0: ये बात तो 100% सच है विनीता जी कि ये जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है और सोच बिल्कुल अलग अलग है दोनों की। तो विनीता जी, एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये गैप जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है और अगर इसको परिभाषित किया जाए तो आप कैसे करेंगे?
1: जनरेशन गैप संतोष दो पीढ़ियों का वो अंतर होता है जिसमें के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो एक अनुशासित, एक परंपरा और एक अलग ही तरीके के जीवन को चलते आए हैं और वो चाहते हैं कि जवान लोगों पर वही सोच, विचारधारा वही लागू की जाए। लेकिन जो जवान लोग हैं वो तेजी से जो बदलाव आ रहा है समाज में, जो पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव है, जो सोशल मीडिया है, युवा पीढ़ी बिल्कुल नई सोच रखती है। उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल सुननी नहीं है
0: जी।
1: तो ये गैप, ये हमारे समय में भी था पीढ़ियों में अंतर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, इतना अधिक नहीं था के बीच में कोई एक मिडिल पाथ निकाला जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें बैठ के बात की जाए।
0: बिल्कुल।
1: मैं खुद ही बहुत परेशान होती हूँ। मेरे परिवार में मेरी 90 वर्ष की माता जी हैं जो बहुत ही अनुशासित रही हैं, बहुत ही डिसिप्लिन से उन्होंने अपनी लाइफ जी है। अब मेरी माता जी के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब उनके जो द्योते पोते हैं, पोतियां हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल फर्क है
0: जी।
1: मेरी माता जी सुबह सुबह उठती हैं, अपने सारे काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अभी तक, और बहुत ही अनुशासित हैं, सब चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, वो रात भर जगते हैं, उनका खाने खाने का कोई टाइम ही नहीं है, उनको कुछ बोला जाए तो वो सुनते ही नहीं है
0: जी।
1: और तो और आजकल के जवान लोग तो विवाह जैसी बात में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कौन से ज़माने में रहती हैं जो आप हमें कह रही हैं कि शादी कर लीजिए। तो इतना ज़्यादा अंतर सुनने में तो हंसी आती है, लेकिन जो उससे गुजरता है, अगर एक बुज़ुर्ग और एक जवान एक साथ रहें तो उनके जीवन में इतना अंतर आ गया है कि वो को एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माता जी का कहना है, तुम मेरी बात सुनो, मैं बड़ी हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही है। समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर पढ़ाई करो, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन जो जवान पीढ़ी है उसको कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं है, वो रात भर जगती है, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, घर का खाना खाना ही नहीं है।

0: करते हैं, जब आना है आते हैं, जब जाना है जाते हैं
1: जी।
0: तो हंसी तो आती है देखकर, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मन मुटाव भी हो जाता है। कई बार बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने। आज की पीढ़ी जिसे हम जेन अल्फा या जेन जी के नाम से पुकारते हैं, उनका व्यवहार यही देखने को मिलता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी या उन पर कोई निर्णय जबरदस्ती थोपा गया तो वो रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने में गुरेज नहीं करते। बेशक बाद में पछताना पड़े और अपने बुजुर्गों से बाद में ये कह

0: विनीता जी, ये गीत सुनते सुनते मुझे कहानी याद आ गई कि एक पिता की दो संतान थी। उसका बड़ा बेटा पिता की बातों को फॉलो करता था, तो वहीं छोटा बेटा अपने दोस्तों के संग मस्ती में चूर रहता था। और एक दिन छोटा बेटा अपने दोस्तों के कहने पर अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है। पिता उसको बहुत समझाते हैं, अच्छे बुरे का एहसास दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा बेटा अपने दोस्तों के बहकावे में इस कदर बहक चुका था कि उसने अपने पिता, अपने बड़े भाई और सब घर वालों की एक ना सुनी। और आखिर में उसके पिता ने दो हिस्से कर दिए और ये छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर चला जाता है, ये सोचकर कि वो ऐश करेगा और खूब पैसे कमाएगा। कुछ दिन तो सब अच्छा अच्छा लगता है उसको, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो दोस्त भी उसका साथ छोड़ जाते हैं और फिर उसको ये एहसास होता है कि काश उसने अपने पिता की, अपने बड़े भाई की बात मानी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा और वो वापस डरते डरते अपने घर वापस आता है, पिता से माफी मांगता है। और पिता की महानता देखिए कि पिता उसे माफ करते हुए उसे कहते हैं कि जो खो गया था वो मुझे वापस मिल गया। मतलब कहानी ये संदेश देती है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो वो माफ करने को तैयार भी रहते हैं। विनीता जी, अच्छा एक बात बताइए कि जो जेनरेशन गैप देखने को मिल रहा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है?
1: मुझे लगता है संतोष कि दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे को इज्जत देनी बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: मैं अपनी माता जी को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं।
0: ओके।
1: अभी जमाना बिल्कुल बदल चुका है और वही बात मैं अपने जवान बच्चों को भी बताने की कोशिश करती हूँ कि आप कुछ तो अच्छा सीखिए बड़े बुजुर्गों से, जो उनका डिसिप्लिन है, जो उनका अनुशासन है, जो उनकी तहजीब है, जो बड़ों से बात करने का तरीका है, जो बड़ों की राय लेना, जो परिवार विवाह जैसे सिस्टम में बिलीव करते हैं, ये सब अच्छे सिस्टम्स बने हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी टीचिंग हमें दी है, लेकिन आजकल के बच्चों तो बिल्कुल के कान पर तो वो जू भी नहीं रेंगने देंगे, जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो किस तरीके से दोनों पीढ़ी एक दूसरे की इज्जत करें, बैठ के बातचीत करें। और मैंने देखा है कि वो करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर पाया गया है जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, जो बड़े हैं, वो कई बार इतने ज्यादा पुरुषवादी हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं।

0: हैं और वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इससे जवान लोग बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे तो युवा पीढ़ी बिल्कुल ही दूर होती चली जाएगी और कहीं भी साथ बैठकर एक जगह बात नहीं की जाएगी। हमें संवाद रखना और दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे से सीखना जरूरी है।
1: जी हाँ, जहाँ बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं वहाँ समाधान भी जल्दी निकल आता है। इसीलिए एक दूसरे को समझते हुए अपनी ईगो, अहंकार और अपने गुस्से को दूर रखकर बातचीत करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी, चाहे वो बड़ा हो या कोई जवान, हर समय उसकी सोच या उसका नजरिया ही सही नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे की बातों को अहमियत दें और एक दूसरे की इज्जत भी करें। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं 7678438471 पर। जी हाँ, 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और मैं लेकर आई हूं आपके लिए हमारा वो स्पेशल प्रोग्राम जो जुड़ा है हमारे यंग स्टूडेंट्स के साथ में, हमारे कैंपसेस के साथ में। जी, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग और इसे सुनते हैं आप हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची BR अम्बेडकर कॉलेज और वहां पर जाके उन्होंने की बहुत सारी तहकीकात, बहुत सारी बात की उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स से, के टीचर से, वहां के प्रिंसिपल से और ये सब कुछ और उसके अलावा इस कॉलेज की जानकारी और इसके कोर्सेज, इसके स्टूडेंट्स, उनका टैलेंट, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे और ऋचा वर्मा के साथ स्टूडेंट्स की बातचीत मैं प्ले करने जा रही हूं आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जो डेडिकेटेड है हमारी कैंपस लाइफ को, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को।
2: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में जहां हम आए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: हेलो मैम, आई एम आद्या विश्वकर्मा एंड मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
2: सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूथ डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: तो आद्या, आपके लिए युवा होने का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है?
3: मैम, मेरे लिए युवा होने का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है, बस नई चीजों को एक्सप्लोर करने की आजादी है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आजकल के युवाओं के पास जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटी

0: हैं, वहाँ उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, है ना। तो
1: जी मैम,
0: आज के
1: बिल्कुल
0: युवाओं के लिए सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या है? एक अच्छी नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिकॉग्नाइजेशन, या फिर सोसाइटी में चेंज लाना? क्या सोचता है आज का युवा?
1: मैम, आज का युवा कुछ ऐसा सोचता है कि ना, लाइक उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन ये है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, चीज चाहे वो अच्छी नौकरी से हो या एंटरप्रेन्योरशिप से हो, समाज में बदलाव लाकर हो, तो सबसे बड़ा वो ना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। आज का युवा सिर्फ सफल नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि वो हर काम में याद रखा जाए।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने आद्या, और बिल्कुल सही बात है। आज का युवा इम्पैक्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसे याद रखा जाए।
1: के लिए
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आद्या का सपना क्या है? ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहती हैं?
1: मैम, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यह है कि मैं अपने माता पिताजी को वो सब कुछ दे सकूं जो उन्होंने मेरी खुशियों के लिए कभी सेक्रीफाइस करा, कि आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ।
0: वाओ, दैट्स रियली गुड, एंड आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स जब ये सुनेंगे तो उन्हें बहुत प्राउड फील होगा। इंटरनेशनल यूथ डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच
1: थैंक यू,
0: आद्या हमसे जुड़ने के लिए। थैंक
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो
0: यू
1: मच।
0: सो मच।
2: मैम, मेरा नाम राम पाठक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से अभी पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: तो एक बात मुझे बताइए कि युवा पीढ़ी को ऐसी कौन सी खासियत है जो पिछली पीढ़ियों से सबसे अलग बनाती है?
2: मैम, मुझे लगता है कि इस पीढ़ी की जो सबसे खासियत है वो ये है कि ये चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है और नई चीजों को निगलेक्ट नहीं करती, ये नई चीजों को सीखने में संकोच नहीं करती है, बल्कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है और नए तरीके से बढ़ने के लिए चीजें करती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन की सबसे बेस्ट थिंग है।
0: अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है और आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया यूथ्स की पहली पसंद है। क्या सोशल मीडिया युवाओं की एस्पिरेशन बढ़ा रहा है, या फिर आपको लगता है कि उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है?
2: मैम, वैसे जनरली मैं जिस तरह से देख रहा हूँ अभी तो इसका बहुत प्रेशर भी हम लोगों पे पड़ रहा है, लेकिन इंस्पिरेशन बहुत है इस चीज को लेके कि हम चीजें बहुत जल्दी देखते हैं और बहुत इजीली हमारे तक चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है कि हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, हमें नए थॉट्स मिलते हैं, नए तरीके से सीखने और सोचने की जो क्षमता सोशल मीडिया दे रहा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट थिंग है मैम कि हमारे जनरेशन को ये चीज मिली है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। हमें खुद पर फोकस करना है और चेंज होना है, पर आजकल का
2: यस मैम,
0: युवा खुद पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि कई सारे ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं जिन पर युवा की जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल समस्या है, इससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि आपका युवाओं के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या रहेगा?
2: हम अपने आसपास नदियों को भी साफ रखें, उनपे जो धार्मिक जिस तरीके से चीजें की जाती हैं तो उस नदियों में गंदगियां ना डालें, साफ सफाई रखें, प्लास्टिक जो प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, वन टाइम प्लास्टिक जो है उसका यूज हम इग्नोर करें, चीजें प्लास्टिक का बेसिकली कम यूज करें हम, तो वो हमारे जनरेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा होगा।
0: एब्सोल्युटली, और ऐसा करके न केवल आप अपनी जनरेशन को बल्कि अपने आने वाले जनरेशन को भी बेहतर करेंगे। राम, आपसे जानकारी प्राप्त करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि जो आपकी सोच है वो न केवल आपके आजकल के युवाओं को बल्कि आने वाले जनरेशन को भी अवेयर करेगी। थैंक यू सो मच राम, हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका?
3: तनु त्रिवेदी।
0: तनु, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूथ्स को, तो क्योंकि आप भी एक यूथ हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं या कंपटीशन ज्यादा है, और वो इन दोनों को कैसे मैचअप कर रहे हैं?
3: मैं ये कहूंगी मैम कि आज का जो यूथ है उसके पास अपॉर्चुनिटीज पहले से तो ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि उसके पास कॉम्पिटिशन भी उससे ज्यादा है। मतलब वो आज कल देखा जाए तो वो सिर्फ एक बैकग्राउंड में सीमित नहीं है, गांव में या फिर अपनी क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, वो बाहर निकल रहा है, पढ़ रहा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को किसी भी फील्ड को उठा के देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसा कि हम देखते ही हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं, जो ग्रामीण युवा हैं, ऐसे में जो ग्रामीण युवाओं के पास जो अपॉर्चुनिटीज और जो शहरी युवाओं के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें एक गैप है, ये आपने भी महसूस किया होगा।
3: जी
0: तो आपको क्या लगता है कि हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं और दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं?
3: मेरे हिसाब से मैम, टैलेंट गांव और शहर को देख के नहीं पैदा, टैलेंट तो सब में होता है, अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इनके गैप को कम करने के लिए हम क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेट एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, जो बहुत सारे संगठन हैं वो जाके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करना, उन्हें बताना, उन्हें चीजों के लिए प्रेरित करना, उन्हें बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं जो शहरी शिक्षा है वैसी ही ग्रामीण शिक्षा को हम बनाएं, तो बहुत सारे युवाओं को जरूरत नहीं पड़ेगी अपने घर से निकल के बाहर रहने की।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आज के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं, अगर उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो हमें उन्हें उन तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना होगा, ना कि वो चलकर क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आज देश का हर एक युवा अगर आपकी कोई एक सलाह माने और उसे अपनी जिंदगी में अपनाए, तो वो आपकी तरफ से उनके लिए क्या सलाह होगी?
3: अगर कि मेरी सलाह माने तो मैं उनसे हर देश के युवक को यही कहना चाहूंगी कि खुद की सुनो और खुद पे विश्वास करो।
0: जी, अच्छा, अब समय हुआ है एक छोटी सी गेम का, जिसे हम कहते हैं माय टॉप थ्रीज। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको अपने टॉप थ्रीज बताने होंगे, ठीक है तनु?
3: ओके ओके।
0: तो माय टॉप थ्री यूथ आइकन्स।
3: विकास दिव्य कीर्ति सर, डॉक्टर तनु जैन मैम,
0: जी
3: और मेरे एक टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आदर्श मिश्रा।
0: ओके। आपके टॉप थ्री करियर ऑप्शंस?
3: जर्नलिज्म में एंकर बनना, आईएएस बनना, आर्मी में जाना, इंडियन आर्मी।
0: आपके टॉप थ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशंस?
3: कश्मीर जैसा सबका होता है कश्मीर, दूसरा बनारस और तीसरा मध्य प्रदेश।
0: 3 ऐसी बेसिक सिविक सेंस जो हम यूथ्स को जरूर डेवलप करनी चाहिए ताकि हम सक्सेस से नजरें मिला पाए और सक्सेस तक जल्दी पहुंच जाए।
3: क्लीननेस के मामले में अगर हम खुद अपना पिया कचरा अपने खाए पैकेट को डालें तो गंदगी नहीं होगी। दूसरे की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं यूथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़ता रहता है या कहीं ना जल्दबाजी में रहता है, हमें पेशेंस नहीं होता जेन जी में, तो ये। और तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए सबका सम्मान करना, क्योंकि
0: ओके, थैंक यू सो मच तनु हमसे बातचीत करने के लिए, और ये कहते हुए मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारा जेंजी जो है वो बहुत ही अवेयर है, अपने करियर को के ऑप्शंस को लेकर बहुत क्लियर है, और उनके विजन में उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनकी एस्पिरेशन एकदम साफ है। तो कोई भी कंटेक्स्ट हो, जैसे कि इस बार की थीम है डिफरेंट कंटेक्स्ट सेम एस्पिरेशंस, कॉमन एस्पिरेशंस, एंड आई एम श्योर कि चाहे किसी भी कंटेक्स्ट का युवा हो उसकी एस्पिरेशंस जरूर फुलफिल हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
3: थैंक यू।
4: मेरा नाम है रिचा, कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम नंदिनी।
4: नंदिनी, नंदिनी कैसा लग रहा है आपको? ओरिएंटेशन डे है, आपके नए साथी और जुड़ रहे हैं कॉलेज में।
5: बहुत अच्छा लग रहा है। जब ओरिएंटेशन शुरू हुआ, मैं सुबह सुबह आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भी एक टाइम था जब हम लोग यहाँ ओरिएंटेशन के दिन आए थे, ना किसी को जानते थे ना किसी को पहचानते थे।
4: तो जब आप इस कॉलेज में आई तो एकेडमिक्स के अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है?
5: इस कॉलेज में आने का मेरे पास मेन दो रीजन था। फर्स्ट की मैं एचजीएमसी यानी कि अपना मास कॉम कम्प्लीट करूँ, और सेकंड की मेरे को ना बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं चाहती थी कॉलेज आकर मैं अपने जो मेरा स्पोर्ट है वो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट है और उसको बढ़ाऊँ और उसको जो उसका लेवल है उसको हाई पर लेके जाऊं।
4: तो कौन सी सोसाइटी और कौन सा क्लब है आपके हिसाब से जिसने आपकी पर्सनालिटी को एक बूस्ट दिया है?
5: सबसे बड़ी सोसाइटी और सबसे अच्छी सोसाइटी जो मेरी है वो है डिबेट सोसाइटी, जिसके भरोसे मैं आज कई मंचों पर गई हूँ। आईएमसी तक मैंने अपनी पहुंच बढ़ाई है और वहां जाके मैंने पोजीशंस ली है।
4: तो फर्स्ट ईयर में क्या कोई ऐसी गलती है जो आपने की है और आप अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहें कि देखो मुझसे तो ये हो गया लेकिन तुम मत करना?
5: जो हमारे फर्स्ट ईयर आए जो नए स्टूडेंट आए उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि फर्स्ट ईयर में आप अपना मेन फोकस उस पे कीजिए जिस फोकस के साथ आप यहाँ पे आए हैं। किसी और जगह, मतलब अपनी फोकस को किसी और जगह ना जाने दे, जो कि मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं बाद में उसको एक समय के साथ अपने पास ले आई, पर मुझे उसमें टाइम लगा और मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट ईयर को टाइम लगे, वो अपनी चीजें उसी समय उसी साथ रखे तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा।
4: बहुत ही अच्छी सलाह है और हमें उम्मीद है कि न केवल आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए होंगे वो इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति सैनी है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में एचजीएमसी की स्टूडेंट थर्ड ईयर।
4: आपकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगता है क्या है?
5: मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं जो फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ कॉन्फिडेंटली, और शायद ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एचजीएमसी में पढ़ के आया है। जर्नलिज्म आपको एक कॉन्फिडेंस दे देता है, तो शायद ये वही है।
4: ओके, और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है?
5: कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेती हूँ।
4: और इसे ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रही हैं?
5: इसे ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए बात करती हूँ, जानती हूँ पहले लोगों।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।

0: को आप किस बात के लिए याद करेंगी, कि आपको अच्छी एजुकेशन दी इस बात के लिए, आपके सपने पूरे किए इसलिए, या आपको बहुत अच्छे दोस्त मिले इसलिए?
1: अगर मैं एक चीज को मैं चूज नहीं करूंगी, तीनों चीजें बहुत ही स्पेशल रही हैं। और रही बात एक शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए हम सभी आए हैं यहाँ पर।
0: बहुत अच्छी बात है। आजकल के जेंजीज के बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं, और अगर मैं कहूँ कि जेंजीज की तीन सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो एक जेंजी ही बताए तो ज्यादा सही रहेगा।
1: पहली चीज, हम लोग ऐसा नहीं होता कि कुछ मन में कुछ और रखते हैं और फेस पे कुछ और बोलते हैं। जो ऑन द स्पॉट मन में आ रहा है, जो चीज हम देख रहे हैं, वो एक्सप्रेस करने की कह सकते हैं कि जेंजी में है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लड़कियां ना खुद को लड़की समझ के बोल नहीं पाती थी। टाइम पे लड़कियां क्यों लड़कों से पहले बोलने के लिए तत्पर रहती हैं कि हाँ मैं बोलूंगी।
0: चलिए, अब ऐसा एक सीक्रेट बताइए हम लोगों को जिसके बारे में यहाँ पर लोग कम जानते हैं। आपकी ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसा कौन टैलेंट है जो हिडन है और बहुत कम लोग जानते हैं?
1: मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ।
0: आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा विमलेश। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
1: थैंक यू मैम।
2: नमस्कार मैम, मेरा नाम विशाल है।
0: तो ये बताइए कि अगर कभी ऐसी कोई आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या हो सकता है?
2: अगर मेरी लाइफ पे अगर कोई मूवी बनेगी तो होगी हंसी का पिटारा।
0: क्योंकि आपको हंसना हंसाना बहुत पसंद है।
2: हाँ, कह सकते हैं मस्त मौजा बंदा हूँ मैं। अपनी कोई भी फेक पर्सनैलिटी लोगों के सामने नहीं रखता। जैसा मैं अभी हूँ वैसा ही मैं हमेशा रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा ही रहना चाहिए। और अगर एक ऐसा गाना जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो।
2: एक कैलाश खेर जी का एक गाना है माँ, वो जब भी मेरे को लो फील होता है तो मैं हमेशा वही सुनता हूँ। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी।

0: मम्मा।
1: बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद मैम।
1: चलिए, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें, डांस करते रहें, एंजॉय करते रहें। तो
0: धन्यवाद मैम। मेरा नाम गगनदीप है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ।
1: अब मैं एक शब्द बोलूंगी और उस शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आपको वो शब्द बोलना है। कॉलेज,
0: मेमोरीज,
1: दोस्ती,
0: दोस्ती, बॉन्ड,
1: सक्सेस,
0: अचीवमेंट,
1: प्यार,
0: ट्रस्ट,
1: दिल्ली,
0: दिल्ली, एक्सप्लोर, फ्यूचर
1: फ्यूचर।
0: ब्राइट।
1: अच्छा, अगर आपको कभी कोई सुपर पावर मिले तो वो क्या होगी, आप क्या चाहेंगे, आपको क्या सुपर पावर मिलेगी?
0: मुझे लाइक फ्यूचर में जाना
1: थैंक
0: पसंद नहीं हुआ।
1: यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम उदय है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मैं 2nd ईयर में हूँ।
1: अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करना हो
2: सेल्फ ऑब्सेस्ड।
1: तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं?
2: मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मुझे एडिटिंग करने में ज्यादा अच्छा लगता है और मैं उसे अर्न कर पाता हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील होता है।
1: तो इस कॉलेज में आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है?
2: कैंटीन।
1: कैंटीन में सबसे अच्छा क्या मिलता है?
2: सबसे अच्छा मंचूरियन राइस।
1: और दिल्ली की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
2: दिल्ली की वाइब अलग है हर जगह से, मतलब कहीं पे भी चले जाएंगे लेकिन दिल्ली की वाइब अलग होती है। जगह बहुत सारी है घूमने के लिए, अगर आप दिल्ली में आ रहे हो तो आप इतना घूम सकते हो, टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन जगह खत्म नहीं होगी।
1: बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के।
2: थैंक यू मैम।
1: क्या नाम है आपका? दिया। तो आप क्या लिखती हैं, कहानी, कविताएं, किस तरह से? मैं इंटरनेशनल यूज पहले देखती हूँ, फिर उस पे रिसर्च करती हूँ और फिर उस पे खुद से स्क्रिप्ट बनाती हूँ और फिर वीडियो बनाती हूँ। यानी आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं।
3: Yes.
1: कभी जितने भी हमारे यंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रोलिंग का, कि कई बार वो लोग ट्रोलिंग का सामना करते हैं और उसे लेकर बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या आपका कभी सामना हुआ ट्रोलिंग से?
3: हाँ, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी, लेकिन मैं ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर पाती हूँ। मैं बहुत बार ध्यान देने की वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट हुई, मैंने काम अपना छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं हमेशा कुछ लोगों की वजह से मैं मोटिवेट होती रही और मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया।
1: लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक और चैलेंज है और वो चैलेंज है फेक न्यूज का।
3: फेक न्यूज जो आते हैं उसको मैं सुनती हूँ और फिर मैं उसको रिसर्च करती हूँ। कोई भी न्यूज सुनो, आपको पता होता है कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि आपको अगर अगर वो साइट से आपको पता चलते रहेगा तो आपको रिसर्च पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और साइट से आपको खुद भी चेक करना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर व्हाट्सएप पे बहुत सारी न्यूज आती है तो उसको आप रीशेयर रीशेयर बार बार ना करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि वो फेक होता है। तो आपको पहले रिसर्च करना चाहिए कि वो सही है या गलत है, उसके बाद ही आप लोगों के पास उसको शेयर करें।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो भी कुछ हम देखते हैं हम उसे सच मान लेते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों को भला हो, इसलिए हम उसे ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग बंद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
3: ओके मैम, थैंक यू।

0: जी हाँ, लेकिन अच्छी बातों की शेयरिंग जो है ना वो चालू रहनी चाहिए, और अच्छी बातें हम आपसे शेयर करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। यहाँ पर शेयर करते हैं हम यूथ के साथ ना केवल उसकी बातें बल्कि उसकी एस्पिरेशंस, उनके टैलेंट, और उसके साथ साथ जितनी उनकी समझदारी है, जितनी उनके ख्वाब हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, और जो भी वो सोचते हैं वो सब चीज़ें हमें मालूम चलती है कहाँ पर, आखिर सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे इसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच। कॉलेज का सफर आगे जारी रहेगा। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची हैं बीआर अंबेडकर कॉलेज, और वहां से जो भी उन्होंने बातचीत की है वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं रुक रही हूं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आती हूं वापस इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
7: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
7: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। इसमें हर बार हमारे सहयोगी पहुंचते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोनों से ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मजे की बातें। और यूनिवर्सिटी के नज़ारे तो बिल्कुल आपको जो है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो पहुंचाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कितना कुछ जानते हैं ना, अपनी जान पाते हैं इनफैक्ट अपने कॉलेजेस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, कितना छुपा हुआ टैलेंट है जो कि छुपा ही रह जाएगा अगर हम उसे ढूंढने ना जाएं, तो उसको एक मंच ना दें तो। और एक मंच देने की कोशिश जरूर रहती है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची बीआर अंबेडकर कॉलेज 1991 में, जिसकी स्थापना हुई थी और 2016 में इसने अपनी सिल्वर जुबली जो है वो पूरी की है। और उसके बाद 10 साल और बीत गए हैं, बहुत सारा कुछ नया जो है वो होता रहता है हमारे तमाम कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी भी लगातार बदलते हुए टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने आप को नया करती रहती है, अपने आप को इवॉल्व करती रहती है। और इसी इवॉल्यूशन में बहुत सारे नए कोर्सेज भी ऐड होते हैं, न केवल इस कॉलेज में बल्कि तमाम कॉलेजेस जो हैं लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं हमारी अपडेटेड जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। और ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं हमारे टीचर्स। तो चलिए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने बीआर अम्बेडकर कॉलेज के टीचर्स से क्या बातचीत की।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के आज के एपिसोड में मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज और इस कॉलेज के एक टीचर मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद, मैं प्रोफेसर चित्रा रानी हिंदी विभाग से और कल्चरल कन्वीनर भी हूँ अपने कॉलेज।
1: आपके अनुसार एक विद्यार्थी को अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पढ़ाई आप जीवन यापन करने के लिए, नौकरी के लिए करते हो, और ये कल्चरल जो है वो आपको एक इंसान बनाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। ये जो तमाम आज कंप्यूटर की दुनिया है, उस कंप्यूटर की दुनिया में दिल धड़कने के लिए और इंसान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कल्चरल से जुड़ा रहना बहुत जरूरी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
1: एक और टीचर मेरे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं।
3: मैं अनीता श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कन्वीनर काउंसलिंग कमेटी, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज।
1: मैम, आजकल के जो यूथ्स हैं उनमें एग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं चीजों को। इस तरह के इश्यूज क्या आपके सामने भी आते हैं इस कॉलेज में आके?
3: यस, डेफिनेटली हमारे सामने भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में हमने काउंसलिंग कमेटी 2000 में शुरू करी थी, अभी इसको 25 साल हो गए हैं, हमने इसको सेलिब्रेट भी किया। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट हैं जो कि सर्टिफाइड काउंसलर हैं। दे आर पैनल्ड इन आर कॉलेज, अम्बेडकर कॉलेज में दे आर पैनल्ड, और वो डे टू डे अपनी सर्विसेज इन बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। और हमने एक ऑफलाइन काउंसलर भी कर रखा है जिसको कि बच्चे रीच आउट करते हैं। एग्रेसिव प्रॉब्लम्स हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम एडिक्शंस की प्रॉब्लम्स देखते हैं, यहाँ हम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके वो हमारे पास आते हैं और डेफिनेटली दे गेट द सोल्यूशन, उनको सोल्यूशंस मिलते हैं इस बात के।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
1: हाय, आई एम डॉक्टर सुनीता चाकी, आई एम इन द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स राइट नाउ, एंड आई एम ऑल्सो IQAC कोऑर्डिनेटर व्हिच इज अ क्वालिटी एश्योरेंस सेल। आपने कहा कि आप क्वालिटी एश्योरेंस सेल में हैं, हम लोग क्या यहीं से आप क्वालिटी जो मेंटेन होती है, क्या वही कॉलेजेस की नेक रैंकिंग या NRF रैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है?
4: वही चीज है। आप ये मान के चलिए कि जो क्वालिटी एश्योरेंस सेल है वो दो लेवल पे काम कर रहा होता है। एक कि आपके कॉलेज के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स की क्वालिटी है, जो भी आपका स्टूडेंट्स है उनके रिजल्ट का परफॉर्मेंस है, ये सारा काम को एनालाइज करना और उसको एक तरह से स्टोर करना ताकि हम उसको NAC में या एक्रेडिशन में या NIRF में उसको दिखा सके, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस सेल का होता है। हमारा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हम उसको बोलते हैं, तो IQAC का यही काम होता है। हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि NIRF रैंकिंग में अम्बेडकर कॉलेज बहुत जल्द नंबर वन हो।
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच।
5: मैं प्रोफेसर अतुल प्रताप सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में हूँ, हमारा कोर्स रन होता है उसका नाम बी ऑनर सोशल वर्क, मैं उसमें पढ़ाता हूँ।
1: सर, आज नए बच्चे आए हैं और नए बच्चों के लिए क्या कोई नई स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ नया है आज इस बार इस कोर्स में?
5: देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो हर साल कोशिश ये रहती कि बच्चों के लिए कुछ नया

0: टूल्स, कुछ नए टेक्निक्स डिजाइन की जाए जो उनको पढ़ने में और सीखने में आसानी पैदा करे। तो मैं उसके साथ ही पूरे जोश के साथ आया हूँ और मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत रूप से एक किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता।
1: तो इसमें आपका क्या विचार है कि क्या अच्छे अंक सक्सेस की गारंटी लेकर आते हैं या जीवन में जो वैल्यूज हैं उनकी ज्यादा महत्ता होनी चाहिए?
0: देखिए, महत्ता तो वैल्यूज की होनी चाहिए, उसके अलावा जिस भी किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं या जो भी हमारा करियर गोल है उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको जब आप जॉब मार्केट में जाओगे तो आपकी स्किल ही आपके काम आएगी, आपकी डिग्री नहीं आएगी काम।
1: सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: मैं विजेंद्र कुमार प्रोफेसर हूँ और इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में 95 से जो है यहाँ पर मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। और जब ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ तो तभी से जो है मैं इस कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ और आज बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी जो है वो विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं, फिल्मों में, रेडियो में, टेलीविजन में और दूसरे माध्यमों में अच्छा नाम कमा रहे हैं।
1: सर, जब कॉलेज में बच्चा आता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, सर आपके अनुसार जब इस कॉलेज से स्टूडेंट निकलता है तो ऐसी कौन सी सीख है जो उसे अपने साथ लेकर जानी चाहिए?
2: फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी आता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, कॉलेज उन सपनों को पंख देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल सर, आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को शेप करते रहिए और हमें अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे सिटीजन इंडिया के लिए मिलते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज और इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: मेरा नाम सदानंद प्रसाद है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का प्रिंसिपल। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉलेज में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा इक्वालिटी की बात की, हमेशा समानता की बात की, सभी धर्मों सभी वर्गों को इक्वल देखने की बात करते हैं, उनके इतने अच्छे विचार हैं, इतने प्रेरक विचार हैं, उन सभी विचारों को ये कॉलेज किस तरह आगे बढ़ा रहा है?
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ने जब जो संविधान बनाया है उसके अंदर उन्होंने वो सारी चीजें पहले से बता रखी हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी ड्यूटीज हैं हमारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस काम को कैसे करना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हैसियत से इस कॉलेज के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे किसी भी बेस पे हो। हम अपने बच्चों को पहले दिन से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें बता के रखते हैं। पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देखें, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, खास करके जाति धर्म या किसी ऐसे नाम पे।
1: सर, जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, नए स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में जुड़ रहे हैं, आपका परिवार बढ़ रहा है, तो सर नए आने वाले जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
3: हमारे नए स्टूडेंट के लिए तो सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन डे पे उनका स्वागत किया, हमने पहले दिन अपनी आशाएं बताई है छात्रों को कि आपसे हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको कौन कौन सी चीजें हमारे कॉलेज में करनी है, अगले 4 साल आपको इस कॉलेज में बिताने हैं, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, किन टीचरों से मिलना है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी कमिटीज हैं, कहाँ पे हम बहुत बेहतर हैं, कहाँ पे हम पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कॉलेज का जो हमारा लिगेसी है उसको आगे ले जाने के लिए पहले दिन से हम उनको, और वो आगे जब कैसे कैसे कैरिकुलम को लेके जाना है उसमें उनको हमारे से क्या क्या चीजें चाहिए, हमें उनको क्या क्या चीजें देनी है, इन सब चीजों के लिए हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया है।
1: तो आप जानते ही हैं अब जमाना बदल रहा है, जैसी पढ़ाई हम लोगों ने की है, जैसी आपने की, उससे आगे आगे अब जमाना बदल रहा है अब, और इस बदलते हुए दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल्स भी बहुत जरूरी है। तो सर, कॉलेज के क्या प्रयास रहते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह आज के जमाने के लिए ट्रेंड किया जाए?
3: ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। NEP में खास करके जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बिल्कुल एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। अभी हम जितने भी कंपनीज है, कई कंपनियों से हमने अभी MOU किया है, हम अपने बच्चों को एक फील्ड विजिट के लिए मैंडेटरी भेजते हैं, खास करके हमारे यहाँ सोशल वर्क, साइकोलॉजी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अक्सर अपने बच्चों को कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हर वीक लेके जाते हैं, जहाँ पे वो बच्चे जाके सीखते हैं बेसिकली कि क्या चीजें करनी चाहिए, आगे चल के इससे उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी। जब वो यहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो वो उनको पता होता है एग्जैक्टली कि आगे उनको करना क्या है। जो पत्रकारिता के हमारे बच्चे हैं, आप अगर हमारे कॉलेज में देखेंगी तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, कॉलेज की जितनी भी इवेंट्स हैं, सबको वही देख रहे होते हैं। सबसे इंटरव्यू लेना या फोटोग्राफी करना या कॉलेज को जो मीडिया क्षेत्र में जितनी भी जरूरतें होती है, हमारे बच्चे ही उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे होते हैं। जितनी बच्चे इंटर्नशिप के लिए, खास करके जीएमसी, सोशल वर्क और ज्योग्राफी, तीन चार ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इंटर्नशिप के लिए अपने बच्चों को हमेशा लगभग 100% बच्चों को वो इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहाँ सिर्फ जाके बैठ के नहीं आए, वहाँ पे जाके चीजों को देखे, सीखे और आके न सिर्फ अपने को, अपने जूनियर्स को भी बताएं कि ये चीजें हमने सीखी हैं, इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी आगे चल के उनको पता हो कि हमें आगे चल के करना है।
1: जो कॉलेज में रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं?
3: वैसे तो हम पहले से एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ध्यान देते थे, स्टार्टअप्स भी बहुत सारी थी, लेकिन अब जो है एनईपी में ये हमारे लिए मैंडेटरी है, सिलेबस का पार्ट हो चुका है। तो हमारे पास रिसर्च या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप करनी होती है। तो अभी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप पे पिछले बार थोड़े कम बच्चे आए थे, लेकिन उन बच्चों में से ही जो एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन लगा था, तो हमें प्राउडली फील होता है कि हमारे कुछ बच्चों ने वहाँ पे अवार्ड जीता।
1: तो ओरिएंटेशन था, नए बच्चे आए हैं, तो क्या कॉलेज किस तरह से तैयार है नए स्टूडेंट्स के लिए?
3: कॉलेज में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी, जो हमने पिछले एक दो साल के अंदर में काफी चीजें करी हैं। कुछ क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई है, कुछ क्लासरूम को स्मार्ट रूम बनाने की तैयारी करी है, लैब्स में जो इक्विपमेंट्स नहीं थे वो सारी चीजें नई लेके आए हैं, नए नए लैब्स बनाए हैं। हमारे बच्चे लाइब्रेरी में जाएं, उनको वहां पे बैठने की सुविधा हो, पहले कुछ चीजें ऐसी नहीं लगे थे वो सब लगा दी हमने, ताकि बच्चे वहां बैठ के पढ़े। फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए अभी भी हमने स्टॉल लगाया था, जिसमें हमारे कॉलेज क्या क्या करता है, कैसे कैसे सोसाइटीज है, उसके बारे में हमने बताया। पहले दिन से हम कोशिश करेंगे कि जो टैलेंटेड बच्चे हों वो पहले दिन से जुड़े और जब कॉलेज से जाएं तो कॉलेज के नाम बहुत सारे मेडल्स के लिए हमारे लिए देखे।
1: बिल्कुल सर, हमारे भी यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका कॉलेज हमेशा नंबर वन रहे। लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो आज आपके कॉलेज में आए हैं?
3: हमारे लिए है कि इस कॉलेज के डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपनी एकेडमिक्स जिस फोकस के लिए आए हैं उस पर पूरा फोकस करें, संवेदनशील इंसान बने। जब यहाँ से निकल के जाए तो अभी हमारे पास एक छात्र आए हैं, कच्चा घड़ा आप कह सकती हैं, जब यहाँ से जाएं असली जिंदगी की शुरुआत उनकी वहां से होगी। तो हम उसको इस लायक करना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से जाएं तो अपने आप को एक सक्षम महसूस करें, उनको लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, रेस्ट उन पे निर्भर करता है कि वो क्या चीजें चुनते हैं।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली और बहुत जल्द अम्बेडकर कॉलेज नंबर वन कॉलेज कहलाए, यही हमारी शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। अभी आपने सुना हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा को, जो पहुंची बीआर अंबेडकर कॉलेज, वहां पे उन्होंने की बहुत सारी बातचीत हमारे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर के साथ में। और एक विजन जो है ना वो उभरता है इन सारी बातचीत से कि आखिर हमारा आगे आने वाला जो यूथ है वो क्या सोचता है, वो किस तरह से अपने आगे आने वाली जिंदगी से लड़ने को, जूझने को तैयार है या नहीं है, या क्या उसके इंटरेस्ट है, क्योंकि बदलती हुई जनरेशन जो है ना अपने साथ और भी बहुत कुछ बदलती है एंड ऑब्वियसली जमाना तो आगे बदलना ही होता है। फिलहाल इसी के साथ में आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समेटना चाहती हूँ। प्रोग्राम जो है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग हर वेंसडे 4 से 5 बजे के बीच पहुंचता है आप सभी तक सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो के जरिए। फिलहाल आज का कार्यक्रम था बस यहीं तक, स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। समय है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह किया। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। नई दिल्ली की आकाशवाणी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विशालकाय हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहा है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदाराव को हराकर पहली जीत दर्ज की। ये थे अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: मराठी वाणी आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। समय हो चुका है कार्यक्रम सिटी लाइट्स का। मैं हूं मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और आप की हूं सबसे बड़ी फैन। दोस्तों, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? सब आ गए हैं, एकत्रित हो गए हैं या कोई छूट गया है? क्योंकि बस अब सायरन बजने ही लगा है। जल्दी से आ जाइए, नहीं तो ये नाव, ये कश्ती निकल जाएगी।

ऐसी ही ऊर्जा, इसी तरह की सोच और ऐसी रचनात्मकता और बदलाव की क्षमता को पहचानने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिन युवाओं के जो ग्लोबल मुद्दे हैं उन पर अवेयरनेस बढ़ाने, उनकी सोशल, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन को मोटिवेट करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन बहुत जरूरी है बहुत सी बातों को लेकर, इनकी उपलब्धियों को पहचानना, उसके साथ साथ ये किन चुनौतियों को फेस कर रहे हैं उन पर चर्चा करने का भी ये दिन है। ये दिन समाज को याद दिलाता है कि युवा केवल जनसंख्या का एक वर्ग नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तो दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस ऑफ कोर्स। और फिर हर साल एक थीम होती है और इस बार की थीम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी कि विभिन्न संदर्भ और समान आकांक्षाएं। क्योंकि ये बात तो सही है कि दुनिया भर के जो युवा है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है और इसी वजह से उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से नीतियां, उनके हिसाब से प्लानिंग की जाए। और इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी अधिकतर युवाओं के सपने, उनके लक्ष्य, उनकी ज़रूरतें एक जैसी ही है, जैसे बेहतर शिक्षा, अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य और एक सुरक्षित भविष्य। इस ऊर्जा को, उनकी जो विजन है उसको कैसे भी स्थिति में कर जाना, इस भाव को हम सलाम करते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बात तो सोलह आने सच है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, न जाने ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मोहब्बत हो गई है, इश्क फिर से सर चढ़कर बोल रहा है। जब कभी भी उसको देखती हूँ ना, न जाने एक अपनापन, एक कॉन्फिडेंस मेरा है ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है, और जब वो हवा में लहराता है ना, मैं बता नहीं सकती इस मन में कैसे कैसे विचार, कैसी एनर्जी का मैं यू नो फीलिंग महसूस करती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे तिरंगे की, झंडे की। हर घर तिरंगा, ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, जिसे शुरू किया गया था। इसकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खासियत ये है कि इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है, और 2026 में देश वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। और ऐसे में अगर हमारे घर पर हमारा तिरंगा लहराए और फिर उसके साथ हमारी एक सेल्फी हो जाए तो क्या ही बात हो। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन जरा रुकिए, थमिए थमिए, माना कि इश्क हो रहा है, माना कि एक बार फिर से मोहब्बत है आपको मुझको, तिरंगे से कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा मने बहुत बहुत बहुत ज्यादा। जी हाँ, ध्यान रखें, जो तिरंगा आप लहरा रहे हैं वो फटा हुआ नहीं है, गंदा नहीं है, एकदम साफ सुथरा और बराबर नाप का, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। सही कपड़े का, सही आकार का, सही रंगों के चयन का, ऐसा ना हो कि रंग ऊपर नीचे हो जाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर रात में भी आपकी छत पर तिरंगा लहरा रहा है तो एक भीनी सी धीमी सी प्यारी सी रोशनी उस पर जरूर हो, ताकि जब भी हवा का झोंका उसको छुए तो उसका जो अशोक चक्र है वो साफ साफ नजर आए, दिखाई दे, उसका स्वरूप हमें एक बार फिर से अपने आगोश में ले ले। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, रखेंगे ना, क्योंकि

15 अगस्त बस आ ही गई और अब आ ही गई है तो ड्रेस रिहर्सल भी होने ही वाला है। जी हाँ, कल का दिन है ड्रेस रिहर्सल का, इट्स अ फुल ड्रेस रिहर्सल, इसलिए थोड़े से ट्रैफिक में डायवर्जन्स होंगे, चेंजेस होंगे, कहीं कहीं कुछ रोक होगी, आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक पर रोक लगाई गई है जगह जगह पर, तो बहुत ध्यान रखना है कि कैसे आप इन रास्तों पर जाने से बचे ताकि आपका समय बच सके और आपने जहां भी पहुंचना है आप समय से वहां पहुंच जाए। जैसे दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक लुटियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक और एसपी मुखर्जी मार्ग, फवारा चौक से लाल किला तक चांदनी चौक और रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग, इस तरह के इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों एक बात और है, स्वतंत्रता समारोह को लेकर दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने लाल किला के आसपास की सड़कों पर मेगा ट्रैफिक जो प्लान तैयार किया है उसके तहत आज रात से कल 13 अगस्त सुबह 10 बजे तक, यानी कि 12 अगस्त की रात 12 बजे से और 13 अगस्त सुबह 10 बजे तक कई मेन रोड्स पर इंटरसिटी और डीटीसी बसेस की आवाजाही बंद रहेगी। जैसे लाल किला, जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बसों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप इन रास्तों पर से अगर आपको जाना है तो कैसे जाना है और किस तरह का रूट लेना है, ये ट्रैफिक एडवाइजरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक और बात, उसके आसपास पतंग उड़ाने का भी प्रतिबंध लग गया है, यानी कि लाल किला के आसपास के इलाकों में पतंग नहीं उड़ाई जा सकती और ये प्रतिबंध 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। वहीं पूरी दिल्ली में ड्रोन के साथ साथ मानव रहित विमान आदि से भी उड़ान पर 2 अगस्त से तो प्रतिबंध चल ही रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट, बी केयरफुल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: एफएम रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स और मैं हूँ मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूँ अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। वेल, इस बार तो आप फैन हो जाएंगे एक और चीज के, वैसे तो हर साल होते हैं लेकिन इस बार थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, और वो ये है कि लाल किले पर आजादी का जश्न सिर्फ तिरंगे के रंग में ही नहीं बल्कि देश की झीलों के नाम से भी सजेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों के बैठने की जगह देश की प्रमुख झीलों के नाम से पहचानी जाएगी। लाल किले पर पहली बार होने जा रही इस खास पहल के जरिए दिया जाएगा जल संरक्षण का संदेश। ऐसा है कि साउथ साइड में 13 और नॉर्थ साइड में 12 झीलों के नाम से मेहमानों के बैठने की जो जगह है वो दिए जाएंगे।

0: सही बात है, कला का कोई भी फॉर्म हो हमारा मन यही कहता है कि प्लीज हमसे दूर ना जा। तो दोस्तों बता दूं, आज शाम आप 7:30 बजे जा सकते हैं स्टाइन ऑडिटोरियम सुनने के लिए एन इवनिंग ऑफ रविंद्र संगीत, और ये होगा इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7:30 बजे। एग्जीबिशन के लिए आप जा सकते हैं आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्स ए आर्ट गैलरी, 11 बजे से शाम 7 बजे तक वहां पर एग्जीबिशन है अंदरूनी सरहदें, इसे आप देख सकते हैं 13 अगस्त तक। फायर एंड फॉर्म सेरेमिक स्टोन वेयर, ये एग्जीबिशन है श्रीधरनी गैलरी में, जिसे देख सकते हैं आप 11 से 18 अगस्त तक। ये तो बातें हुई आज की, लेकिन कल का क्या? ऑफकोर्स कल भी हम बताएंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन जब कुछ खास प्रोग्राम होता है तो हम आपको एक दिन पहले ही उसके बारे में बता देते हैं ताकि आप अपनी कुछ तैयारी कर लें। और यहाँ हमारी तैयारी थोड़ी ज्यादा ही है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी कोई है। हेलो
1: हेलो,
0: जया प्रभा जी स्वागत है आपका आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
1: थैंक यू सो मच, नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपकी आवाज में जो ऊर्जा है ना, वो मुझे बता रही है कि आप कुछ बहुत स्पेशल ऑर्गेनाइज करने वाली हैं।

0: जी जी जी जी हमारा इस इंटरनेशनल एकेडमी मोहिनीअट्टम मेरा जो इंस्टीट्यूशन है हमारा 16 इयर्स का सेलिब्रेशन है और ये नृत्य उत्सव 2026 की बार से हम शुरुआत कर रहे हैं इस बार.
1: क्या बात है.
0: हमारा 4 दिन का परफॉर्मेंसेस है.
1: ओके, आपने कहा इस बार
0: जी.
1: और फिर आपने कहा कि ये 16वां है
0: जी.
1: तो ये तो भाई 16वां सावन हुआ, तो बाकी जो दूसरे सावन गए उनमें आपने क्या किया और इस बार उन सब से क्या खास और क्या अलग है.
0: जी जी जी बहुत अलग है बिकॉज अभी 16वां साल एवरी हमारा बायनियल सेलिब्रेशन होता है
1: जी.
0: तो हर साल हम जब फेस्टिवल करते हैं 3 दिन का करते हैं. एक दिन का मोहिनीअट्टम ग्रुप होता है, दूसरा मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम ग्रुप होते हैं और एक दिन का भरतनाट्यम सोलो होता है.
1: ओके,
0: इस बार हमारा एक दिन का मोहिनीअट्टम सोलो है, मोहिनीअट्टम ग्रुप है, भरतनाट्यम ग्रुप है और हमारा प्रोडक्शन बोल के सीता उवाजा रामायण के ऊपर एक प्रोडक्शन है. तो इस बार की क्या सविशेषता है कि पिछली बार हमने जो सोलो परफॉर्मेंसेस बच्चों का किया था मोहिनीअट्टम में, उसमें यंग बच्चों ने यानी युवा कलाकार ने प्रस्तुति दी थी.
1: अच्छा.
0: इस बार हमारा प्रस्तुति में 14 साल के भी बच्चे हैं, 55 साल के भी बच्चे हैं.
1: क्या बात है.
0: तो ये सोलो परफॉर्मेंस की रेंज है और मैं इतना अच्छा भी फील कर रहे हैं कि हमारी जो भी बच्चे छोटे बड़े हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड देयर कमिटमेंट्स, वो अपनी पैशन को जिंदा रख के आर्ट को अपनाया है.
1: तो आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर.
0: जस्ट अ नंबर, एब्सोल्युटली.
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत. जो हमारी नई पीढ़ी कला से जुड़ना चाहती है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे.
0: मैं ये बोलूंगी कला किसी भी तरह का हो छोड़ो मत, कोई भी अपॉर्चुनिटी अवसर मिलते उसको जल्दी से अपनाना. यानी कला ऐसी एक चीज है जो अपने आप को अंदर को और बाहर से सुधार करता है, डिसिप्लिन लाता है अपने को, मन को शांति देता है, माइंड बॉडी डिसिप्लिन मेंटल हेल्थ. आजकल इतना हम सुनते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो ये आपको मेंटल हेल्थ की पीस, डिसिप्लिन, ऊर्जा, सब कुछ देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर डेवलप करते. वही तो खूबसूरत है, खासियत है हमारे इंडियन शास्त्रीय नृत्य और संगीत की. वो हमें एकदम डिसिप्लिन और ऊर्जल सब व्यक्ति बना देते हैं.
1: जी जी. तो यानी कि कला इज अ कंप्लीट पैकेज.
0: एब्सोल्युटली.
1: फॉर अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ.
0: करेक्ट, एब्सोल्युटली. वो तो एकदम छोटे से जैसे आप शुरू करते हैं उतना अच्छा है, आपकी जिंदगी एकदम से अच्छे से जाएगा, अपनी ग्राफ बहुत अच्छा होगा और हर लेवल पे हर चीज में आप आपका ऊर्जा भी बना रखे, अब आगे जाने की बहुत एंथुसियाज्म, सब कुछ आपका माइंड सब शार्प रहता है.
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी.
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए कल हमारा नृत्योत्सव में भाग लीजिए और एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है. कल से शुरू है 13, 14, 15, 16 4 दिन का हमारा प्रस्तुति है. कार्तियानी ऑडिटोरियम मयूर विहार फेस ऑन उत्तर गुरुवारपन टेम्पल के पीछे जो ऑडिटोरियम है, आइए, आपको सबको स्वागत है. बिल्कुल फ्री एंट्री है, आप निश्चिंत संतोष पूर्वक आइए.
1: क्या बात है. आपको इस प्रस्तुति के लिए, इस नृत्य उत्सव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई.
0: थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच.
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी. तो दोस्तों कल आपको पता है कि कहाँ जाना है. एक बार आपको फिर से बता दूं, नृत्य उत्सव 2026 13, 14, 15 और 16 अगस्त को एक कार्यक्रम होने वाला है कार्थियानी सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्स पॉकेट 3 मयूर विहार. ना जाने क्यों मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि आज हवाओं में कुछ तो खास है.

युवा की एनर्जी बेजोड़ है और इसका मुकाबला सिर्फ युवा ही कर सकती है। अब देखिए केले का छिलका, जिसे अक्सर इनफैक्ट ऑलवेज हम ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं खाने के बाद, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक साल की रिसर्च और मेहनत मशक्कत के बाद केले के छिलकों से बना दिया है वीगन लेदर और इसका नाम दिया है सहर। और इसी के चलते पीटा से इंडिया का यूथ चेंज मेकर्स फॉर एनिमल्स का इन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल, बची हुई रोटी और बिरयानी से बना दी कलाकृति और एक क्राइम वॉल पर फूड वेस्ट की तस्वीरें केस फाइल की तरह लगा दी। और उद्देश्य क्या था कि प्लेट में खाना छोड़ना असल में प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग है और इट इज इक्विवेलेंट टू अ क्राइम। और ये काम किया है एक यंग विजुअल आर्टिस्ट सौरभ चौहान ने और आर्किटेक्ट सुमेश मेनन ने अपनी मुंबई में एग्जीबिशन अबंडेंस और एब्सेंस में। तो दोस्तों सही बात है ना कि युवा शक्ति देश की रीढ़ और भविष्य की असली ताकत है। रंगों से नहीं अपने हौसलों से तस्वीर बदलते हैं, ये युवा ही है जो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हमारी हर बात पर हर चीज पर खलबली मचा देती है। जिंदगी में विचारों में सोच में अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व में विजन में एम में, जी हाँ, और वो है किताबें। किताबों का घर यानी लाइब्रेरी। और जानते हैं दोस्तों, यहाँ हिंदुस्तान में हम 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती है। जी दोस्तों, लाइब्रेरियन के काम को सम्मान करना और समाज में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना ही उद्देश्य है आज के दिवस का। और ऐसी क्या खास बात थी रंगनाथन साहब में कि हम उनकी जयंती को इस रूप में मनाते हैं? एक तो उन्हें पुस्तकालय साइंस का जनक कहा गया है। उन्होंने कुछ ऐसे लाइब्रेरी के 5 नियम दिए जिसने लाइब्रेरी सभी के लिए बहुत ही आसान, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बना दिया। उन्होंने कहा सबसे पहला कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, फिर कि प्रत्येक पढ़ने वाले को उसकी पुस्तक उसे मिले, फिर हर पुस्तक को उसका रीडर उसका पाठक मिले, पाठक की समय की बचत हो और पुस्तकालय एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन हो। जी दोस्तों, है ना कमाल की बातें। और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो खलबली हम सबके जीवन में आनी चाहिए किताबों से, इस किताबों में रखे गए विचारों से। और इन्हीं के साथ आशा करती हूँ कि आपकी आज की शाम में भी थोड़ी सी खलबली आएगी और आप भी किसी लाइब्रेरी में जाके उसका मेंबर बनेंगे या कोई ना कोई किताब तो आज आप घर लाएंगे ही। इसी के साथ मैं मीना जैन लेती हूँ आपसे इजाजत। हैव अ ग्रेट इवनिंग। गुड बाय फ्रेंड्स।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू। सरकार ने बताया, राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। नई दिल्ली के आकाशवाणी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और खेलों में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जाओखिर सिंदारो को हराकर पहली जीत दर्ज की। ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूँ आपकी दोस्त भगवती। और चलिए आज ना हम बात कर लेते हैं किताबों की, लाइब्रेरी की, और उन खूबसूरत यादों की जो शायद किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि हमारे दिल में दर्ज हैं। याद कीजिए स्कूल की वो लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू, लकड़ी की अलमारियाँ, लाइब्रेरियन की वो प्यार भरी डांट, लाइब्रेरी में शांति रखिए और दोस्तों के साथ चुपके चुपके अपनी पसंद की किताब ढूंढना। कभी कोई किताब हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाती थी, तो कभी किसी कहानी का कोई किरदार ऐसा बन जाता था जैसे कि वो हमारा अपना दोस्त हो। तो आज हम जानना चाहते हैं आपसे, किसी लाइब्रेरी या किसी किताब से जुड़ी आपकी कोई ऐसी याद जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। हो सकता है वो आपकी स्कूल लाइब्रेरी की कोई शरारत हो, किसी किताब को पहली बार पढ़ने का अनुभव हो, या फिर किसी ऐसी किताब की याद हो जिसने आपकी सोच ही बदल दी हो। तो अपनी यादों के पन्ने जरा पलटिए ना और मैसेज मसाला मिक्स के साथ शेयर कीजिए अपनी वो प्यारी सी किताबी याद। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर जिस पर कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हमें इंतजार कर रहे हैं हम आपके संदेशों का,

हितेंद्र दास असम से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैं सोच रही थी गुड इवनिंग के अलावा भी कुछ कहीं तो है छुपा हुआ जो मुझे नहीं मिल पाया, तो अब भेजिए ना अगले मैसेज में। सौरभ अनुजा गाजियाबाद से कह रहे हैं गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक, गुड इवनिंग टू यू टू, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैसेज मसाला मिक्स में। अनिल शर्मा जी सरिता विहार से कहते हैं, शिकायत से शुरू करूंगा क्योंकि पिछली बार तुमने पूरे MMM प्रोग्राम में जो है मेरा संदेश शामिल नहीं किया, तो इसलिए आज जो है मैं विरोध करने के लिए जो आज का टॉपिक है लाइब्रेरी किताब उस पर कोई संदेश नहीं भेजूंगा पर प्रोग्राम को पूरा सुनूंगा। देखिए आपने ना जरूर मिस कर दिया होगा सुनना, ऐसा हो ही नहीं सकता सर आपका मैसेज आए और भगवती ना पढ़े। ये मैसेज है अकोला महाराष्ट्र से विजेंद्र जी का, कहते हैं कि मैं भी किताबें लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, तो उन किताबों से जुड़ी, उस लाइब्रेरी से जुड़ी, किसी लाइब्रेरी से जुड़ी कोई याद है जो आप सबके साथ साझा करना चाहें तो भेजिए ना हमें। यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं भगवती, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स।

किशनवंजनी नीलम स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से कह रहे हैं कि भाई हम भी शामिल हो गए हैं तो हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाना तो ठीक है ना, पर जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि किसी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई आपकी कोई याद हो, किसी बुक को पढ़ने की कोई याद हो, कोई कैरेक्टर बहुत पसंद आया हो, उससे कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, जो याद रह गया हो, जो दिमाग में रच पस गया हो और जिसके बारे में आज भी सोचते हो ना तो कुछ एक मुस्कुराहट सी खेल जाती हो होंठों पर, उसके बारे में बताइए, वो बात हमारे साथ शेयर करिए। 9868107070 है नंबर, 9868107070 है नंबर, जहां पर आप अपने दिल की बात भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और दिल की बात जुड़ी हुई होनी चाहिए किसी बुक से या किसी लाइब्रेरी से। गुनौर से आदल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं कि जब से मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास पढ़ने शुरू किए मुझे बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली थी, तो कोई एक बात हमारे साथ शेयर कर दीजिए जो आपको सीखने को मिली थी ताकि हमारे सारे लिसनर्स और हम भी जो है वो अच्छी बात सीख पाए। मनीष इदरीसी रामपुर बिलासपुर से कहते हैं, हेलो जी, ये मैसेज है सोनू का बिश्नौर से, कहते हैं गुड इवनिंग जी, कहते हैं कि स्कूल टाइम में कभी ऐसा वक्त नहीं मिला जो हम लाइब्रेरी में जाएं और कुछ अनुभव ले पाएं, पर हाँ शादी के 8 साल के बाद मुझे एक दोस्त के द्वारा मौका मिला लाइब्रेरी में जाने का, और जैसे ही लाइब्रेरी में एंट्री हुई चाणक्य जी की किताब पर नज़र पड़ी और जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो कुछ शब्द ऐसे थे जो दिल में जगह बना गए और आज भी जो है वो चीज़ मुझे याद आती है और हर वक्त जो है महसूस भी करता हूँ। बड़ी गज़ब की किताब है और मैं जो है अब भी उसे बहुत मिस करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था उस किताब में। किताबों की बात ही ऐसी होती है ना कि उनमें जो भी बताया गया होता है ना, अगर उसे ध्यान से पढ़ा जाए और अगर उसे बताई गई चीज़ जो है वो एक बार दिल में उतर जाए ना तो फिर वहीं रच बस के रह जाती है। गुड इवनिंग कह रहे हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग जी, कहते हैं कि मैं 2004 में जो है बीकॉम पार्ट में था और हमारे कॉलेज जो है वो 12 बजे शुरू होता था, कॉलेज शहर में था इसलिए घर से जल्दी जाना पड़ता था और कॉलेज जाने के बाद अक्सर मैं कॉलेज की लाइब्रेरी जाकर किताब पढ़ता था, लेकिन दोस्त आके जो है बातें शुरू कर देते थे, तब लाइब्रेरी वाले शांत रहने को कहते थे और चुपचाप जो है हम किताब पढ़कर कुछ समय बाद लाइब्रेरी से जो है बाहर आ जाते थे।

0: बड़ी है
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला, मिक्स साथ है आपका और भगवती का। और आज हम जानना चाह रहे हैं आपसे, किसी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई आपकी कोई याद, किसी बुक से जुड़ी हुई कोई याद जिसे याद करते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती हो, वो शेयर करनी है आपको हमारे साथ। और नंबर है 9868107070 9868107070।

प्रगति राज पटना से कहती हैं कि मैं क्लास 7 में थी तो मेरी एक बुक थी हिंदी की जिसका नाम था किसले, और बुक में जो है कविता थी मानव बनो, और उस कविता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक मानव का क्या कर्तव्य होता है और हर मुश्किल से जो है किस तरह से उसे सामना करना चाहिए, मुश्किल का मतलब सामना किस तरह से करना है कह रही हैं, तो ये मुझे सीखने को मिला। और हमारा ज़रूर कोई लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, ये भी मैंने सीखा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी। यही तो बात है ना किताबों की, ये कविताओं की, जिनसे हमें बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस हमें सीखने के लिए जो है थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए, रेडी होना चाहिए। दीपा बिश्नौर से कहती हैं कि हमारे घर में ज़्यादा नहीं मैं पढ़ी, और मेरे पति सोनू जो है मुझे कभी भी, उन्होंने मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया और जैसा मुझे अपने घर में होता था, जैसा घर में होता है। कहते हैं कि भगवद गीता और चाणक्य जी की बातों को वो हमेशा शाम को जो है बच्चों को और मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए ये तो फिर मतलब वही हो गया ना कि आप लाइब्रेरी के साथ ही बैठे हैं, आप किसी किताब के साथ बैठे हैं। और नेक्स्ट मैसेज, ओके, मैसेज में कुछ नहीं लिखा है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से हैं, कह रहे हैं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो फिर प्रोग्राम में जो कहा जा रहा है उसे भी तो फॉलो करिए ना, जो पूछा जा रहा है वो भी तो बताइए ना। ये हैं प्रेरणा, और कह रही हैं मयूर विहार से हैं, दिल्ली से, कहते हैं कि मुझे दो किताब जो है बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, मैंने एक बुक इशू करवा ली थी लेकिन मैं चाहती थी मेरे पीछे से दूसरी जो है कोई इशू ना करा ले, तो इसलिए मैंने दूसरी जगह पर उसे छुपा के रख दिया था। दो दिन बाद मैं दोबारा लाइब्रेरी पे गई और वहाँ से जो है मैंने उसे निकाल कर इशू करवा लिया। ये तो बड़ी वो ट्रिक है ना, ये ऐसा मैंने भी कई बार किया है। और कहती हैं कि इन्हें चंदा मामा जो है ये बहुत पढ़ती थी बचपन में, हम लोगों की सभी की मतलब ना एक टाइम पर था चंदा मामा, और ये बुक्स जो है काफ़ी फेवरेट रही थी एक एज में, हर एक मतलब एज के साथ साथ ना हमारा बुक्स का टेस्ट भी बदलता जाता है। कभी हमें जो है इस तरह की किताबें अच्छी लगती हैं जिनमें छोटी छोटी कहानियाँ हों, और फिर थोड़े टाइम के बाद जो है कभी हमें डिटेक्टिव नॉवल्स पसंद आने लगती हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद आने लगती हैं, कभी रोमांटिक बुक्स अच्छी लगती हैं, कभी कुछ जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो भाने लगती हैं। तो एक दौर सा चलता है जब मतलब कि लाइफ में जैसे जैसी चीज़ें आ रही होती हैं, जो कुछ हो रहा होता है उसके हिसाब से जो है हमारा टेस्ट, हमारी चॉइस जो है बुक्स के बारे में वो बदलती जाती है ना। सौरभ गुप्ता हैं फरीदाबाद से, कहते हैं हम लोग कॉलेज के एग्जाम के दिनों में लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में 5-6 दोस्त मिलकर स्टडी करते थे, लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं लेकिन दिसंबर के उन दिनों में लाइब्रेरी के बाहर वो आधी प्लेट मैगी और एक कप गर्म टोमेटो सूप आज भी याद आते हैं। मतलब आई कैन टोटली कनेक्ट। ऐसी चीजों का मजा, स्वाद, वो फ्लेवर वो कभी नहीं भूलता है।

राजेश शर्मा जी फरमाते हैं आई लव यू भगवती, लव यू टू जी, कहते हैं कि आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, क्या करें ऐसा ही है, लेकिन इस आवाज़ में जो दरख्वास्त की जा रही है उस पर भी तो गौर फरमाइए ना थोड़ा। कहते हैं जावेद आलम मोहम्मद जायान रुखसार जयपुर से, आई होप मैंने नाम करेक्ट पढ़ा हो, कहते हैं मैं जब 2 या 3 में था तो मैंने किताब पढ़ी थी हिंदी एक पार्ट, उसमें था कद्दू जी की चली बारात। ओके जी, कहते हैं फिर आगे शायद उसके बाराती सारे लिखे हैं उन्होंने, लौकी आलू बैंगन भिंडी तोरी थे सब बाराती। कहते हैं एक और पार्ट 5 जो थी वो थी चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। और उसके बाद आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं उनके बारे में तो बताइए ना थोड़ा। सुमन कुमार जिला बांका बिहार विलेज किरीडी से कहते हैं हम लोग ग्रामीण इलाके से, हम लोग के गांव में लाइब्रेरी नहीं है किंतु मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और प्रोग्राम भी पसंद आ रहे हैं। कहते हैं इसे सुनते हुए मैं रोज़ जो है इस समय मैथ्स करता हूँ और मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ें। मैसेज आपका पढ़ दिया जी हमने और ऐसा है मैथ से मेरा भी जो है बड़ा ज़बरदस्त वाला कनेक्शन है। ये है प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से, कहते हैं हम लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी जाना जो है, वहाँ अच्छी अच्छी खबरें पढ़ने को मिलती हैं और जानकारी मिलती है। और साथ में कहते हैं कि खबरें तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमें अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं और उनसे जो है अच्छी तरह से बातें होती हैं और मज़ा आता है, मन को शांति मिलती है।

नेहा नोएडा से कहती है, मेरी सबसे प्यारी लाइब्रेरी की याद स्कूल की है। लंच ब्रेक में मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी चली जाती थी, पढ़ाई कम और हम एक दूसरे को किताबों के नाम देखकर जो है हंसाना ज्यादा होता था। आज भी लाइब्रेरी की खुशबू मुझे स्कूल के दिनों में वापस ले जाती है। बिल्कुल, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाती है उम्र ना जैसे कुछ साल पीछे चली जाती है।

राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं कि आपकी बातचीत, गीत संगीत सब कुछ बहुत अच्छा है और आज इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी है। जी बिल्कुल, एलिफेंट डे है इंटरनेशनल आज। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास किन का है, कहाँ से है, या भुवनेश हैं अशोक विहार दिल्ली से, कहते हैं कि When I was in school, कहते हैं कि मैं एक हॉरर कोई स्टोरी पढ़ रहा था किसी किताब में लाइब्रेरी में, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं उसे लेकर चला गया वहाँ से, और मैंने उसे जल्दी लौटाया भी नहीं, तब तक नहीं लौटाया जब तक कि पूरी जो वो हॉरर स्टोरी थी उसे पढ़ नहीं लिया, और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग थी तो मैं उसे पढ़ता रहा। मतलब जो कहानी ना अगर आपको पसंद आ जाए, हॉरर ही क्यों, कोई भी तरह की कहानी, कोई भी तरह की किताब पसंद आ जाए ना, तो फिर एक बार पसंद आ गई तो बस फिर उसे जब तक पूरा ना कर लेना, उसे छोड़ने का मन कहाँ करता है। प्रगति राज हैं, कहती हैं कि मैं अपने स्कूल में कभी कभी जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी से जो है बुक लेती

0: हूँ, और ब्रेल में बुक पढ़ने का तो अलग ही मज़ा है, क्योंकि मैं जो है देख नहीं पाती हूँ, तो मैं ब्रेल लिपि में पढ़ती हूँ बुक्स को, और उसका एक अलग आनंद होता है। और कहानियों में जो है हम इधर उधर इधर इधर से जो है खो से जाते हैं, और कहानियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि आप जो है किताबें पढ़ रही हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं, उन्हें इंजॉय कर रही हैं पढ़ना। शैलजा फ्रॉम नीमराना कहती हैं कि 1987 की बात है, कहती है व्हेन आई वाज इन सेवन स्टैंडर्ड, कोई दादाजी थे, उन्होंने अपने घर के आंगन में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी ओपन करी हुई थी, और मैं जो है इतना मतलब रोज़ जो है वहाँ जाने की आदी हो गई थी, रोज़ वहाँ जाती थी, वहाँ जाकर जो है शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स जो है पढ़ती थी, और कुछ और बुक्स भी पढ़ती थी। 1 रुपया वो चार्ज करते थे, और उससे जो है बहुत सारी मैं नॉलेज जो है मैंने गेन की, और इवन आज भी जो है मुझे वो सब बातें याद हैं, और उस जगह को मैं बहुत याद करती हूँ। कुछ जगहों से हमारा कनेक्शन सा बन जाता है ना, क्योंकि जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, जहाँ पे हमारी अच्छी अच्छी यादें बन जाएं, तो उनसे ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन हो जाता है। ये हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार कहते हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें जो है लाइब्रेरी की बात हो रही है, और कहते हैं कि लाइब्रेरी की बात याद आती है हम जाते थे लाइब्रेरी, मैगजीन्स की याद आती है, और पुरानी मैगजीन्स के जैसे कि फिल्मी गलियां, फिल्मी दुनिया के लिए जो है पत्र लिखते थे, और पत्रों का ज़माना हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है मेल का ज़माना है, व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं उसका ज़माना है, तो वो समय याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि थैंक यू जी, आपने जो है मैसेज किया और हमारे साथ अपने दिल की बात शेयर की।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो

0: मोहम्मद इम्तियाज हैं जवाहर कैम कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, कहते हैं वैसे तो मैं सिर्फ जो है 10th तक स्कूल की मैंने पढ़ाई की है और मुझे किताबें पढ़ने का शौक बहुत था और आज भी मैं किताबें देखता हूँ और मैंने दिल्ली लाइब्रेरी का कार्ड भी बनवा रखा था। एक बार चलती फिरती लाइब्रेरी जो बस में होती थी उसमें भी एक घंटा बिताया। और एक बार की बात है, मैं ट्रेन से कोलकाता जा रहा था, मेरी बुक भारत भ्रमण थी, वो किसी ने चुरा ली। दैट्स सो सैड, कितनी गलत बात है ना किसी की किताब चुराना। मुझे हर तरह की बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी शांतिनगर सोनीपत से और सिमरन मुखी भी हैं साथ में, कहते हैं कि हम कॉलेज के टाइम में लाइब्रेरी में और बाहर की लाइब्रेरी में भी, कॉलेज के बाहर की लाइब्रेरी कहना चाह रहे हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स जो है पढ़ना पसंद करते थे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है, किनका है, कहाँ से है, हर्षवर्धन है मध्य प्रदेश से, कहते हैं कि आज का टॉपिक लाइब्रेरी से संबंधित घटना से है। जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी से शेक्सपियर के नाटक और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पढ़ी थी, जो मेरे बीते हुए बचपन की जो है यादों में शामिल है कहना चाह रहे हैं। और लोगों से भी जो हम कहना चाहेंगे कि कुछ बात लाइब्रेरी से जुड़ी हुई, किसी बुक से जुड़ी हुई, तो हमारे साथ शेयर करिए। बहुत कम टाइम रह गया और बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी हैं हमारे पास, कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस ले पाए।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, मेरे यानी भगवती के साथ।

रवि जोशी मेरठ से कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की कर्म योग जो है पुस्तक बहुत प्रभावित करती है, जिसमें उन्होंने कर्म एक योग कहा है, कर्म को योग कहा है।

अनिल शर्मा सरिता विहार से कह रहे हैं, थैंक यू जी, मैसेज किया ना आखिर आपने, रोक नहीं पाए खुद को और मुझे भी इंतजार था आपके मैसेज का. कहते हैं बात जो है पुरानी है, ग्वालियर कॉलोनी में पुस्तकालय था जिसमें मैं अखबार पढ़ने जाता था क्योंकि उस वक्त खरीदना महंगा लगता था. ये बातें स्कूल के वक्त की थी.

प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, स्कूल में था तो लाइब्रेरी पीरियड में किताब पढ़ने में मजा आता था, वहां लिखा रहता था कृपया शांति बनाए रखें, तो उस शांत माहौल में जो भी पढ़ता था ना वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता था।

निधि पंचकुला से कहती हैं, हाल ही में मैंने मुसाफिर कैफे पढ़ी है और ये किताब मुझे वाकई बहुत दिलचस्प लगी। कहती वैसे मैं इस तरह की किताबें ज्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन इस बुक ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो फिलहाल ये मेरी पसंदीदा हिंदी किताब बन गई है।

मंजू भाटिया द्वारका दिल्ली से कहती हैं कि मैं चंदा मामा और नंदन लिया करती थी स्कूल लाइब्रेरी से, और बाद में टीनेज में जो है मुझे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद आने लगा था। आज के जो आपके मैसेजेस हैं ना, उनने सचमुच में एक पूरी लाइब्रेरी खोल दी यादों की। किसी के लिए लाइब्रेरी दोस्ती की जगह थी, किसी के लिए किताब बचपन की याद, और शायद इसीलिए जो किताबें हैं ना वो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती हैं, वो जी जाती हैं, वो हमारे साथ रहती हैं हमारी यादों में।

0: food that I've got to taste in several places. And, well, stick around. 7:23 p.m. by the street o'clock. We'll be back after a short break.
1: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित किया। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। सरकार ने बताया, राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। नई दिल्ली के आकाशवाणी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जाओखीर सिंदारोह को हराकर पहली जीत दर्ज की। ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका म्यूजिक मस्ती में। ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूँ भगवती।

0: छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली।
1: एक और पूरी मस्ती भरा ट्रैक आपके लिए प्ले किया है म्यूजिक मस्ती में। यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820262 35 మ్యాక్స్ టచ్. యార్

hey. What is mobile number? What is your smile number? What is

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: इस समय आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ।

गुलजार साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने में जो है, क्योंकि आइटम नंबर था तो इसमें सीरियस पोएट्री जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगती, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो गाना था ये प्राइमरीली जो है, जो हाईवेज पे ट्रक्स दिखते हैं ना, उनके ऊपर जो पोएट्री लिखी होती है, जिसकी शायरी लिखी होती है, उससे कुछ कुछ इंस्पायर्ड था। पर कहाँ गुलजार साहब की लेखनी, उनकी कलम जिस चीज़ को छू देना तो बस वो खुद ही जो है शायरी से भरी हुई जाती है, पोएटिक हो जाती है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, तो सुनते रहिए ना, प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती। मैं हूं भगवती और एक और सुपरहिट ट्रैक प्ले किया है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अब बस लास्ट ट्रैक प्ले कर रही हूँ आपके लिए म्यूजिक मस्ती का. अब से कुछ देर बाद से, कुछ मिनट्स बाद से, 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही गीता चौधरी के साथ. 10 बजे से सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक, मैं रेनबो क्लासिक्स, आशीष अब्राहम आपके साथ रहेंगे. और 11 बजे से आप सुनेंगे रंगे महफिल गीता चौधरी के साथ. अगर गजलें सुनना अच्छा लगता है आपको तो जरूर जरूर सुनिएगा ये शो.

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। सरकार ने कहा है, राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने को कहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाथी भारत की पारिस्थितिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते। ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 9:04। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है आपकी याद आती रही। यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ

वाह, बहुत ही प्यारा गाना, और उसके साथ साथ ही जो वक्त है ना, कितना प्यारा है ना, कितना खूबसूरत है। जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है, आवाजें थोड़ी सी धीमी हो जाती हैं, और दिल जाने अनजाने उन चेहरों और उन रिश्तों को याद करने लगता है जो हमारे बहुत करीब हैं या कभी बहुत करीब हुआ करते थे। कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी बात याद आ जाती है, कभी किसी मुलाकात की खुशबू, और कभी कोई गीत बीते हुए लम्हों का दरवाजा खोल देता है। शायद इसलिए रात का ये जो वक्त है वो सिर्फ रात नहीं है, ये वक्त ऐसा होता है दोस्तों, याद करने का, महसूस करने का, और ऐसा लगता है कि उन अनकहे जज्बात को फिर से जी लेने का वक्त होता है। वेल, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 9:08। ये है आपका अपना 102.6 FM रेनबो, और इस बहुत ही प्यारी सी शाम को रात की नरम चादर में लपेटता हुआ ये हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत प्रोग्राम, जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है, और आपसे भी ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का कि कब ये प्रोग्राम लगेगा और मैं कब आपसे बात करूँगी। और आज की इस महफिल में कोशिश रहेगी कुछ गीतों के सहारे हम उन यादों तक पहुँचें जिन्हें वक्त तो पीछे छोड़ आया है। क्या करें, हम वक्त के साथ साथ उनको लेकर नहीं चल सकते ना, मगर दिल आज भी अपने पास

संभाल कर रखता है, संभाल कर बैठा हुआ है हमारा दिल उन यादों को लेकर। और अगर इस वक्त आपकी आंखों के सामने भी किसी अपने का चेहरा या कोई पुरानी मुलाकात, कोई अधूरी कहानी या बस कोई ऐसी याद जिसे आप चाहकर भी भुला नहीं पाए, तो ये शाम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लाइनें लिखी हैं। लिखा है वेलकम आरजे गीतू जी, थैंक यू सो मच। आगे लिखते हैं, सावन की बारिश में जब शहर सो जाता है, भीगी हुई सड़कों पर अतीत जाग जाता है, हर बूंद कोई पुरानी कहानी कहती है, हर खामोश रात भीतर तक कुछ कहती है। हम समझते रहे कि बारिश सिर्फ पानी है, फिर जाना हर बूंद में एक जिंदगी रवानी है। शहर बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर कुछ लोग यादों में उम्र भर रह जाते हैं। वाह, फैंटास्टिक।

very romantic song from the movie Hum, Alka Ji aur Amit Ji ki awaaz. Well, dosto, time hua hai on the dot from my studio clock 9:15. Program aapki yaad aati rahi. Ye hai 102.6 FM Rainbow, main hoon Geeta. बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस रात के बारे में मैं आपसे बात करूं तो कुछ रातें ऐसा लगता है कि सिर्फ रातें नहीं होती, अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आ जाती हैं कुछ रातें. दिन भर की व्यस्तता के बाद जब हम अपने कमरे में, अपनी खिड़की के पास या शायद अपने सफर में अकेले होते हैं, तब अचानक कोई पुराना सा गीत कानों में पड़ता है और लगता है अरे ये तो हमारी कहानी कह रहा है. ऐसा होता है ना आपके साथ भी? मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है. कभी कोई चेहरा याद आ जाता है, कभी कोई बहुत ही प्यारी सी मुलाकात, कभी वो दोस्ती जो वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गई, और कभी कोई ऐसा इंसान, कोई शख्स जिससे दूर होकर भी दिल कहता है काश एक बार वो दोबारा से मिल जाए. कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा सब लोग जुड़े हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया. प्रोग्राम आपकी याद आती रही को जब सुनते हैं तो बेशुमार यादें हमें अपने आगोश में समेट लेती हैं. ट्रू.

What a romantic song from the movie Khuddar, Karishma Kapoor और Govinda. बहुत ही romantic song है ये, अगर आपने देखा होगा तो. वो आँख ही क्या जो किसी के दीदार के काम ना आए. वाकई में दोस्तों, कुछ आंखें सच में बड़ी खामोशी से है ना मोहब्बत की पूरी कहानी बयां कर देती है, बिना कुछ बोले, बिना कोई इजहार किए. और 90s के उस दौर में तो आंखों की ये जो भाषा होती थी ना, और भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी हुआ करती थी. एक नज़र मिलना, फिर चुपके से नज़रें झुका लेना और दिल का धड़कना, बस इतना ही तो काफ़ी होता था मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, प्यार के लिए. वाकई में बहुत ही खूबसूरत गाना था. और अब आपकी बारी है. अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेल कहाँ करेंगे? rainbow102.6fm@gmail.com. कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेल करने में. और गाने बताइएगा, साथ साथ मैसेज करते रहिएगा. कैसा लग रहा है शो? सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, सभी लोग जुड़ गए हैं. शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं रिस्पेक्टेड गीता गीतू जी, वाह क्या बात है. वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वेंसडे, गुड इवनिंग आपको भी, प्यारा सा नमस्कार. वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, आपकी याद आती रही, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन एंड ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स ऑफ नॉटी 90s, क्या बात है. और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच आप सभी का.

पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे गीता मैडम जी, आपकी याद आती रही, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति और गाने पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच।

आई होप दोस्तों आज की प्लेलिस्ट और आज का जो शो है वो आपको पसंद आ रहा होगा. इफ यस प्लीज डू राइट इन टू feedback@gmail.com राइट नाउ. और मैसेज तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई कंजूसी नहीं करिएगा. 9868107070 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. मैसेज करके इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई तो कम से कम करते रहिए प्लीज.

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 9:39, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रहे। मैं हूँ गीता। गुड इवनिंग मैम, मैं अरविंद कुमार गोला लखीमपुर खीरी से। मैम आज मैं आपका प्रोग्राम चेन्नई से सुन रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अरविंद कुमार जी।

हाय मैम, रिया दिस साइट, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। मैं और मेरी मासी देहरादून से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मासी रील देख रही हैं और मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ और साथ साथ सुन रहे हैं आपका शो। आपके उधर कैसा मौसम है? हमारे यहाँ मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज गर्मी थी, दो दिन पहले बारिश हुई थी, बट अभी बारिश का इंतज़ार है और बारिश होनी चाहिए तभी अच्छा मौसम होगा।

कासगंज से जुड़े हैं मास्टर राधे श्याम जी और लिखते हैं, गुड इवनिंग गीता मैम, प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।

गुलफाम और अयान खान डेली शाहदरा से जुड़े हैं, लिखते हैं आपको मेरा आदाब, आपको भी प्यारा सा नमस्कार। इतना अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, आप इतने बढ़िया गाने बजा रही हैं, इतने अच्छे गाने सुना रही हैं, आपको थैंक यू सो मच। आपको भी शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं साथ ही साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये गाना सुनिए और बताइए किसको क्या क्या बात याद आई इस गाने के सुनने के बाद। एक जमाना था इस गाने का, वाकई में।

पता नहीं कितने लोगों के दिल खो गए होंगे उस जमाने में जब ये फिल्म आई थी दिल। एक बात तो है, 90s का वो दौर जादूगर तो था ही, जब मोहब्बत इतनी सिंपल थी कि एक गाना ही दिल का हाल बयां कर देता था। दिल फिल्म का ये गाना और साथ ही माधुरी दीक्षित की वो जो मासूमियत थी, आय हाय आय हाय, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था दोस्तों। और उस दौर में कोई, देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं था कि जहां हम अपने प्यार को इजहार कर सके, लेकिन प्यार जताने के लिए एक कैसेट, एक चिट्ठी या फिर रेडियो पर डेडिकेट किया हुआ कोई भी प्यारा खूबसूरत सा गाना, वही काफी होता था प्यार को जताने के लिए। और जब ये धुन बजती थी ना दोस्तों, क्या कहूं मैं, सच मानिए नींद तो क्या, दिल भी चैन से कहां बैठता था उस वक्त। एक और बहुत प्यारा गाना आपके लिए। हेलो मैडम जी, नमस्ते, मैं रीना लोधी कंकरखेड़ा मेरठ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन गाने आप चला रही हैं। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है, प्लीज़ आप इसका टाइम बढ़ा दीजिए। एक घंटा काफ़ी है, अच्छी चीज़ अगर टाइम कम है कोई बात नहीं।

एक मैसेज आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम और जगह का नाम लिखा है नहीं लिखा है। लिखते हैं कि हेलो मैम नमस्ते, जब हमारे पहली बार कलर टीवी हमारे घर में आई थी तो हमने उस टीवी में दिल फिल्म देखी थी और बहुत सारे हमारे पड़ोसी भी हमारे घर आए थे और हम सब

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 9:56। वाकई में आज मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना वक्त हो गया है और दूसरे शो का टाइम होने वाला है। अभी अचानक से मैंने घड़ी देखी, ओह माय गॉड, 10 बजने वाले हैं। एक मैसेज पढ़ना चाहूँगी। आज ये गीत सुनते ही न जाने क्यों कॉलेज के वो दिन आँखों के सामने उतर आए। तस्वीर पुरानी थी मगर यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। कॉलेज में एक दोस्त थी, नाम आज भी याद है, मगर उससे भी ज़्यादा याद है उसके साथ बिताया हुआ बेफिक्र सवो दौर। वक्त गुजर गया, रास्ते बदल गए, लोग अपनी अपनी दुनिया में खो गए, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ पल दिल की पुरानी डायरी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। आज इस गीत ने उसी पुराने पन्ने को फिर से खोल दिया। क्या खूब याद दिलाया आपने गीतू जी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, ये गाना मैं नहीं प्ले करूंगी, टाइम हो गया। ये मैसेज किया है मोहम्मद सरफराज आलम ने, जो कि हर दर्शना बाजार से। और अब एक गाना मैं प्ले करूंगी, उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगी ठीक 11 बजे आपसे।

वेल दोस्तों, आशीष आ चुके हैं प्रोग्राम रेनबो क्लासिक्स लेकर। मुझे जाना पड़ेगा, हालांकि जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन आशीष आ गए, कह रहे हैं गीता आप जाइए, मेरा वक्त शुरू होने वाला है। चलिए मैं चलती हूँ, 11 बजे ठीक आपसे मुलाकात होगी। टिल देन

0: Well, not just yet. That's not coming your way right now. That was just a filler anyway. So how was that for, well, for this night? 10:37 p.m. by the street o'clock. That was a rockin' track, of course. Paradise City there with Guns N' Roses, American hard rock band formed in Los Angeles, California in 1985 from L.A. Guns and Hollywood Rose. That was, of course, the legendary Axl Rose and his team with this rocking track from 1987. And now, 10:38 p.m. by the studio clock, it's time for a short break. And on the other side, we've got some more great tracks. So, all those Bob Marley and Bob Dylan lovers, stick around. Here we go with the short break.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात. रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर. 102.6 आपके लिए.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती.
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती.
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान. इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी. सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर. जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे. प्रायोजक भारत.

सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच असहमति जारी है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आदाब। टाइम हुआ है ठीक 11:03। प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं गीता।

सैल्यूट करना चाहेंगे रफी साहब को उनकी मखमली आवाज के लिए। दोस्तों कहते हैं हर रात की अपनी एक आवाज होती है और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। रात के इस पहर में जब आसपास की आवाजें धीमी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तब संगीत की एक धीमी सी धुन भी पूरी दुनिया को अपने करीब महसूस करा सकती है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ आपका स्वागत है। यह है 102.6 एफएम रेनबो। मैं हूँ गीता और रंगे महफिल शुरू हो चुका है और 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। और आज की जो महफिल है उसको हमने बनाया है थोड़ा सा खास, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे संगीत के अलग अलग रंग, नफासत से भरी गजलें भी सुनेंगे आप और दिल को छूने वाले गीत भी होंगे और रूह तक उतरने वाली एक बहुत प्यारी सी कव्वाली भी सुनवाऊंगी। यानी एक ऐसा खूबसूरत म्यूजिकल कैप्सूल होगा जिसमें हर सुर अपनी रात में अपना एक अलग अंदाज, एक अलग रंग खोलेगा और आपकी इस रात को बना देगा और भी शानदार। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए प्लीज। अपनी पसंद की कोई जगह चुन लीजिए जहां पर आप सुकून से बैठकर ये प्रोग्राम सुनना चाहें। और अगर कोई पुरानी याद इस वक्त आपके साथ है तो उसे भी आने दीजिए इस महफिल में, क्योंकि रंगे महफिल में आज रात सिर्फ गाने नहीं बजेंगे, सुरों के बहाने कुछ दिल की बातें भी होंगी।

वॉट इज सोलफुल गजल, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। वेल दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो भीतर कहीं उतर जाती हैं हमारे। और इस गजल में भी शायद हम सबको अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मोड़ जरूर दिखाई दिया होगा, वो रास्ते जहां हम अपनी मर्जी से नहीं हालातों के कहने पर मुड़ गए थे। कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी भी रह जाती हैं, और कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें दिल ने कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया। मगर जिंदगी की खूबसूरती भी तो यही है दोस्तों, कि हर ठहराव के बाद कोई नया रास्ता, कोई नया सवेरा दिखाई देता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता, ये बात याद रखिए। और हर अधूरी कहानी का मतलब ये नहीं कि उसका कोई खूबसूरत हिस्सा था ही नहीं। शायद इसलिए कुछ नगमे हमें उदास करने नहीं, बल्कि ये याद दिलाने आते हैं कि हम टूट कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी मैं चित्रा सिंह का ये गाना, ये गज़ल सुनती हूँ ना, तो मुझे भी मतलब सैड हो जाती हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवेरा नहीं होगा, होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा।

क्या बात है, क्या बात है, वाओ। सैल्यूट करना चाहेंगे किशोर दा को अपने स्टूडियो से, दिल आज शायर है। और जब किशोर कुमार की आवाज में ये जज्बात उभरते हैं ना, तो लगता है जैसे दिल ने आज सचमुच से कलम उठा ली है और दिल लिखना चाहता है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, मगर कोई गीत उन्हें इतनी आसानी से कह देता है। ऐसा लगता है अरे ये तो बिल्कुल मेरे दिल की बात है। किशोरदा की आवाज़ की यही तो खासियत है दोस्तों, उसमें मोहब्बत भी है, शरारत भी है, एक हल्की सी उदासी, और सबसे बढ़कर वो अपनापन जो बरसों बाद भी वैसा ही महसूस होता है। वेल, टाइम हो गया है ठीक 11:22, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, ये है 102.6 FM रेनबो, मैं हूँ गीता। मैसेज करके बताते रहिएगा ना, आई होप ये वाली प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ यस, प्लीज डू राइट इनटू feedback@fmrainbow@gmail.com राइट नाउ। मैसेजेस भी करिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हाँ जी, मुझे भी लगता है कि आप भी इशारों को समझ गए होंगे और रंगे महफिल धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचता हुआ प्रोग्राम। आदाब, उफ इस रात की तन्हाई में गजल दिखाई दिए, यूं बहुत ही पसंद आई। ये गीत संगीत गजलें ना होती तो जिंदगी में बहुत ही सूनापन होता। ये लिखा है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान ने। थैंक यू सो मच फारूक साहब जी।

तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं, थैंक्स गीता मैम, प्लीज कन्वे माय मैसेज टू माय हार्ट आकाश, प्लीज टेक फूड एंड रेस्ट एट द राइट टाइम ओनली फॉर मी, आई एम ऑल राइट। तो अगर आकाश जी आप सुन रहे हैं तो तुम्पा का मैसेज आप ध्यान से सुन लीजिए, टाइम पे खाना खाइए और रेस्ट कीजिए।

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या लिरिक्स हैं, क्या शब्द हैं, और उस पर मखमली आवाज हमारे जगजीत सिंह साहब की। कुछ नगमे कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की जो खामोशी है उसको आवाज दे दी हो। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ इस तरह तेरी पलकों में रह जाऊं, गौर फरमाइएगा, कुछ इस तरह तेरी पलकों में रह जाऊं जैसे कोई ख्वाब आंखों में ठहर जाए, तुम पुकारो तो लबों पर मुस्कान आ जाए, तुम खामोश रहो तो दिल फिर भी तुम्हें सुन जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें मैंने कही हैं, और शायद मोहब्बत भी तो इसी का नाम है, किसी के पास होकर भी उसे महसूस करना, दूर होकर भी हर पल उसके करीब रहना, और बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से एक दूसरे की पूरी कहानी पढ़ लेना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आंखें हमारी पढ़ लेंगी कहानी। वाकई में कुछ

अरुण कुमार रावत हैदराबाद से जुड़े हैं, जो कि ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर हैं। लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपने कव्वाली सुनवाई, राज की बात कह दूं तो, स्टे ब्लेस्ड मिस गीता। थैंक यू सो मच अरुण कुमार रावत जी आपका मैसेज करने के लिए।

मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मैंने तो अपने दिल की बात बता दी है। कभी कभी एक सवाल ही दोस्तों इतना खूबसूरत होता है कि जवाब देने को दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। और आखिर दिल में क्या है, कोई राज है, कोई ख्वाहिश, किसी की याद, या फिर वो नाम जिसे हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं मगर अपने दिल से कभी भी नहीं छुपा पाते। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, दिल की अपनी कोई भाषा ही नहीं होती और फिर भी वो बहुत कुछ कह देता है, कभी आंखों से, कभी मुस्कुराहट से, और कभी किसी ऐसे गीत के जरिए जिसे सुनते ही लगता है इसने हमारे दिल की बात कह दी।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं। मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति और मन भावन गजल, मस्त कार्यक्रम। थैंक यू सो मच।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 11:54। बिल्कुल भी टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। मैं हूँ गीता और आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम रंगे महफिल। आधा है चंद्रमा, रात आधी, मगर ख्वाहिश है कि अगली महफिल में हम आपसे मिलें तो चांद भी पूरा हो और हमारी बातें भी पूरी हो। तब तक अपनी रात को मुस्कुराहट के हवाले कीजिए और संगीत को अपने पास रखिए। गुड नाइट, और खूबसूरत ख्वाबों के साथ फिर मिलूंगी एक नई महफिल में।

अभी सुना आपने रंगे महफिल गीता जी के साथ और आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब बदल चुका है कैलेंडर और ठीक हमेशा की तरह 00:00 स्क्रीन पर देखने लगा, यानी वक्त हो चला है 0 आवर्स का। लेकिन उससे पहले पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी

आयोगों को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके साथ ही साथ अब आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, तो तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम जीरो और शो मेरे यानी रजत के साथ।

स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जीरो आवर शो, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। लोग आप लोग आने लगे हैं, सुनने लगे हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ ही दूं। जीरो आवर्स की हर रात आती है और दिन भर की थकान जीरो आवर्स के गीतों और आपकी खूबसूरत बातों से जैसे कहीं खो

0: जाती है। रात की खामोशी में आपके गीत सुकून देते हैं और आपकी बातें दिल को एक अलग ही एहसास से भर देती हैं। अमित आचल साहब हैं ये सासाराम बिहार से। ये है हमारी ऐप का कमाल कि देश और विदेश के हर कोने हर हिस्से से लोग जुड़ते हैं। आपका स्वागत है अमित भाई और बहुत अच्छी बात के लिए भी आपका आभार। अफशा खानम जी ने भी स्वागत किया, आपको भी बराबर स्वागत मिले। अफशा जी आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं। एक हैप्पी टू हियर यू अगेन ऑन एफएम रेनबो, ये लिखते हैं एम आर के साहब, एम राजकुमार जी त्रिची तमिलनाडु से। आप भी देर ना लगाए अगर हैं तो मिल जाइए, बात करते हैं मैसेज के जरिए से, गानों के जरिए से। गीत संगीत के इस खूबसूरत प्रोग्राम में 90s का कलेक्शन लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। वैसे तो हर तरह के गाने हम चलाने की कोशिश करते हैं जीरो आवर्स में, लेकिन कोशिश करेंगे कि 90s को भी जगह दी जाए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, तहे दिल स्वागत।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: वक्त तो चला है 12:50 लगभग और करीब करीब आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं कार्यक्रम के, इसीलिए मुझे आना पड़ा आपको ये बताने कि आने वाले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और बहरहाल तो ये लंबी फहरिस्त है आज से, अभी से इन प्रोग्राम्स की, जैसे जैसे घड़ियां बीत रही हैं कैलेंडर का ये दिन भी लगभग 49:50 पुराना हो चला है। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा एक आखिरी पेशकश के बाद, फिर आप जुड़ेंगे हमारे साथ अगले कार्यक्रम सुहानी रात में आकाशवाणी 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ, हम उपलब्ध हैं अब न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद, लेकिन उससे पहले सुहानी रात में हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी।

0: सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र में के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग

छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। समय हो चला है 1:25 और 25 सेकंड का, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 1:23 और 35 सेकंड, कार्यक्रम सुहानी रात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4:00।

वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, 1:38 और 16 सेकंड, कार्यक्रम सुहानी रात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान।

सुहानी रात में अभी आप जुड़े हुए थे हमारे साथ। ठीक 2 बज चुके हैं और वक्त है अब आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इस घंटे की मुख्य सुर्खियों का। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए।

ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर जुड़े हैं आप हमारे साथ। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं और आप भी उपलब्ध हैं, तो सुनते रहें हमारा कार्यक्रम। अब शुरू होने वाला है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ कुछ ही क्षणों में होते हैं हाजिर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

एफएम मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाले विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमों के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 3:03:20 का और श्रोताओं आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज़।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, 3:22 और 5 सेकंड, कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता सुन रहे थे अभी मिडनाइट मेलोडीज आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया, साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और वे संसद में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। आज लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण रोड ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सारेगामा मेरे यानी रजत के साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर, और इसके अलावा आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो थोड़ी देर में प्रस्तुत है सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: तेरी बोली
1: हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं

0: सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एफएम मुख्य समाचार। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। साथ ही केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे सदन में नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर समुद्री सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। झारखंड में कई दौर की बातचीत और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते।

आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 5:03 और 3 सेकंड समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक।